सुप्रभात। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय

0: यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं आइए अब सुने कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय नैतिकता।

0: नैतिकता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिससे हमारा व्यक्तित्व चमकदार बन जाता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन ईमानदारी और नैतिक गुणों के सहारे हम साफ और सरल जीवन जी सकते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो महसूस होगा कि ईमानदारी और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। नैतिक गुण हमें भ्रष्ट होने से बचाते हैं। जब मनुष्य पर लालच हावी होता है तब नैतिक मूल्य उसे बाधा जैसे लगते हैं। वास्तव में लालची व्यक्ति अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जब बुराई हावी हो, क्रोध का उफान हो, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। रास्ते में पड़ी हुई कोई वस्तु या पैसा लौटाकर हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। जो हमारा नहीं है उसे हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? जब पड़ोसी भूखा हो और हम स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत उड़ाएं, ये उचित नहीं। एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों को चरण स्पर्श या आदर देना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्ट आचरण और बुरी आदतों से दूर रहना उच्च नैतिक आदर्श हैं। इनका अभ्यास समाज व परिवार में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। बच्चों में संस्कार परिवार से ही आते हैं, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का आदर व सम्मान करते हुए सदैव अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तभी परिवार के छोटे सदस्य ऊंचे नैतिक मूल्यों का पालन कर सकेंगे। इसके लिए माता पिता के साथ साथ विद्यालयों में भी नैतिक मूल्यों के पाठ नियमित पढ़ाने चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था नैतिकता। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत से सजा हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सवेरे के 6:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने श्री राम चरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 142। इस भाग में गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 142। इस भाग के गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।

0: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाएं समाधान।
1: श्रोताओं, आइए अब जानकारी हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर के बाद सवेरे 6:45 पर आप सुन सकते हैं किसान भाइयों के लिए खास कार्यक्रम कर सारी बात। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फल परीक्षण का महत्व इस विषय पर। कार्यक्रम राजस्थली आप सुन सकते हैं सवेरे 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा राजस्थानी साहित्यमय स्त्री चेतना। वार्ताकार होंगी निर्मला नागला। सवेरे 9:15 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर। दिन में 12:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सिंधी कार्यक्रम। महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम महिला जगत आप सुन सकते हैं दिन में 1:30 से। कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 से। कार्यक्रम में आज के लोक कलाकार हैं पंडित शिवराम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनिए शाम 5:00। किसान भाइयों के लिए खास कार्यक्रम ग्राम भारती आप सुन सकते हैं शाम 7:00। किसान भाइयों के लिए खास कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। आपको बता दें कार्यक्रम खेती बाड़ी आज फोन इन सजीव कार्यक्रम है, जिसमें आज आपके सवालों के जवाब देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर रामफूल खासूलिया। कार्यक्रम सजा होगा लोकगीत, लोक संगीत, बाजार भाव और मौसम की जानकारी से।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे चैनल से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, आइए अब सुने कार्यक्रम कर सारी बात। कार्यक्रम में आज का विषय है फल परीक्षण का महत्व।
1: किसान भाइयों, आज आप ये कर सारी बात कार्यक्रम में बात कराला फल परीक्षण को महत्व। सबों पहली फल परीक्षण को महत्व जानबा सो पहली आप परीक्षण कई है इके बारे में जानबो जरूरी है। तो खाद्य पदार्थ का मौलिक आकार और रूप ने परिवर्तित कर और अपरिवर्तित राखबाड़ा पोषक तत्व और विटामिन यथासंभव बनाए राखबा के लिए बिना विकृति के लंबा टेम तक सुरक्षित राखबा की विधि और तकनीक है बिना आप परिरक्षण के वहाँ फल सब्जियां और बाकी उत्पाद को परिरक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। परिरक्षण विधियां जो है वो दो श्रेणी में बांटी गई है, वो आप इसके बारे में आगे जाना ला। पर मोटे तौर पे दुनिया भर में जितना भी विकसित देश है फल परिरक्षण व्यवसाय जो है वो भी में महत्वपूर्ण स्थान रखे और आज का युग में राष्ट्र के अस्तित्व में के लिए वो जरूरी मान्यो गयो है। इसका कोई कारण है कि युद्ध हुयो, बाढ़ हुयो, सूखो हुयो, फसल बड़े पैमाने पे नष्ट हो जावे, एड़े टेम में खाद्य पदार्थ है वो परिरक्षित जो खाद्य पदार्थ है वे पूर्ति कर सके। पौष्टिकता है वह बहुत बड़ी चीज है, कारण कि कोई भी देश समृद्धि के लिए जन जागरण सु मिलबा वालो भोजन जो पौष्टिक अगर वे तो बीमे रेबाड़ा आदमी है वह स्वस्थ रहे और अच्छे से जो

जीवन है या मनुष्य जो है अच्छे से श्रम ज़्यादा कर सके, परिरक्षित फल और सब्जियां जो है वो पौष्टिक होया करें। फलों को परिरक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और दो प्रकार को या करें, कौन कौन सी श्रेणी है सबों पहले की बात करा। अल्पावधि परिरक्षण की बात करा तो इक्की अवधि कुछ दिना सु लेर कुछ महीना तक ही हुए। दीर्घावधि परिरक्षण जो है इक्की अवधि कम से कम 2 से 3 साल तक काम कर सका। तो सबों पहले अल्पावधि परिरक्षण की बात करा तो इन्हें 7 भागा में विभाजित करियो गयो है। पहलो है निरोगावस्था, फल और सब्जियां ने तोड़वा समय पे करता समय सावधानी रखनी चाहिए जिसु की उकी ऊपरी सतह नष्ट ना होवे, क्योंकि इकी ऊपरी सतह क्षतिगत हो जावे तो सूक्ष्म जीवी प्रवेश करवासू फल और जो सब्जी है वह सड़ सके। न्यूनतम ताप परिरक्षण की बात करें तो फल और सब्जियां ने तोड़ता ही थोड़ी देर जल में भिगोकर ठंडा पानी में धोयो जावे और इकी गर्मी निकाल दी जावे जिससे उकी श्वसन दर में कमी आ जावे, साथ ही सूक्ष्म जीवियों की संख्या में भी कमी आ जावे, ई कारण सु होबा वाली विकृति भी रुक जावे। आर्द्रता अपवर्जन परिरक्षण, सूक्ष्म जीवियों की बढ़ोतरी के लिए एक सीमित तापमान के साथ साथ आर्द्रता या नमी की भी जरूरत पड़े, ई कारण सूखोड़ा फल और सब्जियां ने खुलो छोड़वा पर वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी पार वे फफूंदी ग्रस्त हो जावे। आर्द्रता संरक्षण या वैक्सिंग की बात करा तो वैक्सिंग सु फल और सब्जियां को भीतरी नमी जो कि त्यों रोकी जा सके जिसु फल और सब्जियां जो है वो जल्दी मुरझावे कोनी, साथ ही वे ज्यादा टेम तक सुरक्षित रह सके क्योंकि न तो सूखे और न ही सूक्ष्म जीवी लग पावे, इसु अतिरिक्त श्वसन दर में भी कमी हो सके। वैक्सिंग प्रक्रिया में मोम के साथ उचित अनुपात में सूक्ष्म जीवी नाशक दवा मिलार मोम मिश्रण तैयार करियो जावे और ई मोम मिश्रण में फल और सब्जियां ने एक एक कर डुबो जावे, ई मिश्रण ने फल सब्जियां पर छिड़क दियो जावे। ई उपचार के बाद प्रतिशतन की जरूरत कौन पड़े और वो देखियो गयो कि मौसमी के भंडारण अवधि 12 से 30 दिन हो जावे। नींबू की बात करा तो 5 से 12 दिन तक रखियो जा सके और इसके अलावा केड़ो आम टमाटर ने भी भंडारण करियो जा सके। वायु अपवर्जन क्रिया सु यदि फल सब्जियां और इके उत्पादन ने वायु सु वंचित रखियो जावे तो वायु रोधी डिब्बा में बंद कर रखियो जा सके, ज्यादा ज्यादा समय तक इन्हें सुरक्षित रख सका। कुछ रसायन जिया सोडियम बेंजोएट अशो है जिन्हें प्रयोग कम मात्रा में कर मानव शरीर ने नुकसान नहीं पहुंचे। कुछ खाद्य पदार्थ या चीनी तेल नमक अशा है जो मानव का शरीर में वृद्धि के लिए अनिवार्य है, सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी भी रोके। आगे बात करें अगर खाद्य पदार्थ ने 60 से 80 तक ताप प्रदान करियो जावे तो इनमें प्रविष्ट सूक्ष्म जीवियां या तो नष्ट हो जावे या निष्क्रिय हो जावे जिससे खाद्य पदार्थ के गुणा में कोई परिवर्तन कोन होवे। जी प्रक्रिया ने पाश्चुराइजेशन कहवे है, फल और सब्जियों को सूप पाश्चुराइज कर ही बाजार में बिक्या करे। अब बात करा दीर्घावधि परिरक्षण की तो ई विधि सु असंसाधित या संसाधित खाद्य पदार्थ में प्रविष्ट सूक्ष्म जीवियां ने पूर्णतया निष्क्रिय बना दियो जावे, साथ ही सूक्ष्म जीवों को पुनर्प्रवेश भी प्रतिरोधक सु रोकियो जा सके। खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव और वहाँ का किण्वका की क्रिया दोबारा कौन हो सके और खाद्य पदार्थ एक लंबी अवधि तक खराब हुआ बिना परिरक्षित रहे। दीर्घावधि परिरक्षण भी अगर बात करा तो 2 भागा में आप इन्हें बांट सका, ऊष्मा प्रयोग सिद्धांत सु और ऊष्मा रहित प्रयोग परिरक्षण सिद्धांत। ऊष्मा प्रयोग सु परिरक्षण की बात करा तो आप जाना कि खाद्य पदार्थ में पाया जावा वाला सूक्ष्म जीव और इका किण्वक ने ताप सु नष्ट करियो जा सके। प्राय देखा कि सभी सूक्ष्म जीव 65 से 115 सु ज्यादा ताप प्रयोग सु नष्ट हो जावे। ऊष्मा प्रयोग विधि 2 भागा में विभक्त करे, एक तो सुखाणो और एक निर्जलीकरण। ई विधि सु फल और सब्जियां को पानी है वो बाहर निकाल दियो जावे जिससे सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जावे, सूक्ष्म जीवियां का किण्वक भी निष्क्रिय हो जावे और सूखावा सु वहां को पुनः प्रवेश भी अवरुद्ध हो जावे। सूखावा की प्रक्रिया धूप में भी सुखा सका और निर्जलीकरण भी सुकर सका। दूसरी बात करिए अपा ऊष्मा निर्जलीकरण, आ क्रिया सभी खाद्य पदार्थ में एक सी कोनो है बल्कि उनकी

0: प्रकृति के आधार पर ही संभव हुए। फल सब्जियां को तैयार कर डिब्बा या बोतल में भरियो जा सके। इसू बड़ा बड़ा प्रेशर कुकर में पका सोसू ज्यादा तापोचार कर और इको सूक्ष्म जीवांशु नष्ट करियो जावे। ऊष्मा रहित प्रयोग सु परिरक्षण अगर करबा की बात करा तो ई प्रयोग सु सूक्ष्म जीवियां को नाश कोन होवे बल्कि ईसु बाह्य किण्वक निष्क्रिय हो जावे। साथ ही वायुमंडल का सूक्ष्म जीवियां को प्रवेश भी कोन हो सके। ज्यादातर खाद्य पदार्थ में एक या एक सौ अधिक परिरक्षण रसायन मिलाया जावे तो सूक्ष्म जीवी आपरी क्रिया सु वंचित हो सके। अतः सूक्ष्म प्रयोग के बिना ही खाद्य पदार्थ को परिरक्षण संभव हो जावे। फल परिरक्षण महत्व पे आप बात कर रहे हैं और फल परिरक्षण की जानकारी आप ली भी। महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि जहाँ शुरू में आप बतायो कि विश्व का लगभग सभी विकसित देश के मायने फल परिरक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखे। आज का जमाना के मायने अस्तित्व के लिए इकी बहुत ज्यादा जरूरत है कारण कि कठिन समय में सुरक्षा प्रदान करवा के तौर पे फल परिरक्षण है इको महत्व है। युद्ध की स्थिति हो, बाढ़, सूखो या फसल को बड़े पैमाने पर अगर नष्ट हो जावे तो परिरक्षित खाद्य पदार्थ है वे आपा की पूर्ति कर सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कर सारी बात। कार्यक्रम का विषय था फल परीक्षण का महत्व। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है और मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे संस्कृत में समाचार। प्रतीक्षा केवल कुछ क्षणों की।

0: विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीकादेशैः सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकाससहयोगं समर्थयति यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीकादेशानां प्रमुखव्यापार निवेश सहभागिषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीकादेशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुखनिवेशकदेशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां 16 भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिविजन ए इत्यस्य उपान्त्यचरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्यचक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्यप्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुने कार्यक्रम राजस्थली। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता राजस्थानी साहित्यमय स्त्री चेतना। वार्ताकार हैं विमला नागला।

0: राजस्थली कार्यक्रम सुनवाला सभी श्रोताओं को घणो घणो स्वागत है सर। आज रही कार्यक्रम में आप सुनोला एक वार्ता, राजस्थानी साहित्य में स्त्री चेतना। वार्ताकार है विमला नागला।
1: साहित्य समाज री आरसी होवे इन वास्ते साहित्य माथे जुगरो असर सदी भी रेवे है। साहित्यकार भी जिन युग में रेवे उनरा सगला हालात ने नजीक सु देखे अनभोगे है। इन कारणे उनरी अनुभूति लेखन रो आधार लेन आखरण ढले। राजस्थानी साहित्य रा आदिकाल सु ही महिला लेखन रा ऐलान मिले है। उन समय गुरुकुला माए ऋषि मुनिया रे सागे ज्ञानी महिलावां भी हुई जो आपरा तप साधना अनज्ञान सु मोकला धर्म ग्रंथारो सृजन करियो। पण उन टेम छापा खाना रो इतरो प्रचार प्रसार कोनी हो इन वास्ते बे ग्रंथ अजे ताई प्रकाशवान कोनी रह सक्या। राजस्थानी महिला लेखन रिवाज मध्यकाल सु करा तो आदि कवित्री मीराबाई अजे सु लगे टगे 500-600 वर्षा पहला ही पितृ सत्तात्मक परवारा रा सगला अहम शोषण और अन्याय री सांकला ने उतान फेंक दी और सामंतवादी सत्ता और तत्कालीन कुरूतिया रा विरोध माए उनारा सुर मुखरित होवन लगा। पति रा सुर्गवास पाछे सती न होशिया केन सती प्रथा रो विरोध जतायो तो अन्याय रे विरोध में पूरी हिम्मत सागे बोलिया, मारे सिर पर सांवरिया रो हाथ, राणा जी मारो काई करसी। समय री चाल रे सागे सागे महिला लेखिकावां री तादाद बत्ती री। उना रो भांत भांत रा विषया भाव और शैली ने लेन घणो साहित्य छप्यो और घणो अनछप्यो इतिहास माए दबियो रह गयो। इन युग माए युद्ध रा जोर सु वीर गाथावां सु भरियोडो साहित्य सर्जियो। इन माए वीरता रो भाव प्रदान हो वीर काव्य परंपरा में देशभक्ति संस्कृति गौरव आन बान और मर्यादा जेड़ा उजड़ा पखाने दीठ में राखन महिला लेखिकावां री कलम सु अमोला साहित्य रो सृजन हुयो। दूजी कहानी धर्म और संस्कृति री रिक्षा खातिर धार्मिक भावना पनपी और भक्ति और श्रृंगार की रचनावां रची जी। इन युग में भक्ति की दोनों धारावां माए महिलावां मोकलो लेखन करियो। इन युग माए प्रताप कुंवारी रणछोड़ कुंवारी तुलसा राय प्रेम सखी मीराबाई विष्णु प्रसाद कुंवरी रो नाम सरावन युग है। इन समय महिला रचनाकार माथे समाज रा घना बंधन हा पण फेरू भी उनारी भक्ति भरी वाणी रो सुर मोड़ो नी पड़ियो। इन महिलावां री रचनावां माए राजस्थानी संस्कृति रा रूपाणपणा रा दर्शाव होवे। इन पंगत माए गिरिराज कुंवारी जुगल देवी राजरानी देवी

ख्यातनाम रचनाकार उबरन सामी आवे। डिंगल काव्य धारारी महिला रचनाकार और जैन धारारी साध्विया अपनी सातरी कलम सु राजस्थानी साहित्य रा भंडार में लगोलग बढ़ोतरी करी। इन माए हेम सिद्धि लावण्य सिद्धि रा प्रश्ना पद गणा मिले। प्रेम कथा वाले रूप माए प्रेमा ख्यान ही गणा लिखी जा जिको राजस्थानी लोक रे रूप में घना जगचाओ हुयो। इन दीट सु जीमा चारणी पद्मा साधु रानी चांपा दे और साखली रो नाम हरावल में आवे। राजस्थानी महिला लेखन पर लिखी डॉक्टर शारदा कृष्ण अपनी पोथी आंगणे सु आबे में केवे के आजादी सु पहला रो राजस्थानी साहित्य सिर्जन या तो लोकरे मुंडे हो या राजा रजवाड़े माए भक्ति नीतियां और उपदेश परख हो। देश रे आजादी रे समय माए घणो संघर्ष काल हो। आजादी आंदोलन युद्ध गरीबी सामाजिक कुरूतिया री अपकाया रे बिचाले शिक्षा रो प्रचार हुयो और पुनर्जागरण रा दर्शाव सामी आवण लगा। पर्दा माए बैठी नारी किया चुप रहती वह भी आप री शिक्षा और चेतना रे पान साहित्य री नुवी विधवा माए सामी आवण लगी। अभी देश री बदलती परिस्थितिया रे माए महिला लेखन री रचनावा भी भात भात रा रूप माए सामी आवण लगी। पहला तो खुदरा समाज और परिवार रा दायरा में जिकी समस्या महिलाओं रे हामी आई उन्होंने वे खुद रो सर्जन रो आधार बढ़ायो। इन्हीं कारण समाजु बदलाव और कुरीतियां ने छोड़ समाज सुधार री चेतना रा बिंब इन जुगरी महिलाएं लेखन में मिले। बालपने रा व्याव सती प्रथा दाई चारू लेन देन बहुविवाह जड़ी घर परिवार री समस्यावा सागे महिलाओं री पीड़ बिखरोड़ी लखावे। मध्यम वर्ग रे संघर्ष नाड़ी उत्पीड़न पुरुष वर्ग की लंपटता उनारी संकालु आदता और कई कुरूतियां और पुरातन पंथी विचार रो घणो अच्छो खुलासो उठे हुयो है। दूजी तरह रा लेखन माए जनतांत्रिक मूल्यां नारी स्वतंत्रता समानता संबंधित रचनावा देखने में आई। राजस्थानी महिला लेखिकावा घर सु निकलन प्रगतिशील जीवन का नी खेचल करती लेखन करे। अबे नारी अबला नी अब आत महिला लेखन सु थापण री खेचल करे। आधुनिक काल री राजस्थानी लेखिकाओं में रानी लक्ष्मी कुमारी चिंडावत सिरे नाम है जका राजस्थानी बात कथा साहित्य गीत अनुवाद बाल साहित्य में आगीवान बनिया और सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार से सम्मानित हुआ। डॉक्टर तारा लक्ष्मण डॉक्टर प्रभा ठाकुर कमला कमलेश साहित्य री नुवी विधवा माए सामी आवण लगी। नुवी सदी रे महिला लेखन की परंपराओं में आधुनिक जुगरो दर्शाव साफ निगियावे। आज री राजस्थानी महिला लेखन री खासियत आ है कि वे परंपरा और नैतिकता रा नाम पर आधुनिकता सु मुंडो कोनी मोड़े। वे आज रा जथारत पर लगोलग आपरी सातरी कलम चलावे। राजस्थानी साहित्य री सगली विधवा माए महिलावारी भूमिका वदी है। कविता कहानी लघु कथा संस्मरण गीत दोहा हाइकू गजल उपन्यास निबंध ललित निबंध डायरी व्यंग संस्मरण रेखाचित्र यात्रा वृतांत अनुवाद आत्मकथा लोक संस्कृति समीक्षा शोध आलेख बाल साहित्य नाटक और एकांकी सगली री सगली जगचावी विधवा माए महिलावा मायड़ भाषा रा साहित्य ने सिमरत कर रही है। अजय इन मीठी मायड़ भाषा माए इतनी महिलावा सृजन कर रही है कि उन सगली विशेषतावा बताती तकी एक नुई पोथी रो सृजन हो सके है। उन सगली महिला रचनाकार री सातरी कलम ने निवन अठे वानगी रा रूप माए सार रूप में महिला रा लेखन विषय पर बात करा तो साफ दिखे कि आज सदावाही विषय रे सागे संवेदना री ऊंडी परता ने उघाड़ने री महिलाएं खेचल करे है। आपा साहित्य री मूल विधा कहानी पर बात करा तो लाड़ला दो दशक माए कहानियां में

का मांडी ए कहानियां अंधाधुन भागती नवी पीढ़ी री कहानियां है। डॉक्टर अनुश्री राठौड़ री धोला री लाज वर्जिनिटी विषय री दमदार कहानी है। संतोष चौधरी रो कहानी संग्रह काया री कलझल माए लिंग परिवर्तन विदुर और दैहिक संबंधा जेड़ा विषय ने परोटिया है। शकुंतला पालीवाल केसर रा छाटा थर्ड जेंडर पर सातरी कहानी मांडी है। उपन्यास विदा माए आपरे सोगन उपन्यास सु राजस्थानी भाषा री पहली उपन्यासकार लेखिका रो नाम बसंती परवार है। उनरे दूजे उपन्यास एड़ो क्यों गलत परंपराओं रीत रिवाज माथे उकलता सवालों पर आधारित है। अठे विरोध रा सुर सागे समाधान भी है। मनीषा आर्य सोनी रो आठवीं कुंड संतोष चौधरी रो रात पच्छे प्रभात डॉक्टर रेणुका को धिंगाणे धनिया अनुश्री रो जीवा जून रा कापा सीमा भाटी रो हेत्री हूंस माए आधुनिक समाज रा चित्राम और महिला चेतना रा सुर है। कथेतर विधावा माए लघु कथा री बात करा तो उपदेशात्मक और गुणात्मक हर तरिया सु सृजन है। पुष्पलता कश्यप रो पहलो लघु कथा संग्रह थारी मारी उनारी बात पाछे महिलावा लघु कथा लिखे है। गीत कविता की दीट सु देखा तो घना नुआ विषय बिंबा ने लेर सृजन करती कवित्रा री लांबी पात निगावे। इन माए डॉक्टर शकुंतला सरुपुरिया रो गीत संग्रह हिवड़ा रो हेलो मोनिका गोड़ रो कविता संग्रह अंधारा री उधारी रिसाणो चांद डॉक्टर शारदा कृष्ण रो धोरा पसरिया हेत अभिलाषा पारिक रो शरद पुनियो रो चांद घणो महत्व है। इनारे सागे ही दुहा गजल हाइकू माए निर्मला राठौड़ आशा पांडे कविता किरण विमला मेहरिया रा नाम गिरावन जोग है। समीक्षा और अनुवाद क्षेत्र माए भी ऊर्जावान लेखिका घणो सात्रो काम करियो है। डॉक्टर उषा राठौड़ रेखा बंसाली रशोद पत्र लेखन री दीटरा सांतरा परिचायक है। डॉक्टर चांद कौर जोशी रो राजस्थानी निबंध साहित्य पर शोध करियो गयो है। बाल साहित्य माए सृजन रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सु शुरू होन लगो लग आगे बदरियो है। इन माए सावित्री चौधरी डॉक्टर विमला भंडारी जेबा रशीद विमला नागला सुमित्रा छापर रा नाम लिया जा सके है। बाल कहानियां रे सागे बाल गीत बाल उपन्यास बाल नाटक माते भी घणो लिखियो जा रियो है। राजस्थानी भाषा री घनी पत्रिकावां रे संपादन रो भी काम महिलावां करे। डॉक्टर सुमन बिस्सा सिर्जना नाम री पोथी रो संपादन संभाले डॉक्टर प्रकाश अमरावत साहित्य सुजसरो और डॉक्टर कृष्णा जाखड़ लीलटास नाम री पत्रिका रो संपादन करे। राजस्थानी भाषा री घनी महिलावां विश्वविद्यालय माए ऊंचा पदा ने संभालती तकी सिर्जना करे है। इन लाडला दो दशका माए राजस्थानी भाषा माए लेखिकावां री तादाद में लगोलग पदोत्तरी हुई है। लेखिकावां ने अकादमिया सु घणा सम्मान और पुरस्कार भी मिल रहा है। सोशल साइट्स पर भी उनारा ब्लॉग सामी आवन लगा है। इन्हीं सागे वेब पोर्टल और वेब मैगजीन माए भी लेखिकावां ने सृजन रो नुओ रूप सामी आयो है। सार रूप माए कह सका कि राजस्थानी साहित्य माए स्त्री चेतना रा सुर आभेरा उजास जू धरा रा कण कण माथे आपरी पूरी चमक सागे पड़कता तका पसर रहा है। बस इन मायण भाषा री हेतालु बहना ने उड़ीक है आपरी मीठी मनमोहनी मायण भाषा री संवैधानिक मान्यता री स्त्री चेतना री तो आपा बात कर ली। अब आपा सब सुना अपनी पसंद रो एक लोक गीत गुर्जा।

0: ऊर्जा लोकगीत रे साथ ही आज रो कार्यक्रम अठाई संपन्न हो ऐसा राम राम सा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थली। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे राजस्थानी साहित्यमय स्त्री चेतना, इस पर वार्ता, वार्ताकार थी विमला नांगला। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुने फिल्म संगीत। शागिर्द फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरूह की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए। फिल्म द ट्रेन से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गीत के बोल लिखे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सूरज से। रफ़ी के साथ आशा भोसले ने इस गीत में आवाज़ दी है और इस गीत में धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

गाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत फिल्म कहानी किस्मत की से किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की तर्ज बनाई है और शब्द रचना है राजेंद्र किशन की।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

फिल्म संगीत में अगला गीत आइए सुनते हैं दीवार फिल्म से आशा भोसले व साथियों की आवाज़ में। साहिर ने गीत के बोल लिखे हैं और आर टी बर्मन का संगीत है।

अगला गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से लता मंगेशकर व किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने शब्द रचना की है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

अगला गीत फिल्म जो जीता वही सिकंदर से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। जतिन ललित ने इस गीत की धुन बनाई है और मजरूह ने गीत के बोल लिखे हैं।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए, इस फिल्म सत्यमेव जयते से। बप्पी लहरी ने इस गीत में आवाज़ दी है, फारुक कैसर ने शब्द रचना की है और बप्पी लहरी का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
6: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
5: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
7: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
8: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
7: एग्रीकल्चर एंड डिजिटल सर्विसेज।
5: डॉक्टर जयशंकर

0: ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हॉर्मुज जलडमरुबद्ध फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमरुबद्ध पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरुबद्ध के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरुबद्ध पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा, पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक CEO टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वजीर आजम ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत के तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबीना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर-ओ-खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर-ओ-खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड पीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 मालबरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बोहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निजाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि

0: नए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आप नए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इनहिराफ होगा। ईरान ने अब नए हुरमुस के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदाम पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है और बज़ाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाज़ फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नाम निहाद योम इस्तेसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग दिखावे और बनावटी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नाम निहाद योम इस्तेसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाजे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हजारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945 के आखिर तक 1,40,000 हलाकतें हुई थीं। आज सुबह पीस मेमोरियल पार्क में मुनक़िद एक तकरीब में इस साहनेह को याद किया गया और इसकी याद में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। इस यादगारी मकाम पर एक दस्तावेज को भी रखा गया जिसमें 353,639 मुतासरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करने की अपील की जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर एटमी हमला किया गया था जिसके बाद दूसरी जंगे अजीम खत्म हो गई थी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया जबकि झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-3 से बराबरी के बाद शूटआउट में शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, चाहे जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से मुआफ़ी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असम्बली का मानसूनी इजलास कबल अज वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज़ में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے، اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی جے پور اجمیر کا یہ آمیر چینل ہے۔ میڈیم ویو 497.51 میٹر یعنی 603 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ 101.2 میگا ہرٹز اور دور درشن کے ڈی ٹی ایچ چینل پر۔ شروتوں آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت۔ کاریکرم کی شروعات کر رہے ہیں بھول بھلیا کے اس گیت کے ساتھ جس میں آپ آواز سنیں گے کے کی۔ سمیر کی رچنا ہے اور دھن ہے پریتم کی۔

फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिए, फिल्म ओम शांति ओम से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत सुनिए। जावेद अख्तर की रचना है और धुन है विशाल शेखर की।

फिल्म संगीत में अंतिम गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुनिए। फिल्म रेड से मनोज मुंतशिर ने शब्द रचना की है, तनिष्क बागची का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय संसाधन तथा धन की बचत होगी और प्रदेश के भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग में आज से मध्यम से तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। इससे पहले कल संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया, वहीं लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए नई निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नई व्यवस्था में प्रदेश के 41 जिलों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है और एक बीमा कंपनी को अधिकतम 2 क्लस्टर ही दिए जाएंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नई व्यवस्था में पहली बार आधुनिक तकनीक के उपयोग से फसल नुकसान का आकलन अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। बीमा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। किसानों को 7 दिन के भीतर बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया और म्यांमार सहित कई देशों में भेजता था। वहां उनके पासपोर्ट जब्त कर उन्हें साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और क्रिप्टो निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय, संसाधन और धन की बचत होगी, साथ ही विकास और जनकल्याण के कामों को लगातार गति मिलेगी। ये बात उन्होंने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान आयोग की ओर से मुख्यमंत्री को पंचायती राज और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन सौंपा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच सीधे संवाद करेंगे। प्रदेश में 1,41,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। श्री खींवसर ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान के लिए अलग इकाइयां स्थापित की गई हैं तथा 181 हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी अंगदान की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान 8 से 9 लोगों को नया जीवन दे सकता है और समाज को इस दिशा में आगे आना चाहिए।
1: लिवर, किडनी वगैरह ये ऐसी चीजें हैं कि आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस को जो बचा सकता है। उसके अंदर जिंदगी है बहुत, जो है कई चिराग जलेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा हिम्मत जो है जो डोनेशन दे रहा है अपने लिवर और इनका अंगदान जो कर रहा है उसके जो परिजन जो है ना उनकी हिम्मत बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसलिए उनको बताना बहुत जरूरी है।
0: समारोह में अंगदान करने वाले 12 परिवारों, 10 ट्रांसप्लांट एथलीट्स तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले भीलवाड़ा और झुंझुनू के जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आज भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में मध्यम से तेज बरसात हो सकती है, कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाईमाधोपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन स्थानों पर निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। विभाग ने लोगों से निचले इलाकों, जल भराव संभावित स्थानों, अंडरपास से गुजरते हुए विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। वहीं कोटपूतली, बहरोड, जयपुर, टोंक और बारा में हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। दूदू के भैराना दाम से जुड़ा पिछले 113 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने के बाद जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। प्रशासन ने भैराना धाम बचाओ समिति को आश्वासन दिया कि बीचून गांव में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन में वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही परिक्रमा मार्ग, दादूखोल और आसपास के क्षेत्र का संरक्षण करते हुए हरित वन विकसित किए जाएंगे। बीकानेर में नेशनल हाईवे 62 पर कल एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा लूणकरणसर कस्बे में उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार एक डंपर से टकरा गई। कार में सवार ये सभी लोग किसी समारोह में शामिल होने के लिए बीकानेर जा रहे थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त डंपर को जब्त कर लिया है तथा चालक की तलाश की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से समय, संसाधन तथा धन की बचत होगी और प्रदेश के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में आज से मध्यम से तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जयपुर।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
7: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
8: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
7: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
8: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
7: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
8: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
9: अरे अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
10: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
11: अरे क्या है,
10: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
11: वो बहू कहाँ गई?
10: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
11: ठीक है, आता हूँ।
12: ये लो, लो दो।
10: हाँ जरा ठीक से डालो।
12: लो, लो, लो।
10: इधर इधर इधर।
12: ये ले,
10: लो। तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
12: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
10: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
12: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं, इसलिए पॉटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
10: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पॉटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म व अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डी डी उर्दू चैनल।

हेलो जयपुर, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मयूरी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल, आपका पसंदीदा शो हेलो जयपुर लेकर मैं हाजिर हूं, जहां हम 11 से 12 सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी संगीत, जहां बजते हैं आपकी पसंद के वो गीत जो दिल को छू जाए, कोई पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर दे, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। 10 से 11 के बीच आप सुनेंगे, घूमेंगे खेल की दुनिया में, जहां आज हमारे पास है खबर जीत के जश्न के नए रिकॉर्ड्स की, और हम आपको जानकारी देंगे कुछ धमाकेदार मुकाबलों की। तो आइए आगाज़ करते हैं हेलो जयपुर की। ये सुबह का समय ना सिर्फ घड़ी की शुरुआत नहीं बल्कि हमारे सपनों, मुस्कान और ऊर्जा की भी शुरुआत होती है। बाहर ये ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की प्यारी सी चहचहाहट और ताज़ी हवा जैसे कह रही हो, उठिए मुस्कुराइए और इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत कीजिए। अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग ज़रूर कहिए जो आपकी ज़िंदगी को खास बनाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी शुभकामना भी किसी दिन को खूबसूरत बना देती है। इसी ब्यूटीफुल से थॉट के साथ आइए शुरू करते हैं हेलो जयपुर।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल और शो चल रहा है हेलो जयपुर, जो आपकी आपका फेवरेट शो है, जहां हम बात कर रहे हैं आज सपनों उम्मीदों की, क्योंकि सुबह का समय ही ऐसा होता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ना धीमा कर देती है, लेकिन उम्मीदें हमें फिर से खड़ा होना सिखाती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर दिल में नई रोशनी भर दे।

दोस्तों आज है 6 अगस्त और कल 7 अगस्त। 7 अगस्त कैलेंडर पर यूं तो महज एक तारीख है, लेकिन हमारे देश के करोड़ों बुनकरों और कारीगरों के लिए ये दिन बहुत खास है। जी हाँ, कल यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। आप जानते ही होंगे कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है। अगर आप नहीं पता तो ज़रा थोड़ी सी जानकारी आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलते हैं। 7 अगस्त 1905 को हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था और अपने देश से बने कपड़ों को अपनाया गया था। उसी विदेशी भावना को जिंदा रखने के लिए साल 2015 में भारत सरकार ने इस दिन की शुरुआत की। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये दिन हमारे देश के उन मेहनतकश बुनकरों को सलाम करने का दिन है जो अपने हाथों के हुनर से धागों में इतिहास और संस्कृति बुनते हैं। चाहे असम का सिल्क हो, बनारस की साड़ी हो या फिर दक्षिण भारत का सूती वस्त्र, हर धागे में हमारे कारीगरों का पसीना और प्यार छुपा है। तो क्यों ना हम बने वोकल फॉर लोकल, जब भी कपड़े खरीदें अपने देश के हाथ से बने वस्त्रों को प्राथमिकता दें। याद रखिए, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी बुनकर के घर में खुशी ला सकता है और हमारी पुरानी परंपरा को जिंदा रख सकता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल शो चल रहा है हेलो जयपुर। सावन का महीना आते ही राजस्थान की हवाओं में एक अलग सी मिठास घुल जाती है। कहीं झूले पड़ते हैं, कहीं मेहंदी की खुशबू महकती है और कहीं रंग बिरंगा लहरिया पूरे मौसम को उत्सव बना देता है। दोस्तों, लहरिया सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, खुशियों और सावन की उमंग का खूबसूरत प्रतीक है। इसकी लहरदार धारियां मानो बारिश की बूंदों की तरह धरती पर उतरती है और हर दिल में रंग भर देती है। जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो राजस्थानी महिलाएं रंग बिरंगी लहरिया साड़ियां या दुपट्टे ओढ़कर त्योहार की रौनक और बढ़ाती हैं। खासकर हरियाली तीज और सावन के मेलों में लहरिया ही लहरिया दिखता है। बारिश की हल्की फुहार, हाथों में मेहंदी, झूले की मीठी झनकार और हवा में उड़ती लहरी चुनरिया, कितना सुंदर दृश्य है। दो बैक टू बैक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पहला सावन के ऊपर और दूसरा हमारी राजस्थान की खूबसूरत संस्कृति पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर, और हेलो जयपुर का में हम अगले सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं जो कि है स्पोर्ट्स स्पेशल। वो थोड़ी ही देर में हम आपको स्पोर्ट्स स्पेशल के सेगमेंट में लेके चलेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये अंतराल।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल

0: मुद्दों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
0: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हेलो जयपुर, आप सुन रहे हैं और वक्त हो चला है स्पोर्ट्स स्पेशल का, जहां आप घूमेंगे खेल की दुनिया में, जहां आज हमारे पास है जीत का जश्न, नए रिकॉर्ड्स और कुछ धमाकेदार मुकाबलों की जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। ग्लासगो में आयोजित इन खेलों में भारत की स्थिति कैसी रही, एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। इस साल भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक हैं। इन पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थानों पर रहने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, और 5वें स्थान पर है भारत, जो 39 पदकों की शानदार उपस्थिति के साथ ये खास है। भारत के लिए खास उपलब्धि जो है वो है मीराबाई चानू को लेकर। भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनका प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व का क्षण बना हुआ है। तो उन्हीं की जीत के लिए और भारत का इतने अच्छे पोजीशन के लिए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल आप सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर। हेलो जयपुर में 10 से 11 का वक्त रहता है स्पोर्ट्स स्पेशल का, जहां हम लेकर आते हैं खेलों की दुनिया की ताज़ा और चर्चित खबरें। थोड़ी देर में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के प्रदर्शन की, मीराबाई चानू की ऐतिहासिक उपलब्धि की, क्रिकेट की नई तैयारियों की और भारतीय एथलीटों के सदा शानदार प्रदर्शन की। पर इससे पहले हम अभी आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम विश्व दर्पण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। श्री विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों के पिछड़े देशों के प्रति भारत की वचनबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन

0: मूल्यांकन में दी गई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, क्षेत्र से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय प्रमाण योग्य और कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। भारत ने तथाकथित यौम इस्तेहसाल मनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 किए गए संवैधानिक परिवर्तन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। इन निर्णयों ने क्षेत्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण लाया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक हिंसा, लक्षित हत्याओं और कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि निहत्ते नागरिकों के खिलाफ इस तरह की राज्य प्रायोजित हिंसा पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान के घोर पाखंड को उजागर करती है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ब्रिटेन में कश्मीरी समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में ब्रैडफोर्ड में प्रदर्शन किए। समुदाय ने संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति की मांग के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया। आयोजकों का कहना था कि रैली का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना था। जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। यमन के हूती ग्रुप ने अदन की खाड़ी में सऊदी के एक तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती से सैन्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह हमला सऊदी अरब की नाकेबंदी के विरोध में किया गया। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना के कैसवेल काउंटी में एक घर में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत की खबर है। संदिग्ध हमलावर समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और एक चौथे रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य यूरोप के देशों में एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ रही है। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में कल का दिन सबसे गर्म रहा। स्लोवाकिया के कैमनिका रोनोम शहर में तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ऑस्ट्रिया में बड़े डाइचे ऑल्टनबर्ग में तापमान 41.2 डिग्री रहा। चेक गणराज्य और हंगरी में भी अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लग गई है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यूरोप की जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महादेश है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार, जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित हुर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। सवेरे के 10:20 हुए हैं।

में प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम हेलो जयपुर। कार्यक्रम विश्व दर्पण से पहले हम बात कर रहे थे कि खेल जगत में क्या चल रहा है। जी हाँ, खेलों की दुनिया में ताज़ा और चर्चित खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के प्रदर्शन की, मीराबाई चानू की ऐतिहासिक उपलब्धि की, क्रिकेट की नई तैयारियों की और भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर बात करेंगे। दोस्तों, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पांचवा स्थान हासिल किया, 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक से। भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2018 गोल्ड कोस्ट में, 2022 में बर्मिंगम में और 2026 में ग्लासगो में। मीराबाई का ये प्रदर्शन पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है।

अब बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज और बड़े टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट चुका है। चयनकर्ताओं की नज़र युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बनी हुई है और घरेलू क्रिकेट में नए चेहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिटनेस, फील्डिंग और तेज रन बनाने की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दो टेस्ट की सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है और तैयारियां शुरू कर दी है। सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से अहम है। भारतीय टीम अब 9 में से सिर्फ 4 टेस्ट जीत सकी है। 48.15 अंक प्रतिशत के साथ वह टेबल में 5वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी उससे आगे हैं। इस सीरीज के सभी 24 अंक जीतने पर भारत का अंक प्रतिशत बढ़कर 57.57 हो जाएगा।

अब खबर बैडमिंटन की। ताइपे ओपन का खिताब जीतने के बाद भारत की 17 वर्षीय युवा शटलर तन्वी शर्मा ने अपनी शानदार लय बरकरार रखी है। उन्होंने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती दौर के मुकाबले में तीसरे पद पर तन्वी ने चीन की युआन एन क्यू को सीधे गेमों में 21-16, 21-15 से शिकस्त दी।

अब खबर चेस से। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड चेस टूर्नामेंट के रैपिड राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 18 में से 12 अंक जुटाकर साल के अंत में होने वाले प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में जगह बनाने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है। दोस्तों, अब बात एक ऐसे भारतीय एथलीट की जिसने नई उड़ान और एक नया गेम में हमें गर्व दिलाया है। नाम है तेजस्विन शंकर का। ऊंची कूद से अपनी पहचान बनाने वाले तेजस्विन ने डेकाथलॉन जैसी कठिन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। उनका आत्मविश्वास, फिटनेस और लगातार मेहनत युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ हेलो जयपुर का स्पोर्ट्स सेगमेंट यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है खेल जगत की ताज़ा खबरें, खिलाड़ियों के शानदार उपलब्धियां और खेलों से जुड़ी दिलचस्प बातें आपको पसंद आई होंगी। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जयपुर में सेगमेंट फरमाइशी फिल्मी संगीत का। उससे पहले आपको माई नेम इज़ खान फिल्म से ये गीत सुना रहे हैं।

जयपुर में वक्त है अब फरमाइशी फिल्मी संगीत का। वो गीत जो आपके पसंद के हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, जो आप सुनते हैं, सुनाना चाहते हैं या रेडियो सेट्स के साथ गुनगुनाना चाहते हैं। वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्मी संगीत का। आप हमें कॉल कर सकते हैं 01412200600। इस नंबर पर एक फ़ोन लाइन और चालू है, नंबर है 2366477। जयपुर का एसटीडी कोड लगाना मत भूलिए, 0141 एसटीडी कोड है। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 2200600 और 2366477। मुझे रहेगा आपके कॉल्स का इंतज़ार, तब तक मैं आपको सुनवा रही हूँ ये गीत जिसकी फरमाइश हमें भेजी है केशव दास जयपुर जगतपुरा से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

संदीप सिंह मान ने हमें फोन किया है जयपुर जौहरी बाजार से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म फनी खान से ये गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने। इरशाद कामली कामिल की रचना है, तनिष्क बागची का संगीत है।

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कारवा शुरू हो चुका है, हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है कैलाश चंद जी ने अलवर से। ये सुनना चाहते हैं ये देशभक्ति गीत फिल्म बॉर्डर 2 से, सोनू निगम की आवाज़, मनोज मुंतशिर की रचना, मिथुन का संगीत।

अगला गीत सुनिए राम नरेश जी की फरमाइश पर। राजगढ़ एमपी से इन्होंने कॉल हमें किया है और ये सुनना चाहते हैं आंटी नंबर वन फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की रचना, आनंद मिलन।

अगली फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद रफीक ने मूंगड़ा बालूतरा से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म लेकिन से गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलजार की रचना है और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

अगली फरमाइश हमें भेजी है फतेह रामपुरा जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नीला आकाश से ये गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर, माफ़ी चाहती हूँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत के बोल लिखे हैं और संगीत है मदन मोहन का।

अगली फरमाइश सुनिए डालचंद कोहली की, जौहरी बाजार जयपुर से इन्होंने हमें कॉल किया है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ममता से ये गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू की रचना और धुन राजेश रोशन की।

अगली फरमाइश हमें भेजी है राजेंद्र यादव ने रायपुर झुंझुनू से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से ये गीत, महेंद्र कुमार व साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं। गीत की रचना की है इंद्रवीर ने और कल्याण जी और आनंद जी का संगीत है।

अगली फरमाइश हमें भेजी है भूपेंद्र कुमार गुप्ता जी ने कोटा राजस्थान से। ये सुनना चाहते हैं लव इन टोक्यो फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी ने शब्द रचना की है और धुन है शंकर जयकिशन का।

अगली फरमाइश हमें भेजी है छाजू राम नायक जी ने कोटपुतली से। ये सुनना चाहते हैं नाचे मयूरी फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हेलो जयपुर में फरमाइशी फिल्मी संगीत में अंतिम फरमाइश शामिल कर रहे हैं गोविंद की बड़ी चौपर जयपुर से इन्होंने हमें कॉल किया है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। इसी गीत के साथ आप मुझे यानी मयूरी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

इसी गीत के साथ आप मुझे यानी मयूरी को आज्ञा दीजिए और हेलो जयपुर कार्यक्रम से भी मैं अब आज्ञा लेती हूँ. नमस्कार.

0: आपने सुना हेलो जयपुर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेरी के आमेज चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर

पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त

0: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसुला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।

महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे दिन में 1:30 से। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी स्तनपान सप्ताह पर। अलावा इसके बहनें सुनेंगी ईशा गुप्ता की वार्ता महिलाएं और पोषण।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दे दें आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:10 से

दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत, कलाकार होंगे पंडित शिवराम। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको दिन में 3:30 से सुनवाएंगे। शाम को 4 से संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्मी गाने आप हमारे केंद्र से दिन में 12:40 पर, दिन में 1:05 पर और दोपहर 3 से सुनेंगे। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम शाम 5 से सुनेंगे। शाम को 5:30 पर और शाम को ही 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम भारती कार्यक्रम होगा शाम को 7 से। इसमें ग्रामीण भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे। ग्रामीण भाइयों को इसमें बातचीत सुनवाई जाएगी डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल से। बातचीत का विषय रहेगा सब्जियों में विकार, उनके लक्षण और प्रबंधन। बातचीत के अलावा ग्रामीण भाई लोकगीत सुनेंगे, साथ में बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी करवाई जाएगी। किसान भाई अपना खेती बाड़ी कार्यक्रम शाम को 7:30 से सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम होगा। स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर रामफूल घासोलिया। रात 8 संसद समीक्षा हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात 8:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। रात 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट्स। और रात 10 से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

कार्यक्रम विवरण में ये थी जानकारी आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सिंधी कार्यक्रम।

बे शयूं खणी अवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम सभिनी ॿुधंदड़नि खे सीमा हिरानीअ जो नमस्कार। अॼु जे प्रोग्राम में तव्हीं ॿुधंदा मुंहिंजा सिकीलदा गीत, जंहिंमें मुंहिंजी पसंदि जा कुझु गीत अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि। असां वटि त गीतनि जो सागर आहे, असांजे गीतकारनि संगीतकारनि असांखे एतिरो गीतनि जे सौगातनि सां नवाजियो आहे कि उन मां कुझु गीत चूंडण ॾाढा मुश्किल आहिनि, पर तॾहिं बि मुंहिंजी मनपसंद जा कुझु गीत अॼु तव्हां ॿुधंदा। सावण जा ॾींहं त उहा बि बहार जा ॾींहं हूंदा आहिनि, चौतरफ़ा सावक हूंदी आहे जेके ॾिसी ॾिसी मन बि साओ थींदो आहे, ऐं पाण पाण ज़ुबान ते सुठा सुठा गीत अची वेंदा आहिनि ऐं गीतनि जे ॿुधण जो लुत्फ़ु

तव्हीं ॿुधी रहिया हुआ प्रोफेसर राम पंजवाणी ऐं साथियुनि जी ॻातल भोजल जी हीअ रचना। हिन मौसम में सभिनि जे मन में बहार हूंदी आहे, पर जंहिंजा प्रिय परे हूंदा आहिनि उन्हनि में हिकु विरह जी वेदना वधी वेंदी आहे। हू पंहिंजे प्रिय खे यादि कंदा आहिनि ऐं हुन खे पुकारींदा आहिनि। त हिन ई विरह वेदना जो इहो गीत आहे भगवंती नावणीअ जो ॻातल, कि जॾहिं पंहिंजे प्रिय जी सिक थींदी आहे त कीअं हूअ गीत जे रूप में दिलि सां निकिरे थी। त अचो ॿुधूं ही गीत।

तवी भगवंती नावाणी जो गातल ही गीत बुधी रहा हुआ प्रोग्राम में अग्या ब्यापी गीत तवा के बुधाइंदस उनका पहरी चर्चा अज जे डीहते विश्व अज हिरोशिमा दिवस मलाई रहयो आही अज का ठीक 81 साल पहरी यानी 6 अगस्त 1945 जो डी दुनिया जे इतिहास में कारे अखरन सा लिखल आही हिने डीए जापान जी हिरोशिमा शहर ते अमेरिका पारा परमाणु बम किरायो वियो हो ये घटना मानव इतिहास जी सबनी खा विनाशकारी घटनाओं मा हिक आहे सुबह जो 8:15 ते थियण वारे हिन हमले सा कुछ ही पलन में हिरोशिमा जो शहर एक मलबे जे ढेर में बदल जी वियो एक अनुमान पारा 1,40,000 मानू हथो हथ ही हलाक थिया जडे की बाकी बचल मानू धीरे धीरे रेडिएशन जे दुष्प्रभाव सा पीड़ित थी करीब हलाक थिया हिन त्रासदीय परमाणु हथियारन जी भयानकता के उजागर कयो अई विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामन साब अवगत कराई ही डी न केवल इतिहास में सबनी खा विनाशकारी घटना जी याद दियाराइंदो आहे बल्कि मानवता अई शांति सागर दुनिया के मौजूदा परमाणु हथियारन जी अंधी दौड़ खा सबक वठण जो संदेश दींदो आहे हिन साल हिन जो मुख्य विषय आहे स्मरण उत्तरदायित्व अई लचीलोपन ही डी ऐतिहासिक स्मृति के संरक्षित रखण में मृतकन अई पीड़ितन जे प्रति सम्मान व्यक्त करण अई अचण वारी पीढ़ी के शांति जो महत्व सेखारण लाय मलायो वेंदो आहे अई परमाणु युद्धन जे खतरन जे बारे में जन जागरूकता भी वधाइंदो आहे मानव अई मानवता जो इहो ही कर्तव्य आहे कि असां सजी दुनिया में शांति जो संदेश विरायूं न कि युद्ध ऐं हिंसा जो छा कारण कि ही ॾींहं असांखे सेखारींदा आहिनि कि युद्ध ऐं हिंसा सां केवल विनाश थींदो आहे ॿियो कुझु बि न युद्ध ऐं हिंसा सां न केवल मानव सभ्यता खे आघात पहुचंदो बल्कि दुनिया जी शांति ऐं खूबसूरती बि ख़तम थी वेंदी त असां सभिनी जो ई कर्तव्य आहे कि असां हिक ॿिए जे लाइ स्नेह ऐं सम्मान रखूं ऐं हिकु साथ मिली करे मानव सभ्यता खे सुठे नमूने अॻियां वधायूं हिन ॾींहं सां गॾोगॾु मल्हायो वेंदो 7 अगस्त ते यानी कि सुभाणे नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारतीय हथकरघा उद्योग विश्व में सभिनी खां पुराणी ऐं जीवंत कुटीर उद्योगनि मां हिकु आहे हज़ारनि वर्षनि जी विरासत सां गॾु हीअ भारत जी समृद्ध संस्कृति ऐं कुशल शिल्प खे कौशल रूप सां ॾेखारींदो आहे भारतीय बुनकर पुराणे वक़्त खां हथ सां कताई बुनाई छपाईअ जी कला में पंहिंजी विशेषज्ञता लाइ सुञाणिया वेंदा आहिनि सॼे देश में नंढे नंढे कस्बनि ऐं गांवनि में ही उद्योग आहिनि जेका हिकु पीढ़ीअ खां ॿी पीढ़ी ताणी वेंदा आहिनि भारत जे स्वतंत्रता आंदोलन में बि हथकरघा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई 7 अगस्त 1905 जो स्वदेशी आंदोलन में बि हथकरघा उद्योगनि जो खूब समर्थन रहियो त इन विरासत जे सम्मान में भारत सरकार साल 2015 में 7

0: अगस्त जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित कयो हो। तॾहिं खां वठी हर साल हिन समुदाय सां जुड़ियल सभिनी जो सम्मान कयो वेंदो आहे। राष्ट्र जे सामाजिक ऐं आर्थिक विकास में हिन जे योगदान खे मान्यता ॾियण ऐं भारत जी हथकरघा विरासत खे संरक्षित रखण ऐं हुन खे वधाइण में पंहिंजो योगदान ॾियण जे लाइ ही ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ग्रामीण भारत में आजीविका जो ही हिकु वॾो साधन आहे ऐं हिन सां लख ई माण्हू जुड़ियल आहिनि। भारतीय हथकरघा में जुड़ण वारी संख्याउनि में महिलाउनि जी संख्या वधीक आहे। ही सब भारत जी पुरानी परंपराऊं ऐं कलाउनि खे सुरक्षित रखंदा आहिनि। त असांजी जेके पुराणी कलाऊं आहिनि, जेके पारंपरिक तौर सां असां सां गॾु हली रहियूं आहिनि, उहे असां पंहिंजी नई टहीअ खे बि ॾींदा रहूं, ताकी असांजो इहो कौशल अॻिते अॻु वधंदो रहे ऐं असांजी पीढ़ियूं हिन सां जुड़ी पई हुजनि।
1: साथियों, तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो, पर कॾहिं तव्हां दुकान ते आयो, कॾहिं ऑफिस में, कॾहिं मार्केट निकिता आहियो, त कॾहिं सफ़र पिया कयो, त रेडियो सेट खे मिस कंदा आहियो, है न? पर हाणे सिंधी प्रोग्राम ॿुधण जी राह में ईंदड़ सभु मुश्किलूं आसान करे रहियो आहे तव्हांजे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल। हा, इहो मोबाइल तव्हांखे हाण असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधाए सघंदो दुनिया जे कंहिं बि कुंड में। दुबईअ में हुजो, स्पेन में या अमेरिका, अफ्रीका में, हर जॻह ते तव्हां ॿुधी सघंदा पंहिंजो प्यारो सिंधी प्रोग्राम। तव्हांखे करणो बसि एतिरो ई आहे त जीअं तव्हां ॿिया एप्स डाउनलोड कंदा आहियो, बसि उएं ई प्ले स्टोर ते वञो ऐं सर्च वारी जॻह ते टाइप कयो NEWSONAIR, यानी न्यूज़ ऑन एयर, ऐं इन खे इंस्टॉल कयो। इंस्टॉल कंदे ही तव्हांजे मोबाइल जी स्क्रीन ते अशोक स्तंभ वारो न्यूज़ ऑन एयर ऐप अची वेंदो। तव्हां उन खे चालू कयो। इन खे चालू कंदे ही मोबाइल स्क्रीन जे मथां साए रंग जो रेडियो जो निशान अची वेंदव। इन खे क्लिक कंदे ही तव्हांखे आकाशवाणीअ जा घणेई केंद्र नज़र ईंदा ऐं इन मां तव्हांखे सिलेक्ट करणो आहे आकाशवाणी जयपुर, जंहिं ते तव्हां ॿुधी सघंदा असांजा सिंधी प्रोग्राम मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहुं। त ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते।
0: तव्हीं ॿुधी रहिया आहियो मुंहिंजा सिकीलदा गीत। त हिन प्रोग्राम में हाणे तव्हीं ॿुधंदा चंद्रू आत्मा जो गातल हे गीत, जेको आहे ईश्वर जी लाइ पुकार जो गीत, के पंहिंजो सजण मूंखे कर। त पेश आहे ही गीत।

तवी चंद्रु आत्मा जो गातल हे गीत बुधी रहा हुआ प्रोग्राम जे आखिर में तवी बुधंदा हरिचंद लालवानी जो गातल ही गीत जिको असां के जोड़े रहा है असांजी सिंधी भाषा सिंधियत सा कि असांजी

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बरसात फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा, गाने के लिए संगीत शंकर जय किशन का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना। गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आर्या सावन झूम के फिल्म के इस गाने में आप लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें सुनेंगे।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं मुकेश और शारदा की। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने के लिए

0: मुकेश और शारदा के गाए अराउंड द वर्ल्ड फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र से अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। ब्रिक्स देशों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों का समूह वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने, सदस्य देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा। बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में मिले सुझावों को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जयपुर की ये बैठक आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगी। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। बाद में श्री बिरला ने प्रश्न

0: चर्चा होगी। इस दौरान अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। दौरे के बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं सहित समकक्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बोर्ड को 10वीं 12वीं प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बारा में कल तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप संस्थापकों और नवाचारकर्ताओं को उद्यमिता तथा स्टार्टअप से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य जिले में नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को स्टार्टअप इंडिया की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है। ये कार्यशाला स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत आयोजित की जा रही है। पाली जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का घर घर सर्वे और एंटी लार्वा अभियान जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मारवाल ने बताया कि अभियान के तहत चिकित्सा दल घर घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर रहे हैं, संभावित रोगियों की पहचान कर जांच और उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से हर रविवार को ड्राई डे मनाकर घरों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले के कुम्हेर में सबसे अधिक 14 सेंटीमीटर, रूपबास में 13 और अलवर जिले के गोविंदगढ़ में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ और फिल्मी गाने। अब आपको अनवर का गाया हुआ अर्पण फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मुकेश की आवाज़ में सुहाग रात फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। इंदिवर के लिखे इस गाने को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म संगीत की इसका रिक्वेस्ट मिली, जब सुनिए प्रतिज्ञा फिल्म का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा, गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

प्यासा सावन फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। गीत को लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने गाया है। गीत रचना संतोष आनंद की है। इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में के आखिर में हम आपको तराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। तिलकराज थापर के बोलों को सुरों में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

तराना फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला जगत कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माँ मिताहारा। माँ मिताहारा, गर्भावस्था हो, प्रसव के बाद की रिकवरी या हर दिन की सेहत, हर महिला को चाहिए सही पोषण। पेश है माँ मिताहारा, पारंपरिक भारतीय रेसिपीज और आधुनिक पोषण विज्ञान का भरोसेमंद संगम। बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना रिफाइंड शुगर, शुद्ध पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू, मिक्स और हेल्दी स्नैक्स जो हर महिला के स्वास्थ्य का रखे ख्याल। आज ही जुड़िए माँ मिताहारा के साथ, क्योंकि स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है। माँ मिताहारा, हर महिला की सेहत का पारंपरिक साथी।
1: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु

लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और माताओं को इसके लिए एक अनुकूल और सहयोगी माहौल देना है। सखियों, माँ का दूध शिशु का पहला टीका माना जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद यानी कि पहले एक घंटे के भीतर भीतर दिया जाने वाला गाढ़ा और पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है, बच्चे के लिए किसी जीवन रक्षक कवच से कम नहीं होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चों को कई गंभीर बीमारियों और संक्रमणों से बचाते हैं। सखियों, स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए ही वरदान माना जाता है। यह बच्चे के लिए वरदान इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ कुपोषण और निमोनिया जैसी बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और माँ के लिए वरदान इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ के शरीर को प्रसव के बाद तेजी से स्वस्थ होने में मदद करता है और स्तन तथा अंडाशय के कैंसर के जोखिम को कम करता है। सखियों, स्तनपान केवल एक माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज की साझी जिम्मेदारी है। माताओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सहज माहौल देना, मातृत्व का अवकाश देना और परिवार में उचित देखभाल और पोषण देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सखियों, इस स्तनपान सप्ताह पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर माँ को स्तनपान कराने का सही माहौल और सम्मान मिले, ताकि हर बच्चा एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य पा सके। तो सखियों, इसके साथ साथ हम मातृत्व से जुड़ा सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: माँ मिताहरा, गर्भावस्था हो, प्रसव के बाद की रिकवरी या हर दिन की सेहत, हर महिला को चाहिए सही पोषण। पेश है माँ मिताहरा, पारंपरिक भारतीय रेसिपीज और आधुनिक पोषण विज्ञान का भरोसेमंद संगम। बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना रिफाइंड शुगर, शुद्ध पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू, मिक्स और हेल्दी स्नैक्स जो हर महिला के स्वास्थ्य का रखे ख्याल। आज ही जुड़िए माँ मिताहरा के साथ, क्योंकि स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है। माँ मिताहरा, हर महिला की सेहत का पारंपरिक साथी।
1: सहयोग कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं और सुनते हैं वार्ता महिलाओं और उनके पोषण को लेकर, जिसकी वार्ताकार हैं ईशा गुप्ता। तो आइए सुनते हैं वार्ता।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं लोगों से और आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक विषय है गर्भवती और धात्री महिलाओं में पोषण की कमी का। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं ईशा गुप्ता जी, जो मामित आहारा के नाम से अपना एक स्टार्टअप चलाती हैं और इस माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं ईशा गुप्ता जी का। ईशा जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: ईशा जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि भारत जो सा एक विकासशील देश है और यहाँ पर महिलाओं के अंदर माल न्यूट्रिशन या पोषण की कमी की बहुत गंभीर समस्या है, तो क्या ऐसा विचार था जिसने आपको हिट किया इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए?
2: जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सा सवाल हमसे किया है। बेसिकली ये सारी मेरी खुद की पर्सनल जर्नी रही है। हमें लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज हो गई है या हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पुराने जो ट्रेडिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी नानी दादी या हमारी मम्मियाँ हमें बताती है कि गोंद के लड्डू या बतीसा का लड्डू ये सारे खाने चाहिए ड्यूरिंग देयर पोस्ट डिलीवरी टाइम पीरियड, वो क्यों ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये जर्नी फेस करी है। जब पहला बेबी हुआ उस टाइम पीरियड पे मेरी मदर ने ये सारी चीजें मुझे भेजी थी, एंड उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी, तो मुझे लगा क्या ही खाना है, एंड द साइज ऑफ द लड्डू इज अराउंड 100 grams, तो उसको देख के एपेटाइट ऐसा हो जाता था तो खाया नहीं जाता था। एंड बट जो नॉर्मल 45 days का टाइम पीरियड होता है वो ऐसा है, किसी भी फीमेल के लिए कोल्ड स्टेट होता है उस टाइम पीरियड पे, उसकी बॉडी काफी वीक होती है। तो जो भी घर में कहा जाता है वो जरूर खाना चाहिए, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। मैंने ये सारी चीजें नहीं खाई थी, शायद इसीलिए मुझे 45 डेज की जगह 3.5 months लगे थे रिकवर होने में। मेरा बैकएक बहुत रहता था, मुझे लैक्टेशन का बहुत मेजर इशू होता था, मतलब दूध बनता ही नहीं था। और पहले बच्चे के टाइम पीरियड पे आधे से ज्यादा मदर्स जो होती है वो अनअवेयर होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जब दूसरा बेबी हुआ उस टाइम पीरियड पे मैंने ये लड्डू जो मेरी मदर ने भेजे मैंने सब खाए, तो मुझे दोनों प्रेगनेंसी में डिफरेंस समझ में आ गया कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब वो क्या है, कैसे है, वो नहीं पता था। तो वो हमने फिगर आउट करा। मैं उस टाइम पीरियड में टीचिंग के प्रोफेशन में थी, सो आई जस्ट क्विट माय वर्क एंड स्टार्टेड डूइंग आरएनडी ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ आयुर्वेदा स्टफ, कि ये ब्राह्मण

0: क्यों यूज़ की जाती है, या अश्वगंधा, शतावरी, पीपला मूल, ये सब क्यों यूज़ की जाती है,
1: जी
0: इनके
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: फ़ायदे होते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: तब मुझे समझ में आया। एंड मैंने कई अपने सारे दोस्तों से भी इसके ऊपर डिस्कशन किया, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे आज के टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोग काम की वजह से अलग अलग शहरों में रहते हैं, सो पेरेंट्स साथ में है नहीं, तो कौन ये बना के देगा एंड ऑल। तब हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा एंड हमने 21 में इसको मार्केट में लॉन्च किया विद द ब्रांड नेम माँ मित आहारा। इट्स अ संस्कृत वर्ड विच बेसिक बेसिकली मीन्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर अ मदर, यानी
1: जी
0: माँ का संपूर्ण आहार।
1: जी
0: सो फिर हमने एक डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट और एक आयुर्वेदा डॉक्टर को हायर करा एंड उनके सुपरविजन में हमने R&D करना शुरू किया।
1: जी जहाँ आपने बताया, अपनी खुद की जर्नी बताई ईशा जी की, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने इतना रिसर्च किया है इस काम के ऊपर, तो क्या एक मदर बनने से पहले न्यूट्रिशन पर शुरुआत से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है? एक जो एडोलसेंट एज के अंदर बच्ची आती है या कोई महिला हुए, तो उस एडोलसेंट एज से जब तक वो बिकम अ मदर, उस बीच की जो उसकी जर्नी होती, क्या उसमें न्यूट्रिशन की कितनी आवश्यकता रहती?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो शुरू से ही होती है, मे बी और एडिसलेंस एज और फिर आपके प्यूबर्टी जैसे ही आनी शुरू होती है। बट पहले अगर आप इसको हमने जब रिसर्च की तो आप इसको ऐसे देखेंगे, पहले प्यूबर्टी जो आती थी दैट इज़ कम एट द एज ऑफ अराउंड 14 और 15,
1: जी
0: नाउ आवर डेज इट इज़ वेरी अर्ली विच इज़ 6 और 7, मतलब 6 और 7 साल की अवस्था में ही बच्चों को
1: जी हाँ, एज ऑफ प्यूबर्टी
0: एज ऑफ
1: इनके,
0: प्यूबर्टी आने
1: जी
0: लगी है।
1: जी
0: तो ये
1: हाँ
0: चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो हमें शुरू से फीमेल की न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें एक बताया जाता है कि बच्चे हैं दोनों एक जैसे ही हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेडी को बहुत सारी चीज़ें आगे जाके फेस करनी पड़ती है जो मेंस को नहीं करनी पड़ती
1: जी
0: नॉर्मली,
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: ये एक डिफरेंस है। तो आपको शुरू से ही बच्चे के न्यूट्रिशन, खासकर लड़कियों के न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है।
1: दूसरा, एक महिलाओं में सबसे कॉमन समस्या है खून की कमी की,
0: बिल्कुल
1: तो ये भी एक, और जब हम देखते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी होती है तो बच्चियों में खास तौर पर ये सबसे बड़ी समस्या आती है, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट्स उस लेवल तक भी लेकर के जा रहे हैं कि, या किसी को PCOD की प्रॉब्लम होती है या इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए भी क्या आप कुछ काम कर रही हैं?
0: बिल्कुल, जब हमने ये स्टार्ट किया था, स्टार्ट मेरी अपनी पर्सनल जर्नी से हुई थी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, फिर हमने डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, तब हमें और क्लैरिटी आई कि प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उसके भी पहले फीमेल को बहुत सारे इशूज हैं, जैसे अभी आपने बोला प्यूबर्टी एक इशू है, PCOD, PCOS इज देयर इज एन इशू, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ इशू, इनफर्टिलिटी इज इशू, पेरीमेनोपोज और मेनोपोज इज अगेन इशू। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमेन, जब से प्यूबर्टी आती है तब से लेके पेरीमेनोपोज और मेनोपोज तक, ये पूरी एक साइकिल चलती है
1: जी
0: एंड
1: हाँ
0: सब कुछ आपके पीरियड से ही रिलेटेड है, इसमें कहीं भी कोई चीज अलग से नहीं आती है। तो हम सब चीजों पर काम कर रहे हैं, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन PCOD, PCOS ऑल्सो, एंड वी आर बिल्डिंग सम मोर प्रोडक्ट्स अराउंड दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ निप्टियम, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी,
1: जी
0: सो दे
1: जी
0: आर हेल्पिंग अस एंड गाइडिंग अस कि हम PCOD, PCOS के लिए क्या कोई खाने की चीज हम बना सकते हैं। बट सिर्फ ये खाने से ही कवर नहीं हो सकती, इसकी रिकवरी के लिए आपको अपनी पूरी साइकिल को ठीक करना
1: जी
0: पड़ेगा,
1: हाँ जी
0: जिसमें
1: हाँ
0: आपकी स्लीप साइकिल हो गई, आपकी
1: जी
0: फूडिंग
1: हाँ
0: हैबिट्स
1: जी
0: हो गई,
1: हाँ
0: लाइफ स्टाइल हो गई,
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ
0: हमारी बॉडी की सर्कैडिक जो रिदम होती है वही चेंज हो गई है। आज के टाइम पे जो जेंजी हैं वो रात को देर तक जगते हैं एंड सुबह देर तक उठते हैं, और पहले के टाइम पे ऐसा होता है रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर ये मेजर रोल प्ले कर रही हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन इट।
1: जी, जैसे हम अभी स्तनपान सप्ताह भी मना रहे हैं और बेसिकली हमारी बात भी उसी आहार पर हो रही है, लैक्टेटिंग वुमन की हम बात करते
0: जी
1: हैं, तो ये जिस तरह का भी आप फूड प्रोडक्ट बनाती हैं, क्या क्या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आप लैक्टेटिंग वुमन को आप देती हैं या प्रोवाइड करवाती हैं?
0: जी लैक्टेशन के लिए दो चीज़ें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन इज़ सौंठ जापा लड्डू, जो
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है, एंड द अनादर वन इज़ बतीसा लड्डू। ये दो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप ये ज़रूर खाएं। बतीसा लड्डू में हम 32 तरह की हर्ब्स डालते हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, पीपला मूल, पीपल, कमरकस, बरड़ी, हरड़ एंड ऑल करके, और भी इसमें कई सारी हर्ब्स डाली जाती हैं, उन सब का एक प्रॉपर प्रपोर्शन बनाया जाता है एंड देन उसको लड्डू के फॉर्म में बनाया जाता है। कईयों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप इसको लड्डू के फॉर्म में ही क्यों दे रहे हैं, आप इसको पाउडर या फिर वैसे भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पर इन हर्ब्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है, आप इजीली उसको नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो उसके साथ जैगरी को जब मिलाया जाता है तो उसकी जो हार्डनेस होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो उसको थोड़ा कम कर लेता है, उसका तीखेपन को खत्म कर
1: बैलेंस कर
0: लेता है,
1: लेता है।
0: बैलेंस कर लेता
1: जी
0: है,
1: हाँ जी हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप
0: जी जी
1: बना
0: जी
1: रही
0: तो
1: हैं।
0: अभी ये दो प्रोडक्ट इसके लिए हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट हम और रिकमेंड करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप हल्दी का दूध ज़रूर लीजिए या फिर हल्दी का लड्डू भी प्रेफर कर सकते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। हल्दी इज़ एन एंटीबायोटिक अपने आप में, तो वो आपको हील अप होने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा जो सुबह अजवाइन और हरीरा दिया जाता है जिसमें कुछ हर्ब्स डालते हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स और घी वगैरह डाला जाता है, वो भी एक अच्छा बैलेंस करने के लिए आपके लैक्टेशन के लिए बहुत हेल्प आउट करता है।
1: दूसरी बात, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जेन ज़ी की भी बात कही और
0: जी
1: अभी जिस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही है, किसी के पास इतना समय होता नहीं है, फास्ट फूड का कल्चर बहुत
0: राइट
1: ज़्यादा है, इन दैट केस डेफिनेटली वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर होगी।
0: होगी बिल्कुल।
1: तो उससे आउटकम करने के लिए क्या आप इसके अलावा कुछ और भी रिकमेंड करती हैं लाइफ साइकिल में चेंज करने के लिए?
0: बिल्कुल, आपको अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्लीप फैक्टर है। फूडिंग हैबिट इज अ मेजर थिंग। इसके अलावा स्लीप साइकिल, ऐसा नहीं है क्योंकि आप जिस तरह से माहौल चल रहा है आप बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते जंक, पर वंस इन अ वाइल अगर आप लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलर बेसिस पे आप इनका कंजम्पशन करोगे तो आपकी बॉडी को हिट करेगा ही करेगा। तो आप अपनी फूडिंग हैबिट, जितना भी आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, जितने की दालें हुई राजमा छोले एंड ऑल, जितना घर का बना आप खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा।
1: अब आपके प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है आपका टारगेटेड जो कंज्यूमर है वो कितना फैला है, कहाँ तक आपका नेटवर्क है?
0: जी हम पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट वंस इन अ मंथ हमारा पार्सल जो है वो इंडिया से बाहर भी जाता है, जैसे जर्मनी, शिकागो, कैलिफोर्निया, यूएस, यूके, और ये भी सिर्फ रेफरेंस के थ्रू जाता है। किसी एक ने मंगाया होगा, उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को बताया होगा, फिर वो ऑर्डर करते हैं। इस तरह से नॉर्मली हम इंडिया से बाहर भी डिलीवर कर रहे हैं, पैन इंडिया हम ऑलरेडी डिलीवर कर ही रहे हैं।
1: इसमें प्रिजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो क्या, क्योंकि एक लंबे समय तक उनको आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो क्या आप प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं तो वो किस कैटेगरी के
0: ओके
1: प्रिजर्वेटिव्स हैं?
0: हमने अभी तक इसमें कोई प्रेजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज 4 मंथ मैक्स टू मैक्स। बट अब हम इसके अंदर पैकेजिंग के थ्रू इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के प्रोसेस में लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ निफ्टम एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पर हमने इसमें अभी तक कोई प्रेजर्वेटिव, कोई शुगर वगैरह कुछ नहीं डाला है, कोई एडेड शुगर नहीं है। वी यूज ओनली डेट्स, फिग्स और जैगरी, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई स्वीटनर भी हमने यूज नहीं करा है। यही चीजें हैं जो इसको स्वीटन बनाती हैं, एंड प्रेजर्वेटिव तो जीरो प्रेजर्वेटिव इज देयर।
1: एज यू से कि ये आपका स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप्स में सबसे बड़ी समस्या आती है फंडिंग्स की
0: जी
1: और दूसरा रिकॉग्निशन की
0: जी बिल्कुल।
1: तो इन दोनों समस्याओं से आप कैसे आपने आउटकम किया?
0: देखिए जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो सबसे पहले 2 साल हमें R&D में ही लग गए, फिर हमें डॉक्टर्स का वैलिडेशन जब मिला जयपुर में तो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि हमने भी अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें खाई थी, सारी गायनेकोलॉजिस्ट, एंड हम अपने पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड करते हैं कि सासू माँ अगर कुछ कह रही है, बना के दे रही है तो ज़रूर खाएँ, उसमें मना ना करें। और दूसरा बात आती है, अभी तक टिल नाउ हमने फंडिंग रेज की है बट बहुत ज़्यादा नहीं की, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिली है, दैट इज़ विद द एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इंक्यूबेशन, एंड हम IIMS बैंगलोर में इंक्यूबेटेड हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स में इंक्यूबेटेड है, एंड देन अदर इज स्टैनफोर्ड में भी हम लोग इंक्यूबेटेड हैं। सो यहाँ से हमें एक वैलिडेशन और रिकॉग्निशन मिल गया, क्योंकि जिस तरह से हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें कहीं छूटती चली जा रही हैं। अगर मैं आज ये बात करूँ कि ये लड्डू बना के देने के लिए मेरी मदर हैं, बट अगर मेरी बेटियों के लिए जब ये टाइम आएगा तो शायद अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या उनको बना के दे पाती। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे समझ में आता है कि ये पुराने, आज अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि आज से पहले हमारी दादी नानी के जब डिलीवरी होती थी उस टाइम पे वो 12 बच्चे पैदा करते थे, वो बात एक अलग है, इतना सर्वाइव नहीं कर पाते
1: जी,
0: थे, बट दे आर नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शंस वगैरह होते ही नहीं थे, और आज के टाइम पे ज्यादातर सब सी सेक्शंस पे आ रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर्स का भी कुछ वो नहीं है, रीजन बींग हमारा फूड हैबिट लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल एंड फूडिंग हैबिट्स।
1: ईशा जी, बात करते हैं आपकी रिसर्च पर। जहाँ तक हम देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम में जो रेसिपीज़ हुआ करती थी, तो वो रेसिपीज़ आप कहाँ से लेकर के आईं, किस तरीके से आपने उन रेसिपीज़ पर रिसर्च किया?
0: जी ये कुछ पुरानी रेसिपीज़ है जो हमारी नानी और दादी सब यूज़ किया करते थे। हमने फिर डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट और एक आयुर्वेदा डॉक्टर को अपने साथ इन्वॉल्व करा उनके सुपरविजन में, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगर अश्वगंधा यूज़ करना है तो कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, बट एक आयुर्वेदा डॉक्टर नोज़ कि एक अश्वगंधा का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए जो एक जेनरिक फॉर्म में।

0: होना चाहिए जो इजीली फीमेल कंज्यूम कर सकती है, जब तक उसे कोई मेजर इशू नहीं है. तो इसीलिए हम जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम, क्योंकि रीजन ये होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको सूट नहीं करती, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो हमें पहले से अगर आप बता देंगे तो आगे जाके आपके लिए दिक्कत नहीं होगी. तो ये हम पहले से क्लियर आउट कर लेते हैं. एंड आयुर्वेदा डॉक्टर, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के सुपरविजन में ये बनाया गया. फिर हमने इसकी लैब टेस्ट वगैरह कराई एंड वी हैव अ पर्सन एज अ फूड टेक्नीशियन. वी हैव अ पर्सन एज अ फूड टेक्नीशियन जिनके सुपरविजन में, जिनके गाइडेंस में सारी चीजें की जाती हैं.
1: जी ईशा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो स्तनपान सप्ताह भी चल रहा है, तो स्तनपान सप्ताह में आपने जो न्यूट्रिशन के बारे में या आपने प्रोडक्ट के बारे में जो बहुत जानकारियां दी, निश्चय ही इसे लोग सुनकर के लाभान्वित होंगे. आप चलते चलते हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, जितनी भी महिलाएं इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उन्हें जो स्तनपान सप्ताह है इसमें क्या एक ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगी?
0: आज के टाइम पे ज़्यादातर फीमेल्स को लैक्टेशन इशू आ रहा है. रीज़न बीइंग कि फूडिंग इतना हो नहीं पा रहा प्रॉपर जो होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बेबी को प्रॉपर फीड नहीं करा पा रही हैं. एंड ज़्यादातर महिलाएं टॉप फीड पे अपने बच्चे को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मिल्क सप्लाई हो नहीं रहा है तो बच्चा कैसे फीड कर पाएगा. बट मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगी सारी महिलाओं को कि जितना वो फीड कराएंगी, लैच जितना बच्चा करेगा मिल्क प्रोडक्शन उतना ही होगा. घर का बना खाना खाएं 45 डेज के अंदर, जो हमारा इनिशियल टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है. तो उस टाइम पीरियड पर थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि सी सेक्शन होता है इस चक्कर में. अदरवाइज आप बच्चों को जितना फीड कराएंगे, बेबी जितना लैच करेगा उतना मिल्क सप्लाई होगा. स्टार्ट कंज्यूमिंग दलिया, जितनी मिलेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी हैं. एंड वो आपको लैक्टेशन में भी बहुत हेल्प आउट करेंगी. तो प्लीज घर का बना खाना खाएं, और जैसा आप घर में मदर इन लॉ या मदर कहती हैं प्लीज वैसा करें.
1: जी ईशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने स्टार्टअप के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में और अपने काम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी, निश्चय ही हमारे जो सुनने वाले लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे. और अब क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ. तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं. नमस्कार.
0: नमस्कार सर. नमस्कार. थैंक यू.
2: सखियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता महिलाओं और उनके पोषण को लेकर, जिसकी वार्ताकार थी ईशा गुप्ता जी.
1: मां मिताहरा, गर्भावस्था हो, प्रसव के बाद की रिकवरी या हर दिन की सेहत, हर महिला को चाहिए सही पोषण. पेश है मां मिताहरा, पारंपरिक भारतीय रेसिपीज और आधुनिक पोषण विज्ञान का भरोसेमंद संगम. बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना रिफाइंड शुगर, शुद्ध पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू, मिक्स और हेल्दी स्नैक्स जो हर महिला के स्वास्थ्य का रखे ख्याल. आज ही जुड़िए मां मिताहरा के साथ, क्योंकि स्वस्थ मां स्वस्थ परिवार की नींव है. मां मिताहरा, हर महिला की सेहत का पारंपरिक साथी.
3: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ. सिंपली कॉल.
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान.
2: तो सखियों, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं ये सुंदर सा गीत.

0: तो सखियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति आपकी सखी सहेली ममता को। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे माँ मिताहरा। गर्भावस्था हो, प्रसव के बाद की रिकवरी या हर दिन की सेहत, हर महिला को चाहिए सही पोषण। पेश है माँ मिताहरा, पारंपरिक भारतीय रेसिपीज और आधुनिक पोषण विज्ञान का भरोसेमंद संगम। बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना रिफाइंड शुगर, शुद्ध पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू, मिक्स और हेल्दी स्नैक्स जो हर महिला के स्वास्थ्य का रखे ख्याल। आज ही जुड़िए माँ मिताहरा के साथ, क्योंकि स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है। माँ मिताहरा, हर महिला की सेहत का पारंपरिक साथी।

0: us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Bombay High Court today convicted former Tehalka editor Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case involving a former junior colleague. A division bench of Justices Neela Gokhale and Amit Jamsandikar of the Bombay High Court's Goa bench convicted Tejpal under provisions of the Indian Penal Code related to rape by a person in a position of trust or authority, sexual harassment, and assault with intent to disrobe a woman. The court said it would pronounce the sentence later in the afternoon. During the hearing, Tejpal sought leniency, describing himself as a political victim and the father of two daughters. The case stems from allegations made by a former junior colleague who accused Tejpal of sexually assaulting her inside a hotel elevator during the ThinkFest event in Goa in November 2013. After he was acquitted by the trial court in 2021, the Goa government challenged the verdict in the High Court. The Supreme Court today refused to further relax the bail conditions of Ashish Mishra, the prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymala Bagchi and V. Mohana dismissed Mishra's application seeking relaxation of his bail conditions. The Supreme Court today asked petitioners, including Doctors Association, to file their responses to the centre's affidavit stating that shifting any ETUG from pen and paper to a computer-based format is under consideration. A bench of Justices B.S. Narasimha and Alok Arade scheduled the next hearing for August the 19th. The centre told the court that it is considering conducting any ETUG in a computer-based format, either in a single-stage or a two-stage model similar to the joint entrance examination, mains and advanced. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Ji Yatra has resumed after a one-day halt. The pilgrimage, which commenced on the 3rd of July, witnesses thousands of pilgrims undertaking the sacred journey under a multi-layered security grid on a daily basis. A report.
1: More than 470,000 pilgrims have performed darshan at the Holy Cave Shrine since the commencement of the Yatra. Every day, thousands of pilgrims, including men, women, children and others, undertake the Yatra, which is scheduled to culminate on August 28. The Yatra is presently continuing through the Baltal route only, as the traditional Pahalgam route is undergoing maintenance. Authorities have made elaborate arrangements to ensure smooth and safe conduct of the Yatra. Shfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, parts of Northeast India and the Andaman and Nicobar Islands till tomorrow. In Kerala, red alert indicating extremely heavy rainfall in three districts. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: Idukki, Kottayam and Pathanamthitta districts in Kerala are under red alert, indicating the likelihood of extremely heavy rainfall. These districts were under orange alert earlier this morning. Orange alert predicting isolated very heavy rainfall remained in force in five districts. The remaining six districts in Kerala are under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Monsoon has intensified across Jharkhand, bringing a significant change in weather conditions over the past 24 hours. We have a report.
3: At least 20 people have lost their lives due to lightning strikes in Jharkhand during the past 24 hours. Giridih district reported the highest number of casualties with 11 deaths. The India Meteorological Department has issued an orange alert for the next 3 days in vulnerable areas of northwestern and central Jharkhand, warning of very heavy rainfall. A yellow alert has also been issued for the entire state, including Ranchi, Khuti, Ramgarh, Bokaro, Dhanbad and Koderma, with a warning of strong winds. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Flood conditions in Odisha continue to improve as water levels in all major rivers, including the Mahanadi, have receded. However, fresh heavy rainfall has caused widespread waterlogging in Bhubaneswar. Relief and restoration work is continuing in the flood-affected districts, even as authorities remain on high alert. We have more from our Odisha correspondent.
4: At present, 8 sluice gates of the Hirakud Dam remain open to regulate the reservoir level. Even as water levels fall, the hardships of flood-affected people continue, with restoration of normal life still a major challenge. Meanwhile, continuous heavy rain since last night has disrupted normal life in the capital city, Bhubaneswar. Several roads and low-lying areas in the city remain waterlogged, with rainwater entering many houses and damaging household belongings. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Keonjhar and Mayurbhanj districts today, and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under-20 Championships. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. Aakashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
6: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
5: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
7: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
5: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
8: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
9: There is actionable recommendation to strengthen

0: India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon aur desh ke liye jiyenge, desh ke liye marenge. That should be the commitment.
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। नीचे सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित शिवराम।
8: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
9: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
10: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंडित शिवराम के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थे पंडित शिवराम। अब आज का राजस्थानी लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और FM बैंड पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के गाए खट्टा मीठा फिल्म के गाने से कर रहे हैं। गुलजार की इस गीत रचना को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए नैना शर्मा का गीत जयदेव की बनाई धुन पर। मुकेश ने इस गाने को किनारे किनारे फिल्म के लिए गाया है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में जो गीत अब आप सुनेंगे उससे हमने लहू के दो रंग फिल्म से लिया है। गीत को किशोर कुमार ने गाया है, फारूक कैसर के लिखे इस गाने को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लता मंगेशकर के स्वर में लीजिए अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना। अनजान के बोलों को सुरों में डाला है संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने।

लीजिए, अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना। संगीतकार हैं रवि नीलकमल। फिल्म के इस गीत को आशा भोसले ने गाया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मुकेश का गाया हुआ संगम फिल्म का गाना। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने के लिए धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है।

मुकेश के गए संगम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या

0: आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए। उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस

0: पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
2: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
2: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
3: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
4: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
2: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
4: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
5: जी जी चलो चलो देखते हैं।
2: चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
6: अहोम के महाराज की जय हो।
7: जय हो, जय हो।
6: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
8: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Отход. А ты, Сундар, हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था

0: और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
1: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
2: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
1: अच्छा।
2: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
1: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
1: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
2: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
1: ओह।
2: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
1: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
2: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
1: ओह।
2: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहाँ भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
1: अच्छा।
2: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
2: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
2: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

आगे कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है।
2: चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक च
0: अरे ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। हाँ। ये तो, नो, नो, शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मम्मा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते, तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते कितनी सुंदर है।
1: अरे सुन तो,
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे, वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी। प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे, तो खूब पेड़ लगाइए। वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
7: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी

0: वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ, हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ, मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू। और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है। इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूँ कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही, हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए। सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहाँ हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही PT परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल

0: में रहे होंगे।
1: हाँ डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स। 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में, तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
0: ओके, पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
0: ओके,
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी है, तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीज़न कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली सर्टेनली, एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज़ आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है, दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
0: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फ़र्क आ गया होगा?
1: फ़र्क तो हर जगह आया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला, बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
0: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग।
1: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा, तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ। बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज़ जम्मू एंड कश्मीर।
0: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
1: बात ही कुछ और है, वहाँ के लोगों के साथ हमने बहुत काम किया, उनके साथ हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है, तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है,
0: जी,
1: कोई पुणे में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है. सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग.
0: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म. आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं. जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए.
1: बिल्कुल. और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने.
0: okay.
1: लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड. आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर.
0: और हमारा
1: यस या ड्रेडेड इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट. सो दैट वे यस. बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है. लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड.
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ बिल्कुल. वो तो ज़रूरी है. लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी.
0: राइट. कुछ बताइए ना वहाँ पे अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई या कोई कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो एंड यू आर सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ.
1: देखिए वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं. मुझे okay. अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के.
0: okay.
1: लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में.
0: okay.
1: जो सूरनकोट में हुआ था.
0: oh, I see.
1: इसके अलावा
0: इलैबोरेट करना चाहेंगे?
1: नहीं. okay. एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना okay. था और no. वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई. बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी. और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था. और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे.
0: okay.
1: लेकिन इस तरीके के वाक्ये मेरे साथ हुए हैं. मैं बच गया. लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है. अपनी जान का बलिदान दिया है. मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस. सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई.
0: यस.
1: बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
0: फॉर द नेशन.
1: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री.
0: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है बस, अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता.
1: नशा है, जुनून है एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव.
0: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं.
1: हाँ, पहला नशा
0: जी.
1: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना.
0: एनी स्पेसिफिक रीज़न?
1: हाँ, इसका रीज़न दो तीन रीज़न है. पहला रीज़न उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था,
0: होता था
1: कश्मीरी गेट के बाहर. तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी. मैं आई थिंक 11th या 12th में था. और वो मुझे याद है वो गाना पूरा. इट इज़ इम्प्रिंट ऑन माय माइंड. और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था. तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा. तो आई यूज्ड टू से जो मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज़ आवर फर्स्ट लव.
0: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी. इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में.

0: तो हम अपने सुनने वाले को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके,
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर

0: मुखबिर,
1: ओके
0: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता
1: इन्फॉर्मर,
0: है, और ये 17 कहानियां हैं इसमें,
1: ओके
0: सब जम्मू कश्मीर की कहानियां हैं।
1: अच्छा,
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियां हैं,
1: ओके
0: वहाँ के लोगों की कहानियां हैं।
1: ओके,
0: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है अमन के फरिश्ते, ये कहानी है, दिस इज नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है, वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है। और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
1: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाए और फिर बाद में?
0: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
1: जी,
0: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
1: जी।
0: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
1: जी,
0: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
1: ओके,
0: और मेरे लिए एज ए राइटर
1: जी
0: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
1: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं इसमें 17 कहानियां हैं, जैसे ये कहानी मुखबिर जो
1: जी,
0: पहली कहानी
1: जी,
0: है मुखबिर
1: जी,
0: जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है,
1: ओके,
0: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
1: ओके, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स राइट? या
0: सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
1: रियल आल्सो,
0: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
1: जी,
0: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। सो मे नॉट बी रियल बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
1: स्पाई नेम्स कह लो?
0: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए। कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर।
1: मेरा भी एक नाम है,
0: आपके नाम पर भी लग देंगे किताब?
1: मेरा नाम रखा हुआ है।
0: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
1: फाल्कन वन।
0: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फैल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था, तो मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी, तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफ़ी खतरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
0: हाँ, मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी निकनेम्स की, व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है निकनेम्स की, मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे, तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
1: ओके,
0: शायद हर पेशे में होता होगा, लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है। तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज़ हाउ।
1: एंड यू एंजॉय इट? वी एंजॉय दीज नेम्स,
0: या बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है,
1: आदत बन जाती है, एक अपनापन भी होता है।
0: एक अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारासिंगा, बारासिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी,
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं।
1: ओके,
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
1: ओके,
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
1: कॉल साइंस, यस।
0: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं।
1: ग्लैमरस कर देते हैं जी। हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में, द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर। तो वो आए थे, तो हम बताया, वो जो 25 या 26 सेकेंड की जो क्लिप है यूट्यूब में,

0: फॉस्ट ने टाइगर हिल पे अटैक किया था, लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
1: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं, उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
0: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
1: हाँ गुलाम हसन,
0: गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
0: जी,
1: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है कैप्टन अभिमन्यु कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है, और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है, और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद,
0: उसमें
1: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है, तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
0: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी।
1: या आई दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज,
0: होता है सर
1: कुछ
0: ना कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना एसएमएसेस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
1: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
0: जी। विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वी विल नॉट आस्क दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर, सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो ट्वेल्थ का सिलेबस होता है, रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं, तो मुझे तभी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SS भी होता है, तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: राइट देन, यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की ज़रूरत है, वो आप हैं। इज़ ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और नहीं, ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और हमारा जो
0: जी।
1: निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें। एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर ज़िला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का। एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफकोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमे इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था
0: जी।
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं।
0: okay.
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
0: okay.
1: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है।
0: okay.
1: और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
0: यू। तो आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर, और यू अंडरस्टैंड नहीं यार?
1: देखिए, ये जो है डिबेट हमेशा
0: रहती है।
1: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन लेकिन वी आर ओनली सेम जनरेशन। बट आई थिंक दिस इज एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं।
0: ओके, आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ।
1: हाँ, ये कजरारे गाना है। जब हम आईएमए में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात। तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं, और कुछ ताज़ी उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिएगा। संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूँगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे, एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी NDA ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब ज़रूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूँगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूँगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन देखिए, सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो

0: सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारी सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना, कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्रसा नम्रसा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द एक्सटीरियर हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाकये की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी, ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट, देन राजकुमार पाल UP जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम, मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूं लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर।
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेज में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
1: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं और पब्लिसाइज भी होती है कई चीज़ें।
0: ओके,
1: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं।
0: ओके,
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ नैरेटिव, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है। Am I right to mention like that?
1: Yes, because armies all over the world, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सेना, but wars कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी study करना बहुत ज़रूरी है, so that we can refine our tactics, we can refine the way we use our weapons. तो this is an ongoing process, और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलेन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहाँ से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
1: हाँ ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर।
0: ओके,
1: एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर। तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है किसी के पास नहीं है।
1: देखिए एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें, तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
0: इज़ इट ईजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज़ किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर?
1: पूछिए, आप टफ ही सवाल पूछ रहे हैं।
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज आल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है। सो यू यूज ऑल मींस एट योर डिस्पोजल।
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है आपको, कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए हर इंसान रोमांटिक होता है।
0: आप भी
1: थे नहीं हैं लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट।
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है बाहों में चलेगा, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर।
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना।
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना, और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो आपकी

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का। व्हाट अबाउट दिस, आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज यू नो एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी,
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे।
0: ओके,
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था बहुत अच्छा लगता था। पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज़ किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफ़र कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योर सेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू एंड कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने एब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में, इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
0: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर,
1: इट वाज एक्सट्रीमली गुड, एंड the way people were reacting, I think it just motivates us even more. And बहुत मजा आया।
0: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar जी, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोता, इस समय शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं हमारे युवा साथी का कार्यक्रम युवाणी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
5: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
4: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
5: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
4: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
5: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रेयांश सिंह और ये है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, और अगले आधे घंटे तक हम लोग साथ रहेंगे कुछ खूबसूरत विचारों, बेहतरीन गीतों और एक ऐसे विषय के साथ जो आज भी पूरी दुनिया के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कई दशकों पहले था। आज 6 अगस्त है। इतिहास में यह दिन हमें हिरोशिमा की याद दिलाता है, लेकिन आज हम युद्ध की भयावहता के आंकड़ों पर नहीं बल्कि उस उम्मीद पर बात करेंगे जो इंसानियत को आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं ना, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी शांति केवल लड़ाई का न होना नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की क्षमता भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से।

ये था गीत ये तारा वो तारा, स्वदेश मूवी से। बहुत ही राष्ट्रीयता और समाज सुधार और बहुत अच्छे मूल्यों पर बनी ये मूवी। और अब आपका पुनः स्वागत है युववाणी में। कभी आपने सोचा है दुनिया के किसी दूसरे कोने में होने वाली किसी घटना से हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है, वो हमें कैसे प्रभावित करती है? शायद इसलिए कि आज हम केवल किसी शहर या किसी देश के नागरिक नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण, सब ने हमें जोड़ दिया है। इसलिए आज एक शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है, वह है ग्लोबल सिटीज़न। द वर्ल्ड इज़ मोर कनेक्टेड देन एवर बिफोर। लेकिन इस जुड़ाव के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब हम किसी अलग संस्कृति, भाषा या विचार का सम्मान करते हैं, तब हम केवल अच्छे नागरिक नहीं बनते, बल्कि अच्छे इंसान भी बनते हैं। हिरोशिमा हमें ये याद दिलाता है कि नफ़रत का अंत विनाश में होता है, जबकि संवाद हमेशा एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
6: दोस्तों, आज की पीढ़ी को अक्सर डिजिटल जनरेशन कहा जाता है, लेकिन शायद इससे भी बेहतर एक नाम हो सकता है इस पीढ़ी के लिए, द जनरेशन दैट कैन चूज पीस। क्यों? क्योंकि आज शब्द भी बहुत तेज़ी से यात्रा करते हैं, एक टिप्पणी, एक पोस्ट, एक संदेश किसी को प्रेरित भी कर सकता है और आहत भी। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को संवेदनशीलता से रखें। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद का अर्थ मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार, मित्रों, कॉलेज और समाज में संवाद की संस्कृति विकसित करें तो शायद दुनिया भी थोड़ी बेहतर बन सकती है।

तो साथियों, आज के कार्यक्रम को अगर हम थोड़ा देखें, रिव्यू करें, तो आज हमने हिरोशिमा को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद नहीं किया, बल्कि हमने उसे एक सीख के रूप में याद रखा। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि शक्ति से अधिक मूल्यवान संवेदना है, ज्ञान से अधिक आवश्यक है विवेक, और प्रगति तभी सार्थक है जब उसके साथ मानवता भी आगे बढ़े। तो एक विचार इसी बात पे, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, और ये वो सेगमेंट है जब हम बात करेंगे कि जो जितने भी ग्लोबल ये चीज़ें हैं उसको हम एक बड़ी ऐतिहासिक घटना के रूप में ना याद रखें, हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और हम खुद एक बेहतर नागरिक कैसे बन सकते हैं युवा होने के नाते या अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे होने के नाते। तो कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी की मदद कर देना या किसी अलग सोच वाले व्यक्ति का सम्मान करना, क्योंकि एजुकेशन एंड ऑफ द डे यही तो करती है।

उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम जितने भी लोगों का माइंडसेट है, वो जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, हम उसे एक्सेप्ट करें और हम उनकी सोच का सम्मान करें और हमारी सोच. तो जब मल्टीपल लोग किसी चीज़ में साथ आते हैं, तब एक नया आयाम हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम खोज पाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर और एफिशिएंट तरीके से बढ़ पाते हैं. ये छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत हैं.

0: मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ चले हैं अपने इस कार्यक्रम के आखिरी फेज में। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, लेकिन सच तो यह है कि बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। किसी की बात बीच में ना काटना, मतभेद होने पर सम्मान बनाए रखना और अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ये छोटे कदम हैं, लेकिन यही एक शांत और बेहतर समाज की नींव रखते हैं। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। दया और सम्मान का कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसी विचार के साथ मैं श्रेयांश सिंह आपसे लूंगा इजाजत। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। धन्यवाद। और हम आपको छोड़े चलते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना एक था टाइगर फिल्म से, स्वर तरन्नुम मलिक का। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
3: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
0: और दोस्तों, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के इस आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जीनियस फिल्म से, स्वर अरिजीत सिंह का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना बजरंगी भाईजान फिल्म से, स्वर अतिफ असलम का था, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर कश्मीर का ये आमेर चैनल।
1: 60s की मेलोडीज हो या 70s का मैजिक,
2: तेरे बिना जिया जाए ना।
3: 80s में था डिस्को, 90s का मूड रोमांटिक,
4: दिल है के मानता नहीं।
1: 2000s में था बदलाव पे जोर,
3: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: यू से इट, वी प्ले इट।
3: दिस इज 101.2 FM, जयपुर का अपना FM।
1: सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।

श्रोताओं, ये फिल्म संगीत का आखिरी नगमा आपने सुना जयंती भाई की लव स्टोरी फिल्म से, स्वर श्रेया घोषाल और सचिन का था। दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रूपरेखा में हमारे शेष कार्यक्रमों का प्रसारण समय और उनका संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और इस कार्यक्रम में आज आप बातचीत करेंगे सब्जियों में विकार, उनके लक्षण और प्रबंधन विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल।

शाम 7:30 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज का एक कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम होगा और हमारे विशेषज्ञ मेहमान होंगे डॉक्टर रामफूल घासोलिया।

कंट्री वाइड ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। रात 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपये कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया।

और दोस्तों सावन के इस मौसम में आपके लिए खूबसूरत सावन और बारिश के नगमे। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म से, स्वर साधना सरगम और कुमार सानू का है, गीत के बोल समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर के था, गीत के बोल वर्मा मलिक के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त सरिता के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, नमक हलाल फिल्म से, स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले का है, गीत के बोल अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का।

और दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं यलगार फिल्म का ये खूबसूरत नगमा उदित नारायण और सपना मुखर्जी के स्वर में।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

श्रोताओं, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना यलगार फिल्म से स्वर उदित नारायण और सपना मुखर्जी का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम व्यू 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। 23,731 करोड़ रुपए की गोबर धन योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिला। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक। वैश्विक व्यापार, एमएसएमई और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम विषयों पर मंथन। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर धन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोबर धन योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे करीब 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष से साल 2035-2036 तक ये योजना लागू की जाएगी। इससे देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को साफ ईंधन और जैविक खाद में बदलकर ग्रामीण आमदनी में बढ़ोतरी का लक्ष्य है। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में 135 किलोमीटर लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: श्री बिरला ने इसके बाद प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में छतों पर सोलर पैनल लगाने की रफ्तार पिछले 9 महीनों में 3 गुना बढ़ गई है। पिछले साल अक्टूबर में रोजाना 5,000 पैनल लग रहे थे जिनकी संख्या बढ़कर प्रतिदिन 16,000 से अधिक हो गई है। श्री जोशी आज नई दिल्ली CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है और 19 लाख परिवारों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश 2020 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। श्री शर्मा ने इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने लिखा कि इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने, सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण करने सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री शर्मा ने केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को कौशल, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने पर विचार विमर्श किया। साथ ही प्रदेश में खेल संस्कृति को नई रफ्तार देने और खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तार करने पर भी चर्चा की। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आज संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। बातचीत सकारात्मक रही। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर इन अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। तबादलों में दिव्यांगों, विधवा, एकल महिला और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति भी करेगी, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव से भी भेंट की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में वैश्विक व्यापार, एमएसएमई, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी, डिजिटल व्यापार और स्थानीय मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने पर भी मंथन किया जा रहा है। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उद्योग मंत्री श्री गोयल ने जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सितंबर महीने में नई दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर में होने वाली ये बैठक काफी अहम है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम कर रहा है।
3: आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार के समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रहा है। भारत आज विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं। 2047 तक एक विकसित भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा।
0: जयपुर में इसी महीने ब्रिक्स की वित्त से जुड़ी बैठकें होंगी। इसके अलावा पर्यटन कार्य समूह और ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक होगी। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों की आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने समीक्षा की। उन्होंने जयपुर से वीसी के जरिए बैठक कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और चुनाव कामकाज से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की। श्री सिंह ने अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने को कहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदाता सूचियों को अपडेट करने, मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं तय समय सीमा में पूरी करने को कहा। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने चुनावी प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कल अपनी प्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन देश की कताई और बुनाई की विरासत का उत्सव है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल को सम्मानित किया जाता है। सदियों से बुनाई कला और तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती आई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्थान में बड़ी संख्या में हथकरघा कामगार हैं जो बांधनी, कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, छपाई कला तथा पारंपरिक दरी और गलीचा बुनाई से जुड़े हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर सहित अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर पारंपरिक शिल्प से जुड़े ये काम किए जा रहे हैं। कोटा डोरिया और सांगानेरी प्रिंट की दुनिया भर में लोकप्रिय

0: है और इन्हें GI टैग भी मिल चुका है। बाड़मेर जिले के सेड़वा इलाके के छोटे से गांव अली सरो की बस्ती के बुनकर बरिंगा राम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें खास किस्म की पट्टू साड़ी की बेहतरीन बुनाई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: जयपुर में भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस मौके पर बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन भी होगा। 9 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जवाहर कला केंद्र में विभिन्न स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जहां हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद मिलेंगे। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आज पाली में रैली निकाली गई। IG सिविल राइट्स लवली कटियार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर IG ने छात्राओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में छात्राओं को तुरंत पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्राओं को सुरक्षा संकल्प भी दिलवाया गया।
2: अन्य महिलाओं
3: वह बालिकाओं को उनके अधिकारों व
2: सुरक्षा के प्रति
3: जागरूक करूंगी। जय हिंद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। 23,731 करोड़ रुपए की गोबर धन योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिला। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक। वैश्विक व्यापार, MSME और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अहम विषयों पर मंथन। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग भरतपुर मार्ग पर नगला चाहर मोड़ के पास करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाया जा रहा है। डीग कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने हाल ही में इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बाईपास बनने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों और यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। वहीं बीते दिनों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डीग के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना महज स्टेशनों का भौतिक कायाकल्प नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों नागरिकों को विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया युगांतरकारी कदम है। डीग रेलवे स्टेशन इस पूरे क्षेत्र की समृद्ध विरासत, पर्यटन उद्योग, व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा और अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। साथ ही डीग के ऐतिहासिक महलों, पर्यटन स्थलों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को अब रेलवे स्टेशन पर ही विश्व स्तरीय सुविधाओं का एहसास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जिले में 75,707 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र परिवार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू हो गया है, जो अगले वर्ष 16 जनवरी तक चलेगा। शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में अंतिम पीरियड पुस्तक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी कहानी और कविता का पठन पाठन करने के साथ उनके अर्थ को भी समझेंगे, जिससे भाषा कौशल और पढ़ने की आदत को बढ़ावा मिलेगा। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा

0: स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल पहुंचने से लेकर प्रसव और डिस्चार्ज तक गर्भवती महिलाओं का मार्गदर्शन करेंगी। जिला अस्पताल और अधिक प्रसव भार वाले अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। डीग जिले में आयोजित फॉलो अप ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों में किसानों की फार्मर आईडी का पंजीकरण, आवासीय पट्टों का वितरण तथा राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, चिकित्सा और पंचायती राज विभाग से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर दी जा रही हैं। इससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। डीग के सांझी कलाकार आयुष सोनी ने अपनी पारंपरिक कला से जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनकी उत्कृष्ट सांझी कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में स्थान मिला है। हाल ही में उन्हें यूनाइटेड किंगडम की संसद में भी आमंत्रित किया गया। सांझी कला ब्रज क्षेत्र की प्राचीन कागज काटने की पारंपरिक कला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विभिन्न चित्रों और आकृतियों का सृजन किया जाता है। श्रावण मास के शुरू होते ही कामवन स्थित प्राचीन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र नाभ ने की थी। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर स्थित मणिकर्णिका कुंड में भी श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। हरियालो राजस्थान अभियान में भी बारिश के साथ तेजी आई है। जिले को इस वर्ष लगभग 14,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। वन विभाग के साथ विभिन्न सरकारी विभाग पौधरोपण और उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं, ताकि जिले में हरित क्षेत्र का विस्तार हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी जिया। 23,731 करोड़ रुपया री गोबर धन योजना ने मंजूरी दी री जी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रो देश में 50,00,000 बत्ता परिवारों ने फायदो मिलियो। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों रा उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग शुरू हुई। वैश्विक कारोबार, MSME और आपूर्ति श्रृंखला समेत कई खास मुद्दा माथे विचार। और राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश में भेवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां रो जायजो लीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल 23,731 करोड़ रुपया खर्च वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन ने मंजूरी दे दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज हुई कैबिनेट री मीटिंग में दो खास फैसला ने मंजूरी दी री जी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में खबरनवीसा ने आम फैसला री जानकारी दीनी। वे बतायो कि गोबरधन योजना रे जरिए देश में नौकरी धंधा रा करीब 1,50,000 मौका बनेला। साल 2035-36 ताई चलाई जावन वाली ई योजनाओं खेतीबाड़ी मोटी तादाद में निकलवा वाला कचरा, ढांडा ढोरा रा गोबर, सांठा रा कचरा और दूजी चीजा ने साफ ईंधन और जैविक खाद माए बदल और गांवई हलका माए जनता री आमदनी बढ़ावन तय करियो जावेला। श्री वैष्णव बतायो कि योजना रो मकसद घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस रो उत्पादन करीब 10 गुणो बढ़ावणु, मोटा पैमाना माथा गैर सरकारी निवेश करावणु और देश में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनावणु है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।

0: माली मामलारी मंत्रिमंडलीय समिति असम में 135 किलोमीटर लंबा फोर लेन हाईवे बनावन री मंजूरी दीनी। संसदरा दोनों सदनारी कार्रवाई में आज अड़चन आई। नीट पेपर लीक मामला में विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य हंगामो कीनो। लोकसभा री मीटिंग शुरू हुए ताई हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमला रे कारण मरण वाला ने श्रद्धा भाव सागर याद करी चिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो कि आज आ दुखद हमला रा 81 साल पूरा फेंक्या।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: श्री बिरला इं पाछे प्रश्नकाल शुरू करण री कोशिश कीनी, पण विपक्ष रा सदस्य शोर शराबो करता थका गृहमंत्री अमित शाह रा बयान री मांग करता रह्या। विपक्ष रा हंगामा रा कारण सदन री कार्रवाई आखा दिन सारू टाळ दी री ची। राज्यसभा में ही एड़ाई हालात रह्या। देश में छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगावण री रफ्तार लारला 9 महीना में 3 गुणा बधगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी आज नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी में आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला साल अक्टूबर महीना में रोजिना 5000 पैनल लगाया जा रहा है, जहाँ की तादाद अब बधर रोजिना 16000 बत्ती फैकी है। मंत्री कहो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाओं 50 लाख बत्ता परिवारों ने फायदो फियो और 19 लाख परिवारों रा बिजली रा बिल शून्य हो गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सागे भेंट कर वे राज्य रा विकास से जुड़िया मुद्दा में चर्चा कीनी। श्री शर्मा केंद्रीय श्रम और रोजगार और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सा गई मुलाकात कीनी। वे प्रदेश रा नौजवानों ने कौशल रोजगार और नवाचार रा हल्का माए बत्ता मौका मुहैया करावण माथे विचार कीनो। राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों रा तबादला री मांग ने लेर आज संघर्ष समिति रा नुमाइंदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सागे मुलाकात कीनी। शिक्षा मंत्री इन दल ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर अध्यापकों रा तबादला रो भरोसो दिरायो। मंत्री बतायो कि दिव्यांग विधवा एकली महिला और घना मांदा शिक्षकों रा तबादला माथे खास ध्यान दियो जावेला। वे कहो कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों रा प्रमोशन री तैयारियां ही शुरू कर दी री जी है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों रा उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग शुरू हुई। भारत री सदारत में फे रही ई मीटिंग में वैश्विक कारोबार MSME डिजिटल सेवावां और आपूर्ति श्रृंखला समेत कई खास मुद्दा माथे विचार करियो जा रियो है। इसा गई नवी औद्योगिक क्रांतियों जुड़ी भागीदारी डिजिटल कारोबार और स्थानीय मुद्रा माय कारोबार ने बढ़ावो देवण पराई मंथन चाल रियो है। मीटिंग में शामिल फेवण सारू जयपुर पधारिया उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हवाई अड्डा माथे खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में सितंबर महीना में नई दिल्ली में फेवण वाला ब्रिक्स सम्मेलन पहली जयपुर में भे रही आ मीटिंग घनी खास है। श्री गोयल कहो कि दुनिया री माली व्यवस्था ने आगे बढ़ावण में भारत खास केंद्र रा तौर काम कर रियो है।
2: आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार के समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रहा है। भारत आज विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं। 2047 तक एक विकसित भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा।
0: जयपुर में इणी महीना ब्रिक्स री माली मामलाओं जुड़ी मीटिंग राखी जावेला। इस आगे पर्यटन कार्य समूह और ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग ही वेला। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह प्रदेश में आवता भगत फेवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां रो आज जायजो लीनो। वह जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सगला जिला निर्वाचन अहलकारा एसपी और चुनाव रा काम जुड़िया अहलकारा सागे मीटिंग कर स्वतंत्र निपक्ष साफ कोई सागे और बिना डर रा माहौल में चुनाव करावन सारू कहो। वह वोटर लिस्ट अपडेट करण मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टियां बनावण कर्मचारियों री सिखावण और दूजी व्यवस्थावां ते मियाद माय पूरी करण सारू कहो। ध्यान जोग है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग रा अध्यक्ष और पहली वाला जज मदन लाल भाटी काल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आयोग री रपट सौंपतीनी। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा में सुधार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रा कामकाज जुड़ी अर्जियां माथे आगली सुनवाई 19 अगस्त न करेला। सरकारी कारिंदा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ने बतायो कि नीट यूजी परीक्षा ही जेईई मेन्स और एडवांस री भांत दो दौर में कंप्यूटर आधारित बनावण माथे विचार करो चाहियो है। इस आ गई पेपरां री हिफाजत और छपाई जुड़िया कड़ा उपायां री जानकारी अदालत ने दीरी जी। 12वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस काल मनायो जावेला। वो दिन देश री कताई बुनाई री विरासत ने बतावे है। ई मौके बुनकरां रा पारंपरिक कौशल रो मान करियो जावे है। सैकड़ा बरसाओं बुनाई कला और तकनीक एक दूजी पीढ़ी माई जा रही है। राज्य में हथकरघा कामगारां री मोटी तादाद है जो बांधनी कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई कला और पारंपरिक दरी और नमदानी बुनाई जुड़िया है। कोटा जयपुर जोधपुर और बाड़मेर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा जूना शिल्प जुड़िया काम करिया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके वस्त्र मंत्रालय री ओर रख्या जावण वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण जयपुर में रख्या जावण वाला जलसा में करियो जावेला। बाड़मेर जिला में सेड़वा हलकारा गांव अलीसरों की बस्तीरा बुनकर बरिंगा राम ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार सारू चुनी चियो है। नई दिल्ली में फेवनवाड़ा कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खास किस्म री पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर वाने नवाजेला। देश रा हर रहवासी ने आज़ादी रो महत्व बतावण और स्वाधीनता दिवस ने गर्व मनावण सारू चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान रा तहत जनता माय घरां दुकाना और संस्थाना माथा तिरंगो झंडो फहरावण रे बारा माय जाग जगाई जा रही है। झुंझुनू माय जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग आज हर घर तिरंगा अभियान रा तहत कार्यक्रम री शुरुआत कीनी।
3: स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाने के लिए इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इसमें ये आह्वान है और प्रयास है कि हर व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के महत्व को महसूस करे, उसको सेलिब्रेट करे जैसे हम अन्य पर्व करते हैं। इसका आगाज करने के लिए आज शाम 11 फ्लैग है वो बांटे जाएंगे ताकि लोग उसको मोटिवेट हो और प्रयास रहेगा कि हर भारतीय हमारा हर झुंझुनू निवासी घर पे अपने संस्थान पे तिरंगा लगाए। जो हमारी नई पीढ़ी है उसकी राष्ट्रीयता की भावना है और हम स्वतंत्रता को महसूस कर सके और जिनके योगदान से हमको मिला है उनको नमन।
0: आखिर में खास समाचार एकर फेरू सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। 23,731 करोड़ रुपया री गोबर धन योजना ने मंजूरी दीरी जी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रो देश में 50 लाख बत्ता परिवारों ने फायदो मिलियो। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों रा उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग शुरू हुई। वैश्विक कारोबार एमएसएमई और आपूर्ति श्रृंखला समेत कई खास मुद्दा माथे विचार। और राज्य रा निर्वाचन आयुक्त प्रदेश में फेवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां रो जायजो लीनो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय शाम के 7 बजे आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसानवाणी सुनवा वाला सगला हेतालवा ने जखा दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुआ कार्यक्रम सुने है, आप सगला हेतालवा ने घणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा को राम राम और निमण प्रणाम, और सागे सागे राजू भाई थाने भी मोकलो मोकलो राम राम।
7: प्रभु भाई मोकलो मोकलो राम राम, और सगला श्रोताओं ने राजू चौधरी और घणो घणो राम राम सा किसानवाणी कार्यक्रम में।
6: राजू भाई काई हालचाल?
7: हालचाल चौका है सा।
6: देखो चौका हालचाल हुए आप आई उम्मीद करा, और देखो चोखो सोचनो, चोखो बोलनो और चोखा काम करना ये मान के जीवन रो उद्देश्य होना चाहिए।
7: बिल्कुल सा, और देखो आपा देखा चोखा रहस्या, चोखा आपा कोई काम कर सिया और चोखा आपा मिट्टी बाणी आपा बोल सिया, तो देखो सुनबाला ने भी और जिको बात करबाला बिन भी चोखा लाग सिया।
6: बिल्कुल चोखा लाग सिया, ई वास्ते राजू भाई आपने जो शब्दों को है अपनी वाणी रो अपन सोच समझ इस्तेमाल है वो करना चाहिए, और इसलिए जगह महापुरुष हुआ है, कवि हुआ है, या जगह धर्म की स्थापना करवाला, या जखा अपना बड़ा बुजुर्ग हुआ बे आ बात केर गया कि भाई हमेशा शब्दों को इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आप कहीं बोल रहे हैं, कौन सी जगह बोल रहे हैं, कत्तो बोलनो है कत्तो नहीं बोलनो है, बोल लो लेकिन बोल बसों पर लित तोल लो, ये बात को अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वास्ते क्यों जाए कि भाई कागा किसका धन हरेर, कोयल किसको देत, और एक रसनारे कारण है जुग अपना कर लेत, कि भाई कागलो कोई को धन हरे को नहीं और कोयल कोई ने देवे को नहीं, पर देखो मीठी वाणी री माध्यम से कोयल है जद बोले देना देखो मीठी लागे।
7: बिल्कुल सर, को बोले जाना देखो तो चुब्बाड़ी सी आवाज लगे अपन।
6: चुब्बाड़ी सी आवाज लगे, ई वास्ते देखो बातड़ी आई है कि भाई अपन भाषा अपा वाणी जद भी बोला तो सोच समझ रहा अपा अपनी वाणी रो इस्तेमाल अपन करना चाहिए।
7: और देखो कार्यक्रम आगे बढ़ावा और देखो दिवाओ जानकारी।
6: बिल्कुल जानकारी तो लो किसान भाई तक पूर्ति करा। किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुके हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी गढ़वाल, आप प्रोफेसर है उद्यान विज्ञान श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर सो कार्यक्रम में पधारे है, और आज अपन जानकारी देवाला सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ई विषय पर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थाको कार्यक्रम का मायने बहुत बहुत स्वागत है सा, राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
6: और जिया का आज आप बातचीत कर रहे हैं कि सब्जियां का मायने शारीरिक विकार और बांको प्रबंधन, तो सबसे पहले तो आपसे वही जानना चाहूंगा कि शारीरिक विकार से का ही तात्पर्य है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जगह मका किसान भाई बहन जानकारी दे।
1: देखो किसान भाइयों, अभी सबसे बड़ी बात है कि जो आपने सब्जी है, सब्जी कई प्रकार की सब्जी किसान भाई खेती आप लोग करो तो एक मायने कई प्रकार की समस्या हुए। अब समस्या कहीं हुए, एक तो कहीं बीमारी हुए, एक कीट की समस्या हो जाए, पर कीट और बीमारी के अलावा, क्योंकि कीट की वजह से भी खराब हुए सब्जी या फल, और वहीं कहीं बीमारी जो विषाणु से जीवाणु से या फफूंद से फैलें, रोग फैलें, तो आके अलावा न तो कीट की समस्या न उस बीमारी को

0: विकार है वो उत्पन्न हुए ही नहीं, आ सब्जियां कमाने लगे ही नहीं। तो जब सब्जी तैयार करे या पौध तैयार करे किसान भाई, तो कौन कौन सी बात है बांगो किसान भाई ने मोटा मोटी रूप को
1: हाँ
0: ध्यान रखना
1: देखो,
0: चाहिए।
1: पौध की बात तो अलग है कि जहाँ किसान भाई हमेशा जो जो फसल है कि वह सब्जी जी की पौध तैयार करनी पड़े, तो वह कोशिश आ रहा कि किसान भाई की पौध के तैयारी करवा, सबसे पहले तो बीज अच्छे मिल जाए, अच्छो बहुत ही अच्छो स्रोत से बीज मिले, और बी के बाद में पौधशाला के मैं आजकल तो कहीं प्रोट्रे के नाम सुन ट्रे आवा लागी प्लास्टिक की, और कोकोपीट जिया को मीडिया आवे बी के अंदर आप प्रोट्रे के मायने बीज डाल करके पौध तैयार कर लिया। पर पौध तैयार करें बाद के मायने समस्या यह आवे कि विकार अलग अलग प्रकार का हो जाए। तो अलग अलग फसलों में जिया मान लो मैं थाना उदाहरण का दूँ, या टमाटर है तो टमाटर की फसल के मायने कई प्रकार के विकार हुए, जो टमाटर है, मिर्च है, और एक अलावा तरबूज है, आ तीनिया का मायने एक बड़ी समस्या हुआ है बिन में बोलिया करा माँ की वैज्ञानिक भाषा में ब्लॉसम एंड रोट,
0: जी
1: मतलब जो फल लगा ना इको बी के नीचे वाला हिस्सा का मायने कहीं थोड़ा सा मुरझान सो आओ शुरू में, और बाद के मायने फिर ई के मायने और एक सिकुड़ने की पोजिशन में आ जाए और खराब हो जाए। तो ईगो सबसे बड़ा कारण का ही है कैल्शियम तत्व की कमी, क्योंकि
0: जी
1: जमीन का मायने कहीं पोषक तत्व का मायने अगर कैल्शियम कमी हो जाए तो आ समस्या आ जाए, और इस समस्या का आया बाद का मायने फिर पैदावार अपनी कम हो जाए। तो वो दो तीन फसलों का मायने चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, चाहे तरबूज हो, ई का
0: बिल्कुल
1: मायने बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल जी, यहाँ पर टमाटर की आप बता रहे हो तो किसान भाई ने किया ही बात को बेरो लगेगा भाई भी कमाने जो विकार आ चुके हैं। अगर विकार आएगी तो टमाटर की फसल भी की पैदावार सही तरीका से वो ले सके तो भी के लिए की प्रकार को कहीं जतन करना
1: देखो
0: पड़ेगा।
1: टमाटर का मायने क्योंकि फलदार पौधा हो चाहे सब्जी हो, अहीं का मायने आ तो आत को ना कि भाई एक बार लाग गार सारो काम खत्म हो जाए, एक मायने 5 बार 7 बार की पैदावार आती रहे। तो अगर शुरुआत के मायने अगर पतो लाग जाए तो हर जहाँ टमाटर के मायने किसान भाई देख सके कि कुछ टमाटर के जो नीचे वालों हिस्सा है बी का मायने हल्को से टिक्को बने भूरा
0: जी
1: भूरा रंग को, तो ते ये बात से पहचान कर लियो कि आपने टमाटर के मायने पोषक तत्व कैल्शियम की कमी होगी जी की वजह से आपने आग समस्या देख रही है। तो किसान भाई अगला लोट का मायने आज समस्या नहीं आवे तो कैल्शियम को छिड़काव भी करा सके। बाकी सबसे बढ़िया है कि आप खेत तैयार करो, तो खेत तैयार करते टाइम का मायने सबसे आसान जो कैल्शियम को स्रोत है वो है जिप्सम। तो जिप्सम की पूर्ति आप हर खेत का मायने जी का मायने आपने मिर्च करनी हुआ है, टमाटर करना हुआ है, तरबूज करना हुआ है भी खेत का मायने 500 किलो तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग करो ताकि
0: जी
1: कैल्शियम की पूर्ति हो जाए।
0: और टमाटर के पचास बात करें प्याज के संदर्भ में, क्योंकि प्याज भी बड़ा स्तर पर किसान भाई है की खेती करे है तो किसान भाई ने बढ़िया को लाभ ले सके, तो प्याज के संदर्भ में कई कई बातों को ध्यान रखना चाहिए या जगह कौन कौन सा विकार है प्याज की फसल में मुश्क है।
1: देखो प्याज के मायने भी लग जो विकार की आप बात कर रहे हैं, तो या टमाटर का मायने आप एक विकार की बात करी जी टिक्का वाला की भी, के अलावा टमाटर का मायने एक दो विकार और भी आवे जी, आप पफी नेस का नाम से बोलया करा मैं कि अंदर से कहीं थोड़ा खोखलो टाइप का हो जाए टमाटर, एको मतलब है कि भी के मायने पोषक तत्व कम हो जाए और वातावरण की दशा थोड़ी सी बिगड़ जाए जी वजह से हो जाए। एक कई बार कहीं गर्मी का मायने आप देखा कि या मतलब फलां का मायने जो ऊपर को तेज धूप आओ ना बी की वजह से भी जलवा लग जाए बिन
0: जी
1: सन स्केल्डिंग का नाम से बोला। तो कोशिश आ करो किसान भाई कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ तो बिना हल्को पानी आप रिपीटेडली बीच में और पिला सको। अब जहाँ थे पूछा कि प्याज के मायने कौन कौन सी समस्या विकार के रूप में आवे, तो देखो किसान भाइयों प्याज के मायने जो किसान लोग प्याज की खेती करें आप कुचामन के एरिया में, सीकर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर का ये पूरा जोन का मान काफ़ी एरिया में प्याज की खेती किसान भाई करें,
0: जी
1: तो इसके मायने एक तो समस्या बिन बोलिया करें बोल्टिंग, और बोल्टिंग का मतलब कहीं है कि बी के मायने पहली जहाँ कई लोग भाई नरड़ो बोलें किसान भाई आपकी भाषा में, कई तुर्रो बोलें कि बी के मायने क्योंकि प्याज का मायने जो गांठ बना ना नीचे
0: जी
1: बिन बोलिया करा मैं बल्ब, वो बल्ब की अगर अच्छी पैदावार हुए तो पैदावार किसान ने अच्छी मिले लाभ मिले, परंतु कई बार कहीं हुए कि वातावरण की दशा अचानक बदलाव आ जाए जी की वजह से वो गांठ तो बने कम और ऊपर बी के ऊपर तुर्रो निकल जाए, तो बिन बोलिया करा बोल्टिंग। तो
0: जी
1: बी को सबसे बड़ा कारण का ही है कि जी टाइम के मायने प्याज की कंद बनवा की जो अवस्था हुए अगर ज़्यादा पानी किसान पिला दे तो बी अवस्था का मायना समस्या बढ़ जाए। तो एक तो कोशिश आ करो कि पानी आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पिलाना और कम भी नहीं पिलाना, नियमित रूप से पानी पिलाओ किसान भाई। दूसरा कहीं है कई बार आपने देखा कि जो पौध है नर्सरी में पौध तैयार करे तो देखो जितनी भी सब्जी है बस सब्जियों में लगभग लगभग कहीं 1 महीनों 35 दिन के आसपास को टाइम हुआ है जी का मायने आपा खेत का मायने रोप लगा दिया नर्सरी
0: जी
1: जो पौधशाला की आपको टाइम तकरीबन महीना भर के आसपास हो रहे, परंतु प्याज एकमात्र की फसल है सब्जी जी का मायने पौध में तकरीबन 50 दिन को टाइम लागे, 50 दिन 55 दिन के आसपास, और ज़्यादा ज़्यादा मानो कि 2 महीना।

0: लग जाएं। पर कई बार किसान भाई कहीं करें कि अगर 2 महीना के बाद में 3 महीना हो जाए पौध में, 2.5 महीना हो जाए फिर आप खेत में लगावा तो भी यह समस्या आ जाए। तो एक मान देखो किसान भाई, ध्यान रखो कि जब भी आप पौध तैयार करो तो एक टाइम टेबल फिक्स करो कि आपने 2 महीना के अंदर अंदर तो पौध ने खेत में लगानी लगानी। अगर आप खेत में नहीं लगाया तो फिर आपने समस्या बढ़ सके। तो ईको कहीं फिर बाद में दवाई सुई छिड़काव करो या सुई को रोकथाम कौन वैसे के, तो आप प्याज के मान बड़ी समस्या आवा। तो इसके अलावा कहीं पत्ता गोभी के अंदर भी कई बार समस्या आ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा मैनेजमेंट ढंग से किसान भाई करें तो आ समस्या भी आप कम हो सके।
1: बिल्कुल किसान भाई, अगर बातों को ध्यान रखे तो वे जगह विकार आप बात कर रहे हैं, आंसू बच सके है। अब आप सब्जियां का मैंने बात करा, जहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, तो थोड़ा सो जानना चाहूंगा भाई, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वे हुए कौन कौन सी है, बांक मायने कई प्रकार की कोई विकार है या कोई समस्या है जिसकी उत्पन्न हो सके है।
0: हाँ देखो किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जी को मतलब कहें हुए कि जो सब्जी आपा जो देखा ना, काकड़ी है, खरबूजा, तरबूज, मतीरा वगैरह, तुरई है, लौकी है, ऐसी सारी सारी ऐसी सब्जियों को बड़ो ग्रुप है एक, इन बोलिया करें कद्दू वर्गीय सब्जियाँ। तो चूंकि किसान भाई अगर आप अपना प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में इनकी खेती काफ़ी एरिया में हो रही, इवन काचरी वगैरह की भी खेती काफ़ी लोग करवा लागा। कद्दू वर्गीय मतलब जो बेल वाली ज़्यादातर सब्जी है, बेलड़ी वाली बस सब्जियां ने कद्दूर के सब्जियां की श्रेणी माना जाए। अब आके मायने अगर विकार की आप बात करा तो देखो कि ई के मायने सबसे बड़ा विकार तो एक ये आवा सब्जियां का मायने कि ई के मायने फल फट जाए, और फल फटवा की समस्या दूसरी फसलों के मायने भी आवे, सब्जियों के मायने भी आवे। तो क्रेकिंग बोलिया करा मैं इन्हें, ई का फल के मांझे आते हैं। देखो कि कई बार खीरो है, खीरो फट जाए, या टिंडो है, टिंडो फट जाए, बी का मान क्रेक एक आ जाए। तो ऐ जो फटवाली समस्या है ना, ई का सबसे बड़ा कारण का ही हुआ है कि अगर गर्मी लंबी पड़े, क्योंकि इकी आपा ज़्यादातर बुआई कहाँ करा, होली के आसपास में किसान भाई की बुआई करें, और गर्मी का महीना का मायने है जून तक इकी मतलब फसल ने काट लें या हार्वेस्ट कर लें। तो ज़्यादातर फसलां ई मौसम में ही हुए अपना मौसम का हिसाब देखे जाए तो ऐ जायद की फसल बोलिया करा इन्हें। तो ई अवस्था में कहीं हुए कि ज़्यादातर गर्मी का मायने कई बार ज़्यादा गर्मी एक साथ होगी और लंबो पानी को नहीं पिलाया लंबा समय तक, और फिर एक साथ पानी पिला दे किसान भाई तभी फटवा की संभावना हो जाए। इसके अलावा कई है कई बार बारिश तेज हो जाए बीच में, कि महीनों 1.5 महीने गर्मी आई खूब सारी और अचानक तेज़ बरसात होगी, तो ज़्यादा बरसात होगी वजह से भी कहीं वातावरण का मायने अचानक बदलाव आ जाए, धुब्बी की वजह से भी फाट जाए फल। इसके अलावा तीसरा कारण और है कि पोषक तत्वों को कमी, विशेष रूप से बोरोन और कैल्शियम दो तत्व यहाँ का हमें, तो बोरोन की अगर कमी हो जाए तो भी कहीं है कि फल अपने फटवा की पोजिशन में आ जाए। तो किसान भाई एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि नियमित रूप से पानी पिलाता रहें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलावें और एक साथ ज़्यादा लंबो गैप नहीं दें, पहली बात। दूसरी बात कि बोरोन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ा है कद्दूवर के सब्जियां के मायने, दूसरी फसलों के मायने भी, इसलिए बोरोन की पूर्ति करवा के लिए किसान भाई बोरेक्स का नाम सुन बाजार के मायने मतलब एक उर्वरक मिले माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में, तो वो 405 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब सुन बिन घोल और भी कोई छिड़काव करवा सके हाँ जी टाइम में, क्योंकि एक लोट का माना अगर संभावना लाग गई ना भाई फटवाड़ी संभावना चालू होगी तो कम से कम आगलांग माना संभावना खत्म हो जाए।
1: तो अलग अलग जो सब्जियां की अब अगर बात करें तो जो छिड़काव की थी बात कर रहे हो, मात्रा की कहीं रेवली
0: चाहे कोई भी सब्जी हो लगभग, क्योंकि जो बोरोन की पूर्ति करवा की बात करा तो 400 लेकर के 5 ग्राम तक आराम से कोई सी फसल का माने आपा काम में ले सका।
1: और एक जो डॉक्टर साहब थे बता रहे हो कि फल फटवाड़ी जी की समस्या, तो जो आप बार चौमासा को टाइम चल रही है मान लीजिए काचरा है या काकड़ी है, वे आपने जो खेत के मायने पे खिर जाए तो कहीं बिक के मायने भी आए आप समस्या आएगी।
0: नहीं खिरबाड़ी बात अलग है, खिरबा को तो कारण कहीं हुए कि जब कई बार कहीं जो प्रकृति यह है कि अगर फल पूरा पक जाए तो इसके मायने सबसे पहले तो वह भी को पकवो, और पकया के बाद में फिर ज़्यादा पकवो, और ज़्यादा पकया बाद के मायने तो फिर कहीं वो फाट जाए, वो बी की तो अवस्था हो जाए, उम्र हो जाए। परंतु अगर वो पूरा पके नहीं 20 पहले अगर फाट वाले जाएगा मतलब है बी का मायने कमी है, विकार है, तो बी की पूर्ति वास्ते आप बोरोन और कैल्शियम को छिड़काव करा।
1: और डॉक्टर साहब अब आप बात करांगे गोभी वर्गीय जी की सब्जियां हैं, वहां के मायने का एक प्रकार का विकार आस्क है या किसान भाई ने कौन कौन सी बातें हैं वहां को अपन ध्यान रखना चाहिए।
0: देखो गोभी वर्गीय सब्जियां का मायने मुख्य रूप से पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली आजकल खूब सारा किसान भाई लगावा लागा, ब्रोसोल स्प्राउट्स भी आवा, पर बे लोग वह आपने कम लगाओ, 5 स्टार होटल वाला तो फिर भी काम में लें। पर मुख्य आपने कहें पत्ता गोभी और फूल गोभी की दो खेती करें किसान भाई। और आ देखो कि पत्ता गोभी में विकार फटवा को भी आवे, इसके अलावा बार बताया था ना बोल्टिंग भी आवे,
1: जी
0: परंतु जो फूल गोभी है, ये फूल गोभी का मायने सबसे बड़ी समस्या कहीं आवा कि एक तो बटनिंग का नाम से बोलिया करा मैं, बटनिंग का मतलब है कि छोटो सो रह जाए फूल। अगर फूल की लगभग औसत आपा 500 700 800 ग्राम तक को फूल माना, 1 किला को माना, तो मतलब बाजार में अच्छे भाव मिले।
1: जी
0: पर अगर मान ले वो फूल छोटो रह जाए, कड़ बोलिया करा मेरे वैज्ञानिक भाषा में, अगर कड़ की साइज ही बहुत छोटी हो जाए, वो 100 150 ग्राम को दीपक की जिया हो जाए, दिया की जिया, तो फिर वो आपने किसान भाई के लिए नुकसानदायक है। तो एक बड़ी समस्या था वो बटनिंग की, कि फूल छोटो रह जाए। अब आप देखो कि अबार में पहले चर्चा करी, किसान भाइयों आप जानो ही बात ने कि जितनी भी गोभी की वाली जो फसल हैं, जी मान लो आप उदाहरण के रूप में फूल गोभी की बात करा, तो फूल गोभी का मायने 2835 दिन को टाइम चाहे पौध रोपण को।
1: जी
0: अगर पौधशाला में तैयार कर लिया नर्सरी में पौधा ने, बीके बाद में आपा लगभग 1 महीना में या 30 32 दिन का मान बिन खेत का मान रोप लगा दिया, ये ज़्यादा लेट नहीं होनो। पर कई बार कहीं किसान भाई की जमीन खाली कौन हुई या कोई और कारण हो जाए, तो वो बिना 30 दिन से ले जा करके और 40 45 50 दिन तक पहुँचा दे, तो
1: जी
0: बैंक की स्थिति का मायने भी फिर छोटो रह जाए कर्ड। और दूसरों का ये किसान भाई एक थोड़ी सी कमजोरी रखें कि जब पौधशाला तैयार करें, नर्सरी तैयार करा आपा, तो नर्सरी तैयार करते टाइम में कहीं आसपास में कोई भी क्यारी के मान आप बीज के डाल करके नर्सरी तैयार करा, जबकि भी क्यारी की भी खेत की पहले तैयारी होनी चाहिए, बीज के मान नत्रजन की पूर्ति होनी चाहिए पूरी, कि
1: जी
0: नाइट्रोजन की कमी की वजह से यह फट जाए। इसके अलावा देखो फूल गोभी का मान किसान भाइयों एक दूसरों विकार और आवे, और बी विकार को नाम है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग को मतलब है कि अगर जो आपा देखा ना फूल पत्ता फूल गोभी को फूल नगर आवा देखा कर्ण ने, तो बी के बीच बीच के मायने कहीं हल्का हल्का भूरा भूरा रंग का दाग सा बन जाए, धब्बा सा।
1: जी
0: अगर एक आधा कोई पौधा के को ऊपर थाने या नजर आ गया दाग बनवा लाग गा, इको मतलब है कि आपने ई में समस्या चालू होगी। बिन काट के अगर देखा, अगर किसान भाई भी फूल नगर सीधो काटो ऊपर से नीचे, तो काटना देखा तो अंदर की तरफ कहीं है कि वो पूरा पूरा खोखलो खोखलो नजर आवे, तो इको दूसरो नाम कहीं है होलो हर्ट का नाम से बोलिया करा इन्हें,
1: जी
0: मतलब खोखलो हो जाए अंदर से और भूरा भूरा धब्बा बन जाए। तो अतः से लक्षण देखता है किसान भाई, इसके मायने भी जो बार पहले चर्चा करी कि बोरेक्स वो 4 ग्राम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से इसको छिड़काव करता रहे, तो बाकी फूल गोभी अभी का माना समस्या कौन आवे। तो ये दोनों जो सबसे बड़ा विकार है, ऐ कहीं है कि आपने पैदावार ने कम करें, तो किसान भाई इस चीज़ को मैनेजमेंट ढंग से करें तो अपने आप पैदावार अच्छी बढ़ जाए।
1: और सब्जियां का मैंने अगर आप बात करें तो आलू ना पके भूल सका। हाँ, आलू की फसल भी किसान भाई खूब लेवे है। आलू के साथ साथ जहाँ शक्करकंद है वह भी किसान भाई चौमासा का टाइम का मैंने लेवे। तो अंक के संदर्भ में अगर आप बात करें तो आम कौन कौन सा का विकार
0: हाँ
1: है जो
0: देखो,
1: आज के है।
0: हाँ किसान भाइयों थे भी जानो ये बात नहीं कि आलू तो अपना देश में ही नहीं पूरी दुनिया के मान सबसे ज़्यादा लोग इन्हें काम में लें, खावा के रूप में, सब्जी का रूप में, और कई सारे का प्रोडक्ट भी बने। अब एक मायने भी कहें क्योंकि ए बाकी फसलां तो फिर भी ज़्यादा लंबा कौन खींचे, परंतु आलू है, प्याज है, लहसुन है, तो फिर भी लंबी थोड़ी चाल जाए। तो आलू का मायने भी कहीं ये कि विकार कई प्रकार का आवे। एक मायने भी एक तो आप ब्लैक हार्ट का नाम सुन कि कई बार कहीं आप देखा कि अगर ए की जगह में एकांत जगह में रख दिया इन्हें इकट्ठो करके,
1: जी
0: और जड़े ऑक्सीजन कौन मिले, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मतलब वो आलू आपनों ख़राब होवा लग जाए, और वो आलू ख़राब जोड़ो फिर बाजार के मायने भी की वैल्यू कौन मिले। तो हमेशा कोशिश आ रखो किसान भाइयों कि जब भी आलू की आपा खुदाई कर लिया, तो बिना इस जगह मतलब वातावरण को दियो कि भी कमान थोड़ा ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे, थोड़ा हवा मिलती रहे, नहीं
1: जी
0: तो वो काड़ो पड़ जाए और ख़राब हो जाए। दूसरे विकार और आओ आलू का मायने, जी के मायने आपा कई बार देखा ग्रीनिंग का नाम सुन, ग्रीनिंग को मतलब कहीं हुआ कि जहाँ जमीन के नीचे आ गया
1: जी
0: फसल, और अगर मान लो एको आलू को जो ट्यूबर बन रहे हो, तो भी ट्यूबर के ऊपर से माटी हट जाए, तो माटी हटता है कहीं सूरज की सीधी किरण भी को ऊपर आवे, और सीधी किरण धूप की वजह से कहीं हुआ कि वो हरे हरे हो जाए, तो हरे हो वसु कहीं हुआ कि भी मान क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाए,
1: जी
0: और बाय एक कहीं है कि आपने लिए नुकसानदायक औजार भी की बाजार की वैल्यू कम हो जाए। तो किसान भाई ध्यान रखो कि जब अगर यहीं की संभावना लागे, तो इकी जो फसल आपा खेती करा जी टाइम में महीना 1.5 महीना के दौरान देखता रहो कि मिट्टी अगर हट जाए तो मिट्टी आपा चढ़ाओ एक ऊपर,
1: जी
0: ताकि यहाँ हरियापन की संभावना भी नहीं आवे।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ आलू आपा कट्टा के मायने या बोरी के मायने गाल ली और बीके बाद के मायने वो पड़ियो पड़ियो कई बार उग जावे है तो वो भी कोई
0: हाँ
1: विकार
0: आ
1: है।
0: देखो वो विकार है स्प्राउटिंग बोलिया करा इन्हें, और यो आलू में ही नहीं, वो प्याज के मायने बहुत सारो है। तो आलू है, प्याज है, यहाँ की सब्जियां के मायने का ये है कि अब अगर लंबा समय तक भी ना आपा वातावरण सही ढंग से नहीं मिला, तो स्प्राउटिंग की संभावना बढ़ जाए। अब आप देखो कि स्प्राउटिंग की वजह से कहीं हुए कि बाजार को भाव कौन मिले
1: जी
0: और भी की उम्र कम हो जाए। अब जी हाँ उदाहरण के लिए चाहे भले आलू की बात करा चाहे प्याज की बात करा, तो स्प्राउटिंग की वजह से ही आपने जहाँ उगवा लग जाए भी का मान ठूंठ निकलवा लग जाए, तो फिर वो कहीं है कि बी की वैल्यू कम हो जाए। तो किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इको जब भी अगर लागे ना यहाँ, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मान नमी कम करें, कि अगर बहुत ज़्यादा नमी है और नमी वाली पोजिशन के मायने अगर आप अभी स्टोर कर दें जो भी आपने भंडारण की स्थिति में लिया हुआ,
1: जी
0: तो स्प्राउटिंग की संभावना बढ़ जाए। अब प्याज के लिए तो मैं हमेशा एक रिकमेंडेशन करा किसान भाई ने कि प्याज की खुदाई करें सो 2-3 दिन के अंतराल तक, 2-3-4-5 दिन तक आराम से बिन धूप के मायने थोड़ा सा खुला छोड़ो, और खुला छोड़े बाद के मायने फिर बिन कहीं कई लोग कहीं कर इकट्ठो कर दें और बंद जगह का मान स्टोर कर दें। तो किसान भाई यहाँ को बंद की बजाय यहाँ का वातावरण का मान रख जी के मान हवा को मतलब एरिएशन होता रहे, वेंटिलेशन, तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाए तो स्प्राउटिंग की समस्या भी कम आवे। और हालांकि कुछ दवाई भी आवे के लिए बिन कहीं है कि अब जी टाइम में प्याज की खुदाई करा भी 5-7 दिन पहले स्प्रे करा
1: जी
0: तो भी वह कारगर सिद्ध हो जाए। पर सबसे बड़ो है कि बिग माए ने आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखा और नमी 4-5 दिन की धूप जरूर दिखाओ बिन बी के
1: जी
0: बाद में स्टोर करा।
1: और डॉक्टर साहब, सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ई विषय पर आप बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हो, पर अब चालता चालता जगह मगा किसान भाई है, कोई बात छूट गई है बने संदेश के तौर पर कहना चाहो।
0: हाँ देखो किसान भाइयों की ये जो मतलब विकार वाली जो टॉपिक है, देखो इसके ऊपर थाने मोटी मोटी चीज़ें जानकारी के रूप में दी, पर सबसे बड़ी बात यही है कि खेती धनी सेती, ये कहावत है आपने कि अगर धनी मतलब जो किसान है अगर वो जागरूक है और बिन अगर चीज़ों की मतलब जानकारी अच्छी हो तो वो अपने आप ही सब चीज़ों का प्रबंधन कर ले अच्छे हो। तो अच्छे
1: जी
0: प्रबंधन करवा के लिए किसान भाइयों को जागरूक हो जरूरी है, और जागरूक होवा के लिए सभी किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आसपास का आपका क्षेत्र में काम कर रहा बांगा वैज्ञानिक से संपर्क करें, कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि का सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी जो भी लोग एग्रीकल्चर का जुड़ा लोग हैं वह लोगों से हमेशा संपर्क रखो। कोई मीटिंग है, कोई किसान मेलो है, बांगा मान जाकर के आपकी समस्या को समाधान भी पाओ और
1: जी
0: जुड़ा रहो, लिटरेचर साहित्य पढ़ता रहो।
1: डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, प्रोफेसर उद्यान विज्ञान, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप कार्यक्रम के मायने पधार्या और सब्जियां में शारीरिक विकार और प्रबंधन ई विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको गणे मानसू, धन्यवाद सर।
2: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: बहुत ही चौकी जानकारी दवाया प्रभु भाई, सब्जियों में शारीरिक विकार बांका लक्षण और प्रबंधन का बारे में। तो देखो जानकारी तो चौकी दवा दिया, तो इसके लिए देखो धन्यवाद के लिए एक चौको सुतान लोकगीत भी सुना दिया,
0: बिल्कुल सुनाओ
5: तो
0: सर।
5: मिलर सुना।

0: हाँ तो रजू भाई बहुत ही मीठी सी लोक रचना अपन सुनी,
1: बिल्कुल सर।
0: पर अब कहीं जानकारी है।
1: अब जानकारी है साहब मौसम की, तो देखो अबड़ा 5-4 दिन का मायन बादल वाई मौसम रेसी, राज को अधिकतम तापमान रियो 31 डिग्री, न्यूनतम रियो 26 डिग्री, और हल्की बरसात भी हुई कटे कटे, बादल सारे दिन बने रहा। तो अब आगे भी मौसम बरसात की संभावना है, बादल बने रहे।
0: बिल्कुल मौसम की जानकारी के साथ देखो आज के किसान वाणी को टेम है जो अठाई पूरा होने लाग रही है, घड़ी सरोकरण लाग रही है कि आज का किसान वाणी ने अठाई आप विराम देवा। तो भाई लोग आज का कार्यक्रम सुन थे थका भाई प्रभु दयाल वर्मा,
1: और राजू चौधरी ने दो आज्ञा,
0: चल और करा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है, FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनवा वाला सगला हेताड़ ने जखा दूर दराज गांव ढाणी रमाई ने बैठे हुआ तित बंद्या वो कार्यक्रम सुने है। आप सगला ने घणे मानसू था का भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ सु राम राम एर न्यून प्रणाम। और सागे सागे राजू भाई थाने भी मोकड़ो मोकड़ो राम राम।
1: राम राम प्रभु भाई और सगरा जो खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन रहा है गांव ढाणी में बैठ ग्राम वासियों ने राजू चौधरी रो गणो गणो राम राम सा।
0: और राजू भाई आज को जो अपनो कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम लेर आज आप हाजिर हाँ। और फोन इन कार्यक्रम के मायने हमेशा की तरह आप छोटी मोटी जी की बातड़ी है वह पहली आप भाई लोगों तक पूगती करा हाँ। और बातड़ी यह है कि भाई देखो जद भी थे माँ के कहने फोन लगाओ तो फोन लगावा से पहली था को कोई सवाल है तो भी ने अच्छी तरह से लिख लियो और लिख कर भी के बाद के मायने पेन कॉपी था कन्ने होनी चाहिए जे भी सुकाई मतलब के थे कोई भी बात पूछना चाहो तो भी को समाधान अगर डॉक्टर साहब विशेषज्ञ स्टूडियो के मायने जगह आपने था समस्याओं को समाधान करे पूगतो करे तो बन थे ढंग सु सुन और भी के फजे भी बात न थे लिखो तो भी बात के मायने थे ढंग सु भी को उत्तर मिल सके था कि समस्या को भी समाधान हो उसके।
1: तो देखो समाधान करवा वास्ता अपने स्टूडियो में पधारा है डॉक्टर रामपुल जी गासोलिया प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पौध व्याधि विभाग श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर सू। और देखो अपना जो फोन इन का जो नंबर है लाइव जुड़वा के लिए तो 0141 पिन कोड है और जो नंबर है 2200660 2200700 2200800
0: 2366477। और जयपुर से 12 हूँ अगर आप फोन कर रहे हो माने तो जयपुर को एसटीडी कोड 0141 लगा वो न भूले। और पहली जानकारी थे लेना चाहो तो रेडियो की सेट की था कि आवाज़ थोड़ी सी कम कर रख जो और टावरा ने फोन नहीं देवो किसान भाई है जगह खुद सवाल पूछे। और अब आप देखा कार्यक्रम के मायने कौन भाई लोग जुड़ रहे हैं आप चालना देखा फोन कॉल की तरफ। हेलो
2: मुझे पूछना है पौधे का
0: पहले साहब नाम बताओ कौन सी जगह बोल रहे हो कहीं समस्या है खेती बाड़ी से संबंधित।
2: मेरा नाम शैलेंद्र है मैं जयपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ शैलेंद्र जी खेती बाड़ी से संबंधित कहीं
2: एक एक पौधा है जो उसको बोलते हैं पोई साग का पौधा है और उसको मुझे लगाए हुए करीब 10 दिन हो गया उसमें अभी भी कोई पत्ता जो निकल नहीं रहा उसका।
3: हाँ सर ऐसा है इसमें कि अभी अपने इसको ट्रांसप्लांट किया है ना अभी लगाया है तो इसकी जड़ें
2: हाँ।
3: निकलेगी ये डेवलप होगी तब उसमें फिर पत्तियाँ निकलेगी अभी तो अपने को सेटल हो रहा है जड़ें निकालेगा सबसे पहले तो और फिर वो लग जाएगा इसमें ज़्यादा इसमें चिंता की कोई बात नहीं।
0: बिल्कुल था कि समस्या को समाधान हुई हो फोन करवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है साहब कहाँ से बोल रहे।
4: राम राम साहब।
1: राम राम साहब
4: बाड़ू डिस्ट्रिक्ट गुड़ामालन क्षेत्र से नगर से दुर्गा राम दर्जी।
1: दुर्गा राम जी पूछो कहीं सवाल लता हूँ
4: डॉक्टर साहब को भी डॉक्टर साहब को मेरा राम राम।
3: हाँ नमस्कार जी नमस्कार
4: ये नमस्कार सर क्या बाजरा पे अभी मैंने पहली बार पूछा था वो किया तो बाजरा कट कट के जा रहा है पीला पीला पीला पड़ के कट कट के जा रहा है क्या करें।
3: हाँ हाँ हाँ अभी कितने दिन का हो गया ये
4: बाजरा हो गया हमारा करीबन आज की तारीख 32 दिन के हुए।
3: हाँ हाँ तो सही कर रहे हो कट के जा रहा है इसमें देखो जो रूट बग आती है कीड़ा लगता है जो काट के खाता है इसमें तो इसके लिए तो साहब जो क्यूनोल फोस आता है 1.5% या 5% उसका अगर आप उसमें बुरकाव करेंगे तो उससे उसका समाधान होगा जो

0: मोल फोस आता है बाजार से ला करके, और आप उसकी बुरकाव करें तो उसमें जो पोटा में वो जाएगा और उसे नीचे जाएगा ना उसमें।
1: तो कैसे सर, बारिश कम है उसका तो असर नहीं होगा? बारिश कम है,
0: हाँ बारिश तो कम है ही बारिश का, लेकिन ये जिसमें अपन क्या वो जो रूट बग है ना जो जड़ों को काट के खा रही है वो, तो उसमें आप जो क्यूनोल्फोस डेट है उसका अगर आप उसमें बुरकाव कर दोगे, जैसे मान लो बारिश आ रही है तो उससे क्या वो जो खत्म हो जाएगी।
1: ठीक है सर,
2: बिल्कुल दुर्गाराम जी, फोन करने के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा देखा कौन भाई लोग जुड़ रहे हैं, और राजू भाई जब तक
3: हाँ तो डॉक्टर साहब, बाजरा का मैंने आप बात करा, अरगट की पहचान और उपचार की प्रकारों करा।
0: हाँ सर देखो, अभी अरगट का टाइम अब हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि उसमें जो सिट्टा आएगा और सिट्टा आने के बाद में ये अरगट आएगी उसमें, तो अभी जहाँ किसान भाई ने पहले बुआई कर ली थी वहाँ सिट्टे आने वाले हैं, और सिट्टे आने के साथ में अगर मौसम हमारा जैसे मान लो लगातार बारिश है, झिरमिर बारिश है और नमी बनी रहेगी, तो वहाँ अरगट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको किसान भाइयों को देखना है कि अरगट जब आएगी तो जो सिट्टा है वहाँ हल्का सा एक पिंक कलर का हल्का गोंद सा निकलेगा चिपचिपा पदार्थ में, तो वो उसकी पहचान है, उसको लग रहा है कि ये बीमारी आ रही है, तो उसको किसान भाइयों को उसमें 3-4 छिड़काव करने पड़ेंगे उसी टाइम से। तो इसके लिए जो जो अच्छी जो दवा है वो अपन जैसे बात करते हैं जो मेनकोजेब दवा है उसका अगर किसान भाई 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करे तो वो जो अरगट अगर उस बारी के तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन किसान भाई को ध्यान रखना होगा ये कम से कम 3 छिड़काव करने पड़ेंगे, और आपको 3-4 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी दौरान वो सिट्टा निकल रहा है उसी दौरान उसमें बीमारी आएगी।
2: बिल्कुल, एक भाई लोग जुड़ रहे हैं, बस मैं बात करना देखनी। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी कार्यक्रम खेती बाड़ी में स्वागत है। राम राम सर, रेडियो सेट की थोड़ी आवाज कम करो।
3: मोबाइल फोन को स्पीकर बंद करो सर।
4: हाँ सर,
2: पूछो सर, कौन सी जगह में बोल रहे हो, कहीं सवाल है खेती बाड़ी से?
4: जयपुर से बोल रहा हूँ सर। मेरे प्लाट में 4 पौधे पपीते के हैं।
2: नाम तो बताओ साहब आपको।
4: मैं अमर चौधरी बोल रहा हूँ सर, बेटा आ रहा
2: हूँ।
4: और 2 अमरूद के पेड़ हैं।
0: हाँ जी सर।
4: आपकी बार 2 अमरूद के बिल्कुल थोड़े थोड़े फल आए और बिल्कुल ही चढ़ गए, और पपीते के पत्ते वापस जो है ना मुरझा के और इकट्ठे हो गए।
0: हाँ सही कह रहे हो सर, पपीता में जो सबसे खतरनाक रोग है वो आपके वहाँ उसमें आ गया, जिसको बोलते हैं आप लीफ कर्ले यानी पत्ती का मुड़ना रोग होता है, उसमें जो पीली पड़ जाती है और मुड़ जाती है उनमें
4: जी।
0: तो ये एक बेसिकली विषाणु जनित रोग है, और इसका जो वाहक है वो सफ़ेद मक्खी एक कीट होता है वो फैलाता है इसको
4: जी।
0: तो ये जिसमें आ गया तो एक तरह से मानो कि कैंसर ही है, तो उसका उपचार बहुत रेयर है, वैसे है नहीं देखो ताकि वायरस चला गया। हाँ जिसमें नहीं आया जो पौधा स्वस्थ है उसमें अगर अपना जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक आता है जैसे इमिडाक्लोपीड है उसका आधा ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो वो जो फैल रहा है कीड़ा फैला रहा है वो मर जाएगा, तो उसका फैलेगा नहीं। दूसरा आपका सवाल था अमरूद वाला, तो अमरूद में आप तो इसमें खाद पानी का अगर जो खुराक करेंगे जो इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें 50 किलो 60 किलो तक में, और उसके साथ में इसमें जो NPK है वो भी आप वो भी उसमें कम से कम पावर के हिसाब से उसमें डालें डलों में हर 6 महीने, तो वो उसमें खुराक आएगी तो उसमें अमरूद आपके अच्छे आ जाएंगे।
2: बिल्कुल कार्यक्रम में
4: आपकी बार नहीं लगा, हर साल लग रहे थे सर आपकी बार छोटे हुए बाद में जरे झड़ गए।
0: हाँ
4: वो जब पपीता वाला बीमारी था इनमें भी आ गई है।
0: नहीं नहीं पपीता वाला इसमें नहीं है, बेसिकली जो खुराक वाला काम है इसमें, अगर जैसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो क्या उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा।
4: खा तो दिया जरे गाँव से मारोगे नजदीकी पड़े जोमदेर के गाँव से आवाज
0: लगता है, तो ऐसा करो जोमदेर पधारो आप फिर और बैठ के डिस्कस करेंगे।
4: वो प्रतापरा ही है गाँव।
0: बिल्कुल पधारो, वेलकम है सर आपको लेज में।
4: ठीक सर,
0: राम राम।
3: हाँ तो देखो आप कार्यक्रम में आगे बढ़ा, और देखो आप साहब पूछवा चाह रहे हैं कि आपने जो मूंगफली की फसल है देखे मैंने आप जो रोग है या कोई कीट है तो वहाँ को नियंत्रण की प्रकार।
0: हाँ बिल्कुल सर, आप सही पूछा, क्योंकि जो मूंगफली अभी चल रही है और अभी मूंगफली में फूल भी आ रहे हैं जो लेट हैं, बाकी में फूल भी आ चुके हैं, फल भी उसमें सेट हो रहे हैं जैसे पोट। इस टाइम जो मूंगफली में जो बीमारी आती है वो आती है एक तो टिक्का रोग, जो किसान भाई को अच्छी तरह जानते हैं कि पत्तों पर एक टीके जैसे धब्बे बनते हैं जो बीच में से तो डार्क कलर के होते हैं, चारों तरफ पीला गहरा होता है, ये एक टिक्का के पहचान होती है। तो ये क्या होता है कि अगर साइंस की भाषा में इसको देखें तो अगर पत्ती पे धब्बे आ गए तो उसमें प्रकाश

0: संश्लेषण कम होगा और खाना कम बनेगा, तो उसमें जो दाना का विकास भी कम होगा और उपज कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को जैसे लग रहा है कुछ बीमारी आई, तो उसमें जो फफूंदी नाशक दवा है उसका छिड़काव करें। फफूंदी नाशक में अगर जो अपने पुरानी बात करते हैं पहले वाली, तो जैसे अपने पास मेनकोजेब है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। आजकल मेनकोजेब के साथ कार्बेंडाजिम और मिक्स होकर आ रही है, तो कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब के नाम जो दवा आ रही है मिक्स होकर के कंबाइंड फॉर्मुलेशन, उसका भी 2-2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के किसान भाई उसके 2 छिड़काव करें, तो उससे उस टिका डिजीज को नियंत्रण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल राजू भाई, एक भाई लोग
2: हाँ
1: जुड़
2: जी,
1: रहे हैं।
2: हेलो, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है साहब। काय नाम साहब?
3: सर मैं गांव चैनपुरा तहसील झोरीमला जिला बालोतरा से जगदीश भारती गोस्वामी बोल रहा हूँ सर।
2: जी बोलो
0: हाँ
2: जगदीश जी, कहाँ जानकारी चाह रहे खेती बाड़ी से?
3: जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, हमारे खेत में जो बाजरी बहुत अच्छी फसल है, लेकिन
0: जी
3: इसमें निराई गुड़ाई वाला जो निंदाण कहते हैं ना हमारी मारवी भाषा में,
0: हाँ, निनाड़
3: वो बहुत ज्यादा है। ये जैसे कोई ऐसा अड़किया मोट है वगैरह है, ये जो हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, बहुत ज्यादा है। ऐसी कोई दवाई है जो वो नष्ट हो जाए? और बाकी ग्वार की बुआई कब कर सकते हैं, ये सर दोनों सवाल आप बताओ।
0: देखो, ग्वार की बुआई का टाइम तो जैसे अब तो वैसे जो बरसात वाली फसलें हैं उनका बुआई का टाइम लगभग लगभग जा चुका, क्योंकि अब आज 6 अगस्त हो गई है।
3: जी
0: तो बुआई का तो अभी देखो, अब तो आगे की तैयारी करें बुआई के, जैसे अभी जो आएगी हमसे जो अपने जैसे तारामीरा है अगर लगा, सरसों है, चने, इसकी करेंगे आगे तैयारी, उसकी तैयारी करनी
3: जी सर,
0: दू
3: अब अभी अभी 2-3 दिन के अंदर नहीं कर सकते ग्वार
0: आ नहीं वो
3: जैसे?
0: लेट हो जाएगा सर, फिर वो जो पकेगा तब वो पकेगा नहीं, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वहाँ, पकेगा नहीं ग्वार, आपको चारा ही मिलेगा आपको जो
3: जी,
0: दाने।
3: और निराई गुड़ाई की बात के
0: निराई
3: दवाई
0: गुड़ाई
3: जी
0: कैसे बाजरा में सर देखो, अच्छा है क्योंकि बाजरा का तो बुआई के टाइम अगर इसमें खरपतवार नाशक डालते तो उसका स्कार गरीला था, अब उसका नहीं, अब तो उसका निराई गुड़ाई या पर अगर मैनुअली करें, हाथ से करें, कस्सी से करें, वो सबसे बेटर है। तो उस पर जानवरों को क्या है, थोड़ा हवा भी मिलेगी और निराई गुड़ाई के तो उसकी जो ग्रोथ है वृद्धि भी अच्छी होगी और बढ़िया पैदावार होगी, तो सबसे बढ़िया तो सर यही है। क्योंकि बाकी तो जो अपना केमिकल रसायन डालते हैं वो बुआई के टाइम डालते तो वो कारगर होता है, उसमें
3: जी जी
0: अब कारगर नहीं है सब।
3: जी धन्यवाद सर।
1: भाई लोगों का कार्यक्रम चल रहा है खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी आज को फोन इन कार्यक्रम है, और आप भी अगर कार्यक्रम के मायने खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी, कोई समस्या है, समाधान पूछना चाहो, तो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रामफूल जी घासोलिया, आप प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष है पौध व्याधि विभाग श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर से आज कार्यक्रम में पधारेड़ा है। और अगर कार्यक्रम में आप जुड़ना चाहो तो 2200600, 2200700, 2200800, 2366477 ये मगर स्टूडियो का नंबर है, और जयपुर से 12 अगर थे फोन कर रहे हो तो 0141 एसटीडी कोड लगाओ न भूलो। राजू भाई आप एक थोड़ा सा विराम के लिए रुका और बिग पचे कार्यक्रम में आगे बढ़ना।
4: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कर्कम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
1: हाँ तो राजू भाई
2: हाँ जी, तो
1: विराम के
2: अपना
1: पीछे
2: किसान भाई जुड़ रहा है
1: बिल्कुल
2: हाँ, तो अपना बात कर रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में आगे। देखो अबार जी को मूंग की फसल है, बी के मायने पड़ी आ रही है, तो डॉक्टर साहब बताओ पड़ी के मायने जो लट लाग रही है बी को नियंत्रण किसान भाई
0: हाँ
2: केवल
0: बिल्कुल
2: कारगर?
0: राजू भाई, आपने सही पूछा कि इस टाइम मूंग में फलियाँ लगना चालू हो गई, और जैसे फलियाँ लगना चालू हो जाती है तो उसमें जो लट आती है हरी लट वो नुकसान करना चालू कर देती है। तो किसान भाई को देखना होगा कि मूंग में लट कहीं अगर आना चालू हो गई और उसको लटें दिख रही हैं दो चार, इसका मतलब है कि उसको उनको वो दवाई छिड़कनी है। तो इसके लिए कीटनाशक दवा सबसे बढ़िया जो दवा कारगर इसके लिए है वो इमामेक्टिन बेंजोएट करके एक दवा आती है जो लट के लिए कारगर है, इमामेक्टिन बेंजोएट, और उसकी जो मात्रा है किसान भाई वो आधा ग्राम 1 लीटर पानी में है, तो आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल कर आप छिड़काव करेंगे तो जो मूंग में नहीं दूसरी कोई फसल में अगर लट है तो वो उसमें लट खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल, एक भाई लोग जुड़ रहे हैं देखें। हेलो, हाँ जी कार्यक्रम खेती बाड़ी के मायने गुणों गुणों स्वागत है साहब।
3: बैरोड से बोल रहा हूँ साहब,
1: हाँ बैरोड से कौन साहब बोल रहे हो?
3: सुनील शर्मा।
1: हाँ सुनील जी, खेती बाड़ी से संबंधित कहाँ ही प्रश्न है आज आपको?
3: मेरे यहाँ पपीता के बीज बिखर रहे थे, तो उनको मैं नाड़ी खोदकर बोना चाहता हूँ, मतलब एक दिन बाद वो
0: हाँ सुनील जी आप कह रहे हो कि पपीता के

0: बीज आपको वहाँ बिखेर दिए, उग गए हुए हैं ना, तो आप उनको लगाना चाह रहे हो। तो देखो इनकी जो वो जो उम्र होती है, जैसे मान लो अगर अपना ये 1 फीट का हो गया पपीता है ना, तो उसकी ठीक है लगाने के लिए। तो जैसे मान लो अगर 1 फीट का भी नहीं रहा बैठ के, तो आधा फीट 1.25 फीट का भी हो गया, तो आप उसको वहाँ से शिफ्ट कर दो आप जहाँ लगाने जा रहे हो।
1: वो मतलब ये एक बिल फोरवा नहीं होता, एक बिलान
0: हाँ एक
1: सुनने हो।
0: बिलान, हाँ लगा सकते हो एक बिलान का मतलब, हाँ वहाँ से लगा सकते हो आधा फीट के आसपास हुआ है, एक बिंदाल पौन बिंदाल हाथ
1: सात
0: ले।
1: सात
0: हाँ तो अब इसमें जब आप लगाओ तो थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें वहाँ लगाओगे तो इसमें एक बीमारी आने की संभावना रहती है, जिसको जड़ गलन या जो फूट रोट बोलते हैं। तो उसके साथ में आप क्या करो, इसमें जो मैनकोजेब दवा है तो वो आप थोड़े थोड़े उसमें जो लगाओ ना, मैंने बताया कि आप एक एक जो चम्मच है ना वहाँ तो मिक्स कर देना उस मिट्टी में, और फिर आप इसको पौधे को लगाना वहाँ।
1: और ये
0: और
1: सर मेरे क्या है, नींबू का पेड़ है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं।
0: हाँ
1: क्या है,
0: नीम,
1: बच्चे हैं ना बच्चे, जो
0: हाँ
1: 5-10 दिन तक लगातार पेशाब कर दिया था, उसकी वजह से तो
0: हाँ हो सकता, बिल्कुल सही हो, असर आएगा, क्योंकि उसमें जो यूरिक एसिड वगैरह जो बढ़ जाते हैं तो उससे उसका कंसंट्रेशन होती है तो बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा ऐसा करो, उन्होंने ऐसा कर दिया तो आप उसमें 2-4 बाल्टी पानी भर डालो उसमें थोड़ा सा, तो वो डाइल्यूट हो जाए।
1: पानी तो खूब पड़ रहा है, बारिश हो रही है।
0: हाँ तो वो ठीक हो जाएगा थोड़ा बढ़िया।
2: बिल्कुल साहब, फोन करवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई लोग और जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: कार्यक्रम खेतीबाड़ी में स्वागत है साहब।
3: राम राम जी। नाम
1: राम राम जी, का नाम है साहब, कलम बात कर रहे हो।
3: छोड़ो, किसान बोल रहा हूँ मैं। ये कपास है हमारी, एक तो लाल धब्बे हो गए पत्तों पे, पत्तों
0: देखो
3: पे लाल लाल धब्बे हो गए कपास में, और कुछ वो मरोड़ी ऐसा है, पत्ते कटोरी की तरह गोल गोल से होने लग गए हैं।
0: हाँ बिल्कुल साहब, सही कह रहे हो आप किसान भाई, कि एक तो जो आप कह रहे हो कि इसमें जो लीफ कर्ल बीमारी बोलते हैं उसको, पर्ण कुंजन पत्तियाँ मुड़ जाती है, उसको मरोड़िया रोग ही बोलते हैं, हथाबंदी बोलते हैं, एक तो वो हो गया जो वायरस से होता है और सफ़ेद। दूसरा आप बता रहे हो कि इस पर जो धब्बे हैं लाल लाल धब्बे, वो 2-3 तरह के होते हैं। एक तो जीवाणु झुलसा रोग भी आता है उसकी वजह से होते हैं, दूसरा एक फंगस भी आती है। तो किसान
3: अच्छा
0: मैं आपको बताऊँ, जो धब्बे बता रहे हो आप उसमें जो अपना अगर मान लो ईमान के चलते हैं कि वो फंगस है या जीवाणु है, तो उसमें केस में आप ऐसा करो, जो अपने कोपरोक्सी क्लोराइड आता है ब्लाइटोक्स 50,
3: अच्छा
0: उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो 2 ग्राम आप कॉपर सल्फ जो सॉरी कोपरोक्सी क्लोराइड और आधा ग्राम आप जो ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों लेकर के 1 लीटर पानी के हिसाब से इसके 2 छिड़काव कर दो, तो आपके जो उसमें फंगस और जीवाणु दोनों ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बीमारी आती है इसमें एक साथ।
3: अच्छा
0: दूसरा आप जो कह रहे थे कि उसमें जो कपास में माथाबंदी है, पत्तियाँ मुड़ रही है, वो विषाणु जनित रोग है, वो सफ़ेद मक्खी से फैल रहा है, उसके लिए
3: अच्छा
0: आपको आपको रहे सफ़ेद मक्खी को मारना पड़ेगा जो उसका वाहक है उसको फैला रही है। तो उसके लिए अपने पहले चर्चा करते हैं, जो इमिडाक्लोप्रिड है उसकी आधा ML 1 लीटर पानी में लेकर के गोल करके आप उसके छिड़काव करोगे, तो वो जो सफ़ेद मक्खी ख़त्म हो जाएगी, तो उसका जो फैलाव है वायरस का वो कम हो जाएगा, तो उस पर बीमारी आगे नहीं फैलेगी, ये करें आप उसको।
3: आज काफी बारिश हुई थी, तो क्या बारिश से उसमें असर नहीं पड़ेगा क्या?
0: नहीं बारिश का असर तो किस पर पड़े, नहीं वायरस बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, वायरस बीमारी तो आपके जो जो धब्बे जो लाल वाले तो वो बढ़ेंगे उसमें, बाकी
3: अच्छा
0: वायरस
3: अच्छा
0: वाले पे जो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उस पर फ़र्क
3: अच्छा
0: पड़ेगा, वो बढ़ेगी आपके, तो अगर भी आप दवाई नहीं छिड़कोगे तो वो बढ़ जाएगी।
3: ठीक है।
2: बिल्कुल, खेती बाड़ी कार्यक्रम में जुड़वा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी कार्यक्रम खेती
3: हाँ
2: बाड़ी
3: सर
2: में।
3: जी नमस्कार, मैं जयपुर से गिरीश बोल रहा हूँ। खेती
2: हाँ गिरीश जी, खेती बाड़ी से संबंधित आज का ही
3: बाड़ी
2: प्रसंग।
3: में ऐसा हुआ सर कि एक आंवले का पेड़ है, हर साल उसमें खूब आंवले लगते हैं, इस टाइम शुरू हो जाते हैं, अब के दिखाई नहीं दिया लगना।
0: अच्छा आंवले नहीं आ रहे, तब देखो अब ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खुराक की होती है बात, तो अगर मान लो कहीं इम्बेलेंस
3: हाँ
0: न्यूट्रिशन का जो
3: बड़ा
0: इम्बेल,
3: पेड़ है, पुराना पेड़ है, 20-25 साल पुराना।
0: हाँ, तो वो की जड़ें उसकी बहुत गहरी गई, तो आप ऐसा करें इसमें जो खाद है वो आप प्रॉपर डालते जाएं। इस साल अगर अब नहीं आए तो अब तो बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि अब तो सीजन भी गया आने का, तो अब तो अगले साल ही आएंगे। आप इसकी
3: खाद
0: खुराक
3: कौन
0: रखें,
3: सी डालूं सर, खाद
0: खाद,
3: कौन सी डालूं?
0: हाँ खाद है, एक तो जो वर्मिंग कंपोस्ट आती है वो डालो, या सड़ी गोबर की खाद है वो डालो उसमें, जो 50 किलो
3: अच्छा
0: 60 किलो
3: अच्छा
0: है ना।
3: अच्छा
0: हाँ
3: सर हाँ,
0: और
3: एक एक वो बील का पेड़ है जो गली में मैंने लगा रखा है 4 साल से, वो उठाव नहीं कर रहा है, उनता नहीं आ रहा है।
0: बिल्कुल उठाव करेगा, उसमें थोड़ा सा खुराक देंगे तो पहन, तो खुराक के लिए वो एक
3: अच्छा
0: है
3: खुराक
0: हाँ, तो
3: होगी।
0: उसमें आप खाद डालें कम से कम 40 किलो 50 किलो जो सड़ी गोबर की खाद डालें, साथ में आप क्या करिए NPK आता है एक 19-19-19 करके, वो
3: ठीक
0: भी ले
3: सर
0: आएँ तो
3: ठीक
0: थोड़ा सा वो भी उसमें आप पावर उसमें साथ में मिला दें।
3: हाँ कोई कीड़ा नहीं लग रहा, कोई बीमारी
0: हाँ
3: नहीं।
0: नहीं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कीड़ा बीमारी नहीं लग रहा तो अच्छी बात है, आप लकी हैं।
3: थैंक यू सर।
0: ओके सर।

0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़िया।
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार। कार्यक्रम खेतीबाड़ी में स्वागत है सर। कहीं जानकारी चाह रहे हो
0: जी
1: सर? आप कौन बात कर रहे हो?
0: जी जी नमस्कार सर। जिला सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं हम, करण सिंह।
1: हाँ करण सिंह जी, बताओ कहीं जानकारी चाह रहे हो खेतीबाड़ी में?
0: जी, करण सिंह बोल रहे हैं सर।
1: जी
0: वो किस कीटनाशक को सोयाबीन में कौन सी दवाई डाल रहे हैं सर?
2: हाँ, सोयाबीन में देखिए, अब अगर इसमें दो तीन चीज़ें आती है, अगर मान लो उसमें जो एक तो जो लट भी लगती है, दूसरे रस चूसने वाले कीड़े भी आते हैं, तो इस केस में आप ऐसा करें कि जो एसीफेट आता है उसका भी आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ में डाइमिथोएट, जो इंसेक्टिसाइड आता है डाइमिथोएट, उसका एक से 1.5 ml 1 लीटर पानी लेकर छिड़काव करेंगे, तो ये जो उसमें रस चूसने वाले कीड़े हैं या जो लट्टे हैं वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे।
0: जी धन्यवाद सर।
1: बिल्कुल, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद थे कार्यक्रम में जुड़िया। और आपने सागे डॉक्टर रामपुल जी घासोलिया है, आप सहायक प्राध्यापक है। और सर एक प्रश्न मारे मन का मायने आ रही है कि जगह बेर का बगीचा है पंखा, किसान भाई अगर देखभाल करनी चाहे तो किस प्रकार से हो?
2: हाँ बिल्कुल, आपने जब बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस समय बेर के बगीचे में फूल आने चालू हो गए, और अब किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि फूल कहीं ज़्यादा तो नहीं जड़ रहे हैं, और फूल में साथ साथ मान लो अगर फल बढ़ भी रहे हैं वो कहीं पीले होकर वो जड़ रहे हैं, या उसके बाद कहीं छाछत नहीं आ रहा, तो ये किसान भाइयों को हर समय उसमें वास करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसमें जो खुराक है उसकी वो भी इसका ध्यान रखें। मैं उनको एक किसान भाई कहूँगा, जो छाछा आएगा जो अपने जो फल हैं बेर में, वो मटर के दाने के आएंगे, अक्टूबर या नवंबर की बात करते हैं हम, तब जाके तब उनको पहचान करके उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए जो दवा है उसमें किसान भाई को बताना, जो एक माइक्लोबुटानिल करके आता है,
1: जी
2: वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो उसमें कंट्रोल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया थे जानकारी बताया। तो देखो सर, आप बात करें, देखो अपना जो किसान भाई जुड़ रहा है। हेलो,
3: राजू भाई, आपको और प्रभु भाई को, डॉक्टर साहब को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ।
1: बिल्कुल
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: प्रकाश
1: प्रकाश
2: जी,
1: जी, कहाँ जानकारी चाह रहे हो खेतीबाड़ी में, कदों बात कर रहे हो,
3: जयपुर से कर रहा हूँ।
1: बताओ सर।
3: मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था, डॉक्टर साहब बहरोड में ना हमारे एक दोस्त ने कम से कम 15-20 पेड़ लगा रखे हैं, क्योंकि पिछले साल भी लगाए थे, कुछ अब की बार भी लगाए
2: हाँ
3: हैं।
2: जी, हाँ जी, किसके लगाए
3: वो
2: पेड़?
3: नीम, ये अपने नींबू प्रजाति के हैं, और ये कटहल का है, आम का है, जामुन का है,
2: हाँ
3: चाहिए
2: हाँ
3: है ये
2: हाँ
3: आंवले
2: हाँ
3: का है, लेसवे का है। तो जो नींबू का पेड़ पिछले साल का है ना, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये क्यों पड़ रहा है?
2: पत्ते पीले पड़ रहे होंगे या रस चूसने वाले कीड़े हैं, मुड़ भी रहे होंगे ऊपर, नई पत्तियां मुड़ जाती है उसमें, तो उसमें ऐसा करें, एक तो देखो आप साथ में क्या करें, एक तो जो कीटनाशक दवा है इमिडाक्लोपीड, जो आधा मल 1 लीटर के हिसाब से घोल के उसकी छिड़काव करते रहे हैं ना 15 दिन से 20 दिन से,
3: अच्छा,
2: तो उसमें जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जो पत्तियों चूस रहे हैं तो वो ठीक हो जाए, तो पत्तियां मुड़ेगी नहीं। और दूसरा, अगर जो पत्तियां पीली पड़ रही बता रहे हो आप सर, कि अब वो पीली किस कारण से पड़ रही है, उसमें थोड़ा देखने वाली बात है। अगर आप जैसे मान लो उस पर एक धब्बे बन रहे होंगे फिर पीली पड़ रही है तो अलग चीज़ है, नहीं फिर इसमें क्या करेगा आप, जिसमें जो कॉपर की कमी हो जाती है तांबे की, इसमें
3: अच्छा।
2: तो आप इसमें कॉपर सल्फेट आता है उसका भी आप 5 ग्राम 1 लीटर में घोल करके, और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दे 2 बूंद, तो वो छिड़काव करोगे तो आप उससे वो जो पीला,
3: गाय की प्रॉब्लम तो नहीं होती है सर अभी इसमें 1 साल के में?
2: नहीं, 1 साल में अभी कोई नहीं, आप अगले साल इसका जाड़ा ज़रूर निकालें, क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं जो फीडिंग रूट्स हैं वो फिर के मर जाती हैं, तो वो खाती नहीं है फिर, तो उसको निकालना
3: ये
2: होता
3: कौन
2: है।
3: से मौसम में निकालना पड़ेगा? अच्छा
2: ये मौसम आप जैसे बारिश से पहले निकालो।
3: गर्मियों में ही, ठीक
2: हाँ
3: है सर, थैंक यू।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आप कार्यक्रम का मैंने जुड़े, और एक वास्ते गुणों गुणों धन्यवाद आपको। और डॉक्टर आपने आप पूछ लिया कि भाई देखो नींबू की जो बात चल रही, तो भाई एक मायने नींबू के मायने जो कैंकर जो को रोग लागे भी को समाधान भाई लोग की प्रकार से कर सके जाए।
2: हाँ देखो, जो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो इसकी जो पहचान है, जो पत्तियों पे एक तो खुरदरे भूरे रंग के धब्बे मरते हैं, खुरदरे, उनके चारों तरफ तो पीला सा घेरा बन जाता है, तो ये तो उसके एंकर की पहचान है, खुरदरे पत्तियों पे बने, तो इसके बाद टहनियों पर बनते हैं, उसके बाद जो फल है उस पर भी खुरदरे दाने हैं, भूरे कलर के दाने और धब्बे बन जाते हैं, तो ये इसके नींबू के जो कैंकर के लक्षण है जो एक जीवाणु से होता है। तो किसान भाइयों के अगर एक बार आ गया तो क्या कि ये जीवित रहता है उस पौधे पर, पौधा जो है नींबू का वो एक तरह से बहुवर्षीय है,

0: पे जिंदा रहेंगे। तो उसको हटाने के लिए किसान भाइयों को उसमें कुछ 2-4 महीने तक लगातार छिड़काव करने पड़ेंगे। जैसे एक आप बात करें कि जो ब्लाइटोक्स 50 आता है, यानी कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसके छिड़काव करने पड़ेंगे। तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 2.5 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम गोल करके छिड़काव करें।
1: बिल्कुल। हेलो हेलो।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: हाँ जी नमस्कार जी, कार्यक्रम खेतीबाड़ी में स्वागत है
2: हाँ
1: सर।
2: जी, नमस्कार जी।
1: नाम बताओ, कहीं सवाल
2: हाँ,
1: है, कौन सी जगह
2: मैं
1: बोल
2: जी
1: रहे?
2: राजेंद्र जी बोल रहा जी, गांव रायपुर हिरन तहसील बाणा झुंझुनू जी।
1: पूछो साहब, खेतीबाड़ी हूँ, आज कहीं कोई प्रश्न है आपको?
2: जी, मेरी समस्या ये है कि जो अभी नींबू में जो फूल आ रहे हैं, फूल आते ही झड़ जाते हैं जी।
0: हाँ, तो नींबू देखो, जो फूल आ रहे हैं उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो पोषक तत्व तो अगर सही नहीं है, कमी है, तो दूसरा अगर कीड़े रस चूसने वाले कीड़े हैं तो वो भी हो सकते हैं इसमें। तो आप इसमें ऐसा करें अभी, और दूसरा जो इम्बैलेंस हो रहा है मान लो कोई हार्मोन का, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ज़्यादा झड़ रहे हैं तो जो प्लानोफिक्स दवा आती है एक, जो
2: प्लानोफिक्स है?
0: हाँ
2: हाँ
0: प्लानोफिक्स आती है, तो वो
2: अच्छा,
0: एक जो 15 लीटर वाली जो टंकी है उसमें आप 4 ml डालें केवल। सर मात्रा का ध्यान रखें, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो उल्टा काम करेगी, सबको झाड़ देगी वो भी। तो 4 ml 15 लीटर की टंकी में प्लानोफिक्स का घोल करके छिड़काव करें। साथ
2: नहीं
0: में
2: जी
0: आप,
2: मेरे, हाँ जी वो सही है, वो समझ गया जी। एक
0: हाँ
2: समस्या हो रही है जी मेरी, वो मेरे पेड़ 60 पेड़ है जी नींबू के, तो उसमें जो 12-12, 13-13 फुट के वो पेड़ हो गए, उसमें फूल नहीं आ रही जी।
0: अच्छा, फूल नहीं आ रहे इसमें?
2: हाँ जी,
0: अच्छा, तो आप उसमें वो जो अपन जो कर्षण जो क्रियाएं वो कर रहे होंगे, जाड़ा निकालना, खाद डालना,
2: हाँ
0: पानी
2: जी,
0: लग,
2: हाँ वो बिल्कुल कर रहे हैं जी।
0: हाँ, तो अब इसको ऐसा करें, थोड़ा सा उसमें एक बार देखें, और एक बार जो कोई विशेषज्ञ वहाँ आसपास जो कृषि विभाग के हैं उनको एक बार विजिट कराएं। एक्चुअल क्या कारण है, कोई नेमाटोड तो नहीं आ गया या उसमें और कोई कोई समस्या नहीं, एक बार विजिट करवाएं सर, तब पता लगेगा उसका एक्चुअल कारण क्या है कि उनमें क्यों
2: अच्छा
0: नहीं हो रहा। तो जो कृषि
2: ठीक,
0: विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या जो वहाँ
2: हाँ
0: सहायक
2: जी
0: कृषि
2: ठीक
0: अधिकारी, उनका एक बार विजिट करवाएं आप।
2: है जी,
0: ठीक,
2: धन्यवाद
1: बिल्कुल। तो राजू भाई,
3: जी।
1: आज को फोन इन कार्यक्रम आपन लेर भाई लोगों की सेवा के मायने हाजिर हुआ, और आज आपने सके किसान भाई की समस्याओं को समाधान करवा के वास्ते स्टूडियो को मायने पधारिया।
3: डॉक्टर रामपुर जी घासोलिया, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, पौधवादी विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर से। और देखो, बहुत ही छोटा अपना जो किसान भाई है, सवाल है, समस्या है, वहाँ को समाधान बताया। और देखो, नुकसान है फसल बाड़ी
1: बिल्कुल
3: में, बिन हो बसों ये मुनाफा की ओर लेर गया।
1: बिल्कुल। और आपा तो आई उम्मीद करा कि अगलो जो कार्यक्रम में भी कमाए भी भाई लोग है जगह चौका चौका सवाल लेर, अगला कार्यक्रम हुआ ने फेरू जुड़े। तो डॉक्टर साहब ने तो आपा मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद देवा। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो के मायने थे, था वो कीमती समय निकाल आया, किसान भाई की समस्याओं को समाधान करियो। आपको मोकड़ो मोकड़ो
0: आपको भी
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, किसान भाइयों को सबको नमस्कार।
3: धन्यवाद सर।
1: और राजू भाई, अब
3: हाँ जी,
1: घड़ी सारो करण लाग रही आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम को टेम अठाई पूरा हो रही है। तो भाई
3: बिल्कुल।
1: लोग आज का खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनते था का भाई प्रभु दयाल वर्मा।
3: और राजू चौधरी ने देव आज्ञा और करा, राम
1: राम
3: राम
1: राम
3: सा।
1: सा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है, FM 101.2 MHz पर। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी।

इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा

संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधु ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवरालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प

0: को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है
3: 9414066730।
2: जी हाँ श्रोताओं,
3: 9414066730।
2: तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
4: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को

0: इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बनें, एमबीए करें, एमए करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है। आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
1: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, ज़िंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नज़र से उसको देखते हैं, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में सफल हो गया और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
0: बन जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है और हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुंचे, लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 300 रुपये में कोर्स हो रहा है, 500 रुपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए और आप देखेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आप में अगर मिठास की कमी रहेगी तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है और सब कुछ अवेलेबल है।
1: लेकिन कभी आशमा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप, ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था, तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज पे चले जा रहे हैं, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे और ज़िंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो IAS के रूप में या IPS के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद अच्छे IAS ऑफिसर वो बने या अच्छे IPS ऑफिसर बने और समाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की ज़रूरत है कि क्या हमने ज़िंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी

0: हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं, कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए
1: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए। और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए, अगर जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाव को खोने न दें, बल्कि जिंदगी का मुकाबला करें। एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं। इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
3: 9414066730।
2: जी हाँ श्रोताओ,
3: 9414066730।
2: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट, FM इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। इस समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया भारती
1: और मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट, हर मैच का हाल और जया हर खिलाड़ी की खबर भी।
0: बिल्कुल, तो आज हमारे पास खेल के पिटारे में बहुत कुछ है, चाहे वो मैदान पर देश का मान बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शान हॉकी की बात हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार। तो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गार्गा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
0: विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की अमानत कंबोज ने डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं आशीष यादव और टी धरणीधरन ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह पक्की की।
1: भारतीय हॉकी टीम चीन में होने वाले

0: AFL जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की गई है। उधर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बनाई।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने बताया अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा
0: और अरुणाचल प्रदेश को एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।
1: तो शुरुआत करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार पकड़ चुकी है हमारी टीम, तो कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की 17 साल की तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले सप्ताह ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने अपनी ही देश की श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराया।
0: जी हाँ, और अश्मिता चारिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो तीन भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रतियोगिता में अनमोल खरब का सफर समाप्त हो गया है। पूरे मैच का हाल जानने के लिए जया सुन लेते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट।
2: अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने इस मैच को 23-21, 15-21, 21-18 से गंवाया। इस हार के साथ ही प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त हो गया। हालांकि शुरुआती गेम में अनमोल ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने 4 गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में वो वापसी नहीं कर सकी और वू थी ट्रांग ने मुकाबला जीत लिया। उधर दूसरे क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शुरुआती गेम में पीछे चल रही तन्वी ने जोरदार वापसी की और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी वल्लीशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और 21-16, 17-21, 21-13 से मैच जीत लिया। इसके अलावा अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिन जी को जबकि जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। महिला डबल्स में आज भारत की रितिका ठाकर और सोनाली सिंह का सफर समाप्त हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें नकार्डे और ताकाहाशी की जापानी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। ऐसे में अब सबकी नजरें कल होने वाले महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने सुनी। और अगर जया हम एक नज़र डालें तन्वी शर्मा के करियर पर, तो 2026 में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2025 में डेनमार्क चैलेंज की वो विजेता रही हैं। 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 में उप विजेता थी। 2025 में ही गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में वो उप विजेता थी। 2024 में बॉन इंटरनेशनल का खिताब जीता। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही हैं। इसके अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीती थी। तो तन्वी शर्मा, जो कि अभी 17 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है पूरे मैच में, वो काबिले तारीफ है जया।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से वो कोर्ट में अपनी गजब की फुर्ती, तेज मूवमेंट हो या फिर जो आक्रामक स्मैश होता है, उनके लिए ही वो जानी जाती है। और जब कल उनका रक्षिता रामराज से ही होगा, जो कि हमारे ही देश की हैं, तो समय देखने वाला होगा, क्योंकि रक्षिता भी काफी कड़े टक्कर दे चुकी हैं। अगर हम बेहद दबाव वाले क्षणों की बात करें, तो उसमें भी रक्षिता ने बहुत नियंत्रण के साथ, बहुत शांति के साथ अपनी प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कि कल की नजरें महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा और रक्षिता रामराज के बीच होगी। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें, तो अश्मिता चाहिला का सामना जापान की हीना अकेची से होने वाला है।
0: बिल्कुल, और अगर पुरुष डबल्स की अगर हम बात करें, इसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा जो है, ये जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से कल अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भी इन्होंने शानदार तरीके से जीता और अब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी है। तो हम सब की नज़र अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगी होगी।
1: बिल्कुल।

0: देखते हैं कल का मैच कैसा होता है।
1: भारत की अमानत कंबोज ने आज इस सीजन का अपने सबसे अच्छा थ्रो करते हुए अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अमानत जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले आशीष यादव और टी धरणीधरन पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना चुके हैं। तो जया, जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंडियन एथलीट्स ने, वो बहुत गजब की बात है।
0: तो सुनते हैं इस जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के हमारे एक विशेष डेस्क से एक विशेष रिपोर्ट।
2: मई 2026 में 52.24 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एशियन अंडर 20 का गोल्ड मेडल जीतने वाली अमानत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 52.58 मीटर का थ्रो किया, जिसके साथ अमानत दुनिया की बेहतरीन अंडर 20 थ्रोअर्स में छठे स्थान पर रही। महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल शनिवार को होगा। इससे पहले आशीष ने 69.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि धरणीधरन ने 68.07 मीटर का थ्रो करते हुए अपने ग्रुप से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम ने अपने हिट में तीसरा स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने सीजन का अपना सबसे अच्छा समय निकाला, लेकिन टॉप 9 में शामिल ना हो पाने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सकी। ओरेगन के हेवर्ड फील्ड में 5-9 अगस्त के बीच आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की 36 सदस्य ट्रैक और फील्ड टीम हिस्सा ले रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ जया, अमानत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो पंजाब से आती हैं और 2026 में उन्होंने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और भारत की पहली एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना स्थान पक्का किया था, तो इसलिए सबकी जो नजरें हैं वो अमानत पर लगी हुई हैं।
0: बिल्कुल, अमानत एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हम बाकी की बात कर रहे हैं, आशीष यादव की भी बात कर रहे थे, टी धरणीधरन की भी बात कर रहे हैं, जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना चुके हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे देश के खिलाड़ी हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है इनको। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि साउथ अफ्रीका के जो अंडर-20 जेवलिन चैंपियन जॉन हेनरी हेमंस हैं, उन्होंने यूजीन में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही थ्रो में 76.02 मीटर के साथ एक क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया और हेमंस के पीछे जो 3 एथलीट्स थे उन्होंने 69 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया, जिसमें हमारे भारत के आशीष, पोलैंड के अलेक्जेंडर वेजना और चीन के यांग झाओई हैं। तो ऐसे में फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद है।
1: बिल्कुल, अब हमें इंतजार रहेगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और नजर डालते हैं हॉकी पर। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में आज उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में खेले गए सेमीफाइनल में उड़ीसा ने पंजाब को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उड़ीसा की ओर से बिल्कन ओराव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उन्होंने 28वें, 41वें और 52वें मिनट में गोल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। वहीं आलोक कुमार ने 11वें और कप्तान दीपक प्रधान ने 37वें मिनट में गोल किया और इसके बाद अमित कीरो ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो जया, ये जो पहला सेमीफाइनल मैच था, इसमें जिस तरीके से बिल्कन ओराव ने जो हैट्रिक लगाई है, वो इस जीत में एक अहम भूमिका
0: निभाता है और एक काबिले तारीफ है। अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को 2-0 से हराया। मध्य प्रदेश की ओर से राजवीर सिंह ने 56वें मिनट में गोल किया और इसके 2 मिनट बाद आशीर आदिल खान ने गोल कर टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से झारखंड को करारी हार मिली है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे टूर्नामेंट है ना, वो लगभग पूरे देश को, जो हमारी राष्ट्रीय शान कहते हैं हॉकी, उसमें एक अच्छी पकड़ दे रही है हमारे देश के जूनियर खिलाड़ियों को भी। बता दें कि फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को कोयंबटूर में खेला जाएगा और पंजाब और झारखंड प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे। और जब हमने हॉकी की बात की है तो हम ये भी बता दें कि जो भारतीय हॉकी है, उन्होंने भारतीय यानी कि इंडियन हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए

0: भारत सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी।
1: जी हां, और मुख्य कोच टीम व्हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में फिलहाल जुट गई है। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय टीम हाल ही में ब्रिटेन के दौरे से लौटी है। एशिया कप में मैचों का कार्यक्रम और पूल की जानकारी टूर्नामेंट शुरू होने के आसपास हमें मिलेगी। और फिलहाल यहां पर पूरी टीम की जो घोषणा की गई है, और काफी जया बैलेंस टीम है हमारे बीच में।
0: जी, अब हम बात करते हैं जो नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी और रविवार तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबी जनरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सरकार को खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाती है।
2: हर पार्टी के एमपी और अलग अलग एज के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हम लोग फिट इंडिया खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो एमपी लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करके तो ये देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, इसमें बहुत सिंपल बट बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके सारा व्यवस्था कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप यूनिटी राजनीति में बहुत जरूरी है। ये मैं अभी राजीव प्रताप रूडी जी टीम को मैं बधाई देता हूँ।
0: और श्री रिजिजू ने यह भी बताया है कि खेलो इंडिया की मेजबानी, जो अगले खेलो इंडिया की मेजबानी है, वो तेलंगाना करेगा। तो जिस तरह से खेलो इंडिया पर सरकार हमेशा ध्यान दे रही है सिद्धार्थ, अगर हम कहें तो इसी का नतीजा है कि अभी अरुणाचल प्रदेश को भी एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है।
1: बिल्कुल, तो ये अब जो हमारी नजर है वो अरुणाचल प्रदेश की एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है इसके ऊपर रहेगी, जिसे राज्य के साहसिक खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन सियांग जिले के बोलिंग में होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग ने आगामी प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए खेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें की। यह प्रतियोगिता 5 से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और यहां पर यह बता दें तुम्हें जया कि जो सियांग नदी जो है ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र में राफ्टिंग के लिए भारत के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की शक्तिशाली नदी अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 5 स्तर के जो रैपिड्स हैं या जो उसके लिए ये बेहद मशहूर है। तो ऐसे में 5 दिन तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष राफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने इस नदी की तारीफ की, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रतियोगिता इसी नदी पर आयोजित होगी। यह सियांग नदी की सहायक नदी और बोलिंग की सियांग घाटी से होकर बहती है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैंट में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए जया और सिद्धार्थ को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
2: को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण

0: के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
2: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
3: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
2: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
4: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
6: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र

0: न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni 4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circuit.

0: along with representatives of BRICS countries. Speaking to media at Jaipur Airport, Mr. Goyal said the meeting is significant ahead of the BRICS summit to be held in New Delhi in September under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Secretary Chandra Kumar today announced that the BRICS Film Festival will be held alongside the International Film Festival of India in November this year. Mr. Kumar was speaking at the opening ceremony of the two-day BRICS Waves Bazaar in Mumbai. The event, being held under India's BRICS presidency, brings together over 500 delegates from BRICS members and partners from 21 countries with an aim to create stronger pathways for collaboration across sectors. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the second straight session today. The Sensex gained 374 points to close at 78,955. The Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall along with thunderstorms, gusty winds and lightning over Madhya Pradesh, Rajasthan, Kerala, Mahe, Odisha and coastal and south interior Karnataka tomorrow. Meanwhile, Delhi, Himachal Pradesh and West Madhya Pradesh are also likely to witness heavy rainfall tomorrow. On to sports. In badminton, India's Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj have progressed to the women's singles quarterfinals at the Korea Masters in Assam. Tanvi defeated compatriot Shreyansi Valishetty in the pre-quarterfinals. Ashmita beat home favourite Kim Min-ji, while Rakshita overpowered Japan's Manami Suizu. In the men's doubles pre-quarterfinals, the Indian duo of Prithvi Krishnamurti Roy and Krishna Prasad Garga advanced to the last eight, defeating a South Korean pair. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Govardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to four-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गरज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान चार लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वजीर आजम ने मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी ताउन को उसा देने के अहद का यादा किया है। भारत ने उड़ीसा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाले अग्नि चार बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल की मिलावट के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामलों पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आज मरकजी काबीना ने कौमी सर्कुलर हयातियाती तवानाई की स्कीम गोवर्धन को मंजूरी दी। इसके लिए मजमूई तौर पर 23,731 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए इतलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो

0: this will save about 40 million tons of carbon dioxide emission. करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ये स्कीम मुल्क के मतरूक ज़रई बाकियात, मवेशियों के गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाले नामियाती कचरे, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक फजला और दिगर बायोमास ज़राए को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन, नामियाती खाद तैयार करने, देही आमदनी और कौमी इक्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली लाएगी। इस स्कीम का इतलाक 2026-27 से साल 2035-36 तक होगा और ये भारत की मुस्तकबिल की तवानाई की तैयारी के एक अहम सुतून के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस की पैदावार करेगी। इस स्कीम का मकसद अंदरून मुल्क कंप्रेस्ड बायोगैस में इजाफा करना, CBG पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना, बड़े पैमाने पर निजी सरमायाकारी को मुतहरिक करना और मुल्क भर में एक शानदार सर्कुलर हयातियाती मईशत वजा करना है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आसाम में NH-15 के साथ साथ गुवाहाटी के नज़दीक बहारा चरियाली से तेजपुर तक 4 लेन का हाईवे तामीर करने की भी मंजूरी दी। इसकी मजमूई प्रोजेक्ट लंबाई 135.87 किलोमीटर होगी और इस पर 8,970 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT टूल मोड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर एक हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फजाइया के साथ तालमेल से हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
0: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन स्कीम को मंजूरी देने का काबीना का फैसला माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, देही खुशहाली और खुद कफील मुल्क बनने के भारत के इज्तिमाई ख्वाब को हकीकत का रंग देने की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि स्कीम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को वसी तौर पर फरोग देगी, जिसका मकसद अंदरून मुल्क CBG की पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि NH-15 का 4 लेन वाला गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सफर के वक्त को कम करेगा, सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर अहम बाईपासिस पर होने वाले गाड़ियों की आमदरफ्त को बेहतर करेगा। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामाराई के बाइस दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत सरमाही इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 ऐवान में गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया। ताहम मुसलसल हंगामाराई के दरमियान मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने से मुतालिक इस बिल को किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सांध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे कबल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। पार्लियामेंट ने तसरुफात नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल राज्यसभा में बहस के बाद लोकसभा वापस भेज दिया गया था। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर दोबारा शुरू हुई तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बिल पर गौर करने और उसे वापस करने के लिए इसे ऐवान में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2003 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बहुत सी खदशात पर होने वाले उन अखराजात के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से रकम के तसरुफ का इख्तियार देता है जो उस साल उन खिदमात के लिए मुख्तस रकम से तजावज़ कर गए थे। हुकूमत ने बहुत से तजावज़ करदा अखराजात

को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की दरखास्त की है। ये रकम कर्जों की अदायगी पर खर्च की जाएगी। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने माली साल 2023 के दौरान होने वाले तजावुज करदा अखराजात की मंजूरी की दरखास्त की है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक अराकीन के जरिए जाहिर करदा तशवीश का हवाला देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने 2019 में दफा 370 को खत्म करने के बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को नुमाया माली और इंतजामी मदद फराहम की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाहें और पेंशन मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के जरिए अदा की जा रही हैं, जिन पर सालाना तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि दफा 370 को खत्म करना इस बात का यादा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को पूरी करने के बाद चेयर जनाब घनश्याम तिवारी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज भारत इसराइल खसूसी जाम शराकत दारी में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का यादा किया। जनाब नेतन्याहू ने आज जनाब मोदी को टेलीफोन कॉल की थी। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। आज भारत ने उड़ीसा में चांदीपुर की मरबूत आजमाइशी रेंज से दरमियानी दूरी तक वॉर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की कामयाब आजमाइश की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। ये आजमाइश जामे फोर्सेस कमान के तहत की गई। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि मुल्क में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा उठाने वाले कुंभों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई है। नई दिल्ली में मुनाकिदा CII बैनलक्वामी तवानाई कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 19 लाख घरानों का बिजली का बिल सिफर आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा कुंभों ने इजाफी बिजली फरोख्त करके मजमूई तौर पर 421 करोड़ रुपये की आमदनी हासिल की है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सिर्फ 9 महीने में छतों पर सोलर पैनल नस्ब करने की रफ्तार में 3.2 गुना का इजाफा हुआ है, जो अक्टूबर 2025 में योमिया तकरीबन 5,000 तनसीबात से बढ़कर जुलाई 2026 में 16,000 से ज्यादा योमिया तनसीबात तक पहुंच गई हैं। इस मौके पर स्टील और भारी सनतों के मरकजी वजीर SD कुमारस्वामी ने कहा कि आलमी तवानाई मुंतकली में क्यादत के लिए भारत को मजबूत और पायदार सप्लाई चेन कायम करना होगी। उन्होंने कहा कि स्टील की पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क की हैसियत से भारत न सिर्फ बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की अपनी बढ़ती जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, बल्कि पायदार स्टील की बढ़ती हुई आलमी मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने फर्जी या मनगढ़ंत मालूमात जमा कराने वाले दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अद्वियात से मुतालिक जवाबित में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में इथनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि इथनॉल और हवाई जहाज का पायदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया सकता। उन्होंने कहा कि SAF बैन अक्वामी सतह पर एक तस्दीक शुदा हवाई जहाज का ईंधन है, जिसे बैन अक्वामी शहरी हवाबाजी तंजीम तस्लीम करती है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन सख्त जांच के मराहिल से गुजरता है और आलमी हिफाजती मेयारात पर खरा उतरता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हवाबाजी की हिफाजत से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने से सिर्फ फजाई मुसाफिरों में गैर जरूरी तशवीश पैदा होती है। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73,00,000 ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत में
इस वक्त तमाम

0: इलाकाई पासपोर्ट दफातर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तहान में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर मानसून इजलास के पहले दिन असम्बली के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: जेपीएससी और जेएसएससी इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा की तहरीक और इम्तहान के निजाम में ज्यादा शफाफियत के मुतालबे ने फैसला कुन मरहला अख्तियार कर लिया है। तातुल खत्म करने के लिए रियासती सरकार ने इकदामात शुरू किए हैं। वजीर आला हेमंत सोरेन की हिदायत पर चार वजरा की पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत करेगी। इसके जवाब में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे तलबा ने 8 रुकनी वफद तश्कील दिया है जो वजरा के साथ होने वाली बातचीत में उनकी नुमाइंदगी करेगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: केरलम में युवा मोर्चा की क्यादत में तिरुवनंतपुरम में वाकई रियासती सेक्रेटरीट की जानिब एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाज करने वाले अफराद का मुतालबा था कि उन उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाया जाए जिन्हें गुज़श्ता 2 बरस से पीएससी की रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद तकरीरी के अहकाम जारी नहीं किए गए। सैकड़ों कारकुनों ने हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया कि रैंक लिस्ट मौजूद होने के बावजूद खासतौर पर तदरीसी ओहदों पर तकरीरियाँ मुसलसल मुअख्खर की जा रही हैं। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज आसन में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में चिरियांशी वेलिशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहरा किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गरज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान 4 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वजीर आजम ने मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी ताउन को और गहरा करने के अहद का यादा किया है। भारत ने उड़ीसा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाले अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथनॉल की आमेजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तहान के मामला पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Andrew White.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मानसून की चुनौतियां, कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखार पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखार दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खासतौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं, उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
3: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं।

0: के लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्वानुमान हैं और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहाँ पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: देखिए, जहाँ तक मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं जिस पे रिलाई किया जा सकता है का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स के टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ की टीम, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं और मलबा कटाव बहुत करता है और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं। तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती

0: और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और
1: जी
0: पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में। इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से, बारिश के कारण से, तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहाँ से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, तो और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, स्टडी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करना। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल के साथ, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है, तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
1: जी
0: वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल है निकटतम जगह पर जहाँ पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप उसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहाँ पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए।
1: जी
0: तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर है जैसे, जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है यातायात के लिए, पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंग लेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है। तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडरपासिस बना रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन्स ट्रांसफार्मर्स पोल्स इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे लाइटनिंग के टाइम पे तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम एंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना दिल परदेसी हो गया फिल्म से स्वर सुदेश भोंसले और प्रिया का था। गीत के बोल सावन कुमार के और संगीत उषा खन्ना का। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगला खूबसूरत नगमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जीत फिल्म से स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक का है। गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अगला खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से स्वर अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का है। गीत के बोल समीर के और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना कुमार सानू के स्वर में मिस्टर आशिक फिल्म से। गीत के बोल इंदिवर के और संगीत जतिन ललित का।

और दोस्तों, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के इस आमेर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म से, स्वर रूप कुमार का है, गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक का।

श्रोता, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना मिस्टर बेचारा फिल्म से, स्वर कुमार सानू का था, गीत के बोल समीर के और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना दिल है कि मानता नहीं फिल्म से, स्वर अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू का था, गीत के बोल रानी मलिक के और संगीत नदीम श्रवण का। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
3: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक,
4: एटीज में था डिस्को, नाइन्टीज का मूड रोमांटिक।
5: दिल है के मानता नहीं।
3: 2000s में था बदलाव पे जोर।
4: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: You said, we played.
4: This is 101.2 FM, जयपुर का अपना FM.
7: सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में वो कौन थे फिल्म से। गीत के बोल राजा मेहंदी अली खान के हैं और संगीत मदन मोहन का।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75

0: भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम इंडेक्स 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।